डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? यस, जिसका आपको इंतजार था मैं हूं ना। इपी द हिपी इज बैक इन द हाउस। और कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटीफुल। वी आर इन अनदर वीक ऑफ ऑगस्ट। यस, बाहर डालस में तो बहुत ही गर्मी हो रही है। आई होप यू गाइज आर स्टेइंग कूल। आई फील लाइक ऑगस्ट में समर से ज़्यादा गर्मी होती है। टेक्निकली इट्स फॉल, बट आई थिंक आर समर इज एनी वेज एक्सटेंडेड। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द समर इन डैलस एंड इट स्टेज लाइक दैट ऑल द वे अंटिल अक्टूबर। वी होप जल्दी जल्दी थोड़ी सी बारिश हो जाए यार, बिकॉज आई कॉन्ट टेक दिस हीट। आगे बढ़ते हुए गाइज, दैट सॉन्ग यू हर्ड, दैट वॉज फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना, आई वॉज अ टाइटल ट्रैक। और वो पता किसकी आवाज़ में था? ऑफकोर्स सोनू निगम जी की आवाज़ में था। उसी से याद आया मुझे, सोनू निगम रेवोल्यूशन इज कमिंग टू डैलस। द वन एंड ओनली सोनू निगम इज गोना बी लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सेप्टेम्बर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। तो डोंट वरी अबाउट इट, गो बुक योर टिकट्स राइट नाउ। All your favorite songs, that iconic voice, everything is going to be live. Tickets are already on sale at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live. And of course, Funasia is the exclusive media partner for this. So make sure you get your tickets in advance. Ab ye gana suniye and I will be right back with you after a couple of songs.

भाई बैंग बैंग करते ना गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है कई बार. सो यू हैव टू रियली वॉच आउट फॉर कि अगर आपको ऐसा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का या स्लिप एंड फॉल हो गया है, अगर इस तरह को आपका कोई भी बैंग हुआ है लाइक दैट इन लाइफ, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू कॉल द कॉप्स एंड देन कॉल उमर ख्वाजा जी एंड ही विल टेक इट फ्रॉम दैट. ठीक है, आपको टेंशन मत लेने की जरूरत है बिल्कुल. आप अपना ध्यान रखो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ. बाकी ही विल फाइट फॉर द कॉम्पेंसेशन दैट यू आर एंटाइटल्ड टू एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज वन. कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com फॉर ए फ्री कंसल्ट. एग्जैक्टली, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा विद ट्रैफिक अपडेट्स विच आई डोंट हैव. हाउएवर आई विल टेल यू दिस, मैं अभी ना 75 लेके आ रही हूँ डैलस से और थैंकफुली एंड सरप्राइजिंगली इट वॉज काइंड ऑफ खाली. लाइक देर वॉज नो लाइक स्टैगनेंट ट्रैफिक जिसमें मैं फंस गई. और मैं पूरे डैलस, मतलब मैं प्रेस्टन हॉलो वाले एरिया से, यू नो प्रेस्टन एंड रॉयल एंड ऑल दैट, वहाँ से मैं पूरा ड्राइव करते हुए मकिनी पहुँची इन लाइक 25 मिनट्स. यू गाइज, इट वॉज लाइक अमेजिंग एंड आई वॉज लाइक यार ये क्या चल गया रहा है. मैं एकदम वाह, मज़ा आ गया. काश ऐसा ही ट्रैफिक होता हर रोज हर जगह पे तो कितना मजा आता है ना. तो आप ये गाना सुनिए, वी विल बी बैक आफ्टर दिस सॉन्ग. एंड उसके बाद आज 9 बजे के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली कूल. जैसे आपको पता है वी टॉक अबाउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स ऑन दिस शो, बिसाइड्स यू नो सॉ अमेजिंग म्यूजिक एंड बिसाइड्स अदर थिंग्स एंड आर गेम्स ऑफ कोर्स. तो आज इस हफ्ते का पूरा सेगमेंट जो मैंने डेडिकेट किया हुआ है बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स. आई मीन इफ यू नो बट इफ यू डोंट देन आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. एंड दिस होल वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट ट्विन फ्लेम्स आर एंड आई हैव रियली रिसेंटली गॉटन इन टू द होल आइडिया ऑफ ट्विन फ्लेम्स एंड आई फील लाइक आई मे हैव मेट माइन बट इट्स ओके. अभी कुछ हो नहीं रहा है तो उसके बारे में नहीं, मेरी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज ट्विन फ्लेम्स एंड वी विल हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट. तो तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

0: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
1: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
0: कैसे?
1: पेज 3 ईटरी?
0: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
1: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
0: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
2: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
7: How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fear not, we have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर दे रहा है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: तारा वो तारा हर तारा।
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
17: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ at a bigger location just 3 doors down with limited reservation available.
19: guys, it is 7:34 on the clock and you are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. Yes, it is another week in August. It is August 24th, Monday ka din hai. I'm sure aap sabhi log office se wapas aa rahe hain ya aa chuke hain. To guys, aaj pata hai mujhe badi amazing si cheez dikhi. Aaj to nahi, actually kuch dino pehle hi dikhi thi. आपने वो देखा है JW Pie बोल के एक ब्रांड है, इट्स लाइक अ डिजाइनर क्लोथिंग ब्रांड, और उन्होंने एक नया गारमेंट लॉन्च किया है, लाइक वुमेन्स गारमेंट, ओके, एंड इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक समथिंग दैट यू एंड आई हैव ऑल एंड आवर मदर्स एंड आवर ग्रैंडमदर्स हैव वोर्न. ओके, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली लाइक ए कोट एंड कोट अ गाउन विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ ड्रेप्ड साड़ी. आई मीन, अगर आप उसकी शक्ल देखोगे और आपके अलमारी में जो साड़ी रखी है उसको ड्रेप करके देखोगे, और दे आर एग्जैक्टली द सेम. इट्स काइंड ऑफ लाइक रिपीट ऑफ दैट. वो कुछ सालों पहले एक किसी ब्रांड ने रिलीज किया था ना, दुपट्टा गले में डाल के नेक के आसपास डाल के जाते, दिस इज द स्कैंडिनेवियन स्कार्फ. एंड यू नो हाउ मच They are selling this saree for $229. I mean, they are calling it a gown draped overlay maxi dress. That is exactly what they are using. It's kind of like a ready-made saree. मतलब South India में, North India में, हर जगह पे वो ready-made saree हमें वैसे ही मिलती है. आप कहीं भी जाओगे, wherever you buy a saree from, वो आपको वो बना के देता है, क्या बोलते हैं, जो saree shop वाला है वो कहेगा, मैडम मैं आपको इसको बना के देता हूँ इलास्टिक वगैरह लगा के, ताकि आपको बार बार बांधना ना पड़े, एंड इट्स मोर सिक्योर लाइक दैट. वही चीज़ इन लोगों ने मार्केट करके बेच दिया. इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ, यू नो, इफ यू हैव डन योर इंडियन हिस्ट्री और लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू कॉलोनाइजेशन, दिस इज एग्जैक्टली हाउ कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड. इट स्टार्टेड विद ट्रेड, इट स्टार्टेड विद स्टीलिंग आर आइडियाज, इंडियन आइडियाज, साउथ एशियन आइडियाज लाइक दैट, एंड देन रिसाइकलिंग इट बैक टू अस. हम में से भी अभी भी कुछ लोग वो चीज़ देखे कहेंगे, ओह माय गॉड, सो कूल, लाइक अ मैक्सी ड्रेस ड्रेप्ड ओवरले. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी आल्सो हु इज गोना लुक एट दैट एंड बी लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज सो मच बेटर देन अ सारी. बट गाइज, सॉरी नॉट सॉरी, इट इज समथिंग विच आवर पीपल हैव बीन वेयरिंग फॉर लाइक जेनरेशंस एंड जेनरेशंस एंड जेनरेशंस. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, at what point is a quote unquote saree inspired gown just a saree? It's like a ready made saree, isn't it?

And guys, we are back. You're still listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. तो गाइस बने रहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अच्छे अच्छे गाने हैं आज और मैं बहुत कुछ मजेदार करने वाली हूँ. लेकिन उसके पहले अगर आप आज का ना सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग था, देयर वाज दिस रियली फेमस जैज म्यूजिशियन हु इज बेस्ड आउट ऑफ LA, लेकिन वो इंडियन है वो बंदा, ठीक है. मैं उसका नाम नहीं ले रही, अगर आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा. कुछ दिनों पहले ना उसको आइस पकड़ के ले गई. Now, he is very celebrated. He has like 30,000 followers and everything on Instagram. Aur kuch to choti si minor si issues ki wajah se, he got in some visa trouble and all of that. Lekin guys, agar aap bhi waise kisi situation mein aake fas gaye hain or you're trying to figure out your visa stuff, then you know what you need to do. You need to contact Seema Mehta Law Offices. Whether you're on H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa, and planning your path to the U.S. permanent residency, the law offices of Seema Mehta can absolutely help. She specializes in immigration laws, including EB-5, investor visas, family and employment visas, perm labor certification, and U.S. citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, you can email info@seemamehtalawfirm.com. That is info@seemamehtalawfirm.com. Yes, contact law offices of Seema Mehta. ठीक है. तो गाइज डोंट वेट, यू नेवर नो, इवन अ स्मॉल इशू रिगार्डिंग योर वीजा और योर लिविंग स्टेटस हियर कैन एस्केलेट. सो बिफोर यू गेट इनटू ट्रबल विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट, मेक श्योर यू गो चेक आउट सीमा मेहता.

And guys, we are back. Hanji, it is 7:52 on the clock, and this is still Ippy the Hippie, and I'm very excited. क्योंकि पता है क्यों, अगले हफ्ते पता है क्या होने वाली है? राखी है गाइस. तो अगर आप राखी अपने भाई बहनों के साथ राखी सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट. चौक तो रक्षाबंधन हो रहा है. दिस रक्षाबंधन Fun Asia Radio and Choctaw Casino and Resort Durand, they want to hear your most unforgettable story. सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है राखी में, अगले फ्राइडे को है. सेंड अस ए 1 मिनट व्हाट्सएप नोट ऑन 214-837-7147 एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटा कसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ड. For complete contest details, you can visit Fun Asia Radio social media pages, Chalk Talk Casino and Resort Durand, where unforgettable memories are made. तो अगर आपकी कोई बहुत ही ऐसी मजेदार सी स्टोरी है विथ योर सिबलिंग, देन मेक श्योर यू सेंड इट टू अस. क्योंकि भाई राखी पे देखो, गिफ्ट विफ्ट तो सभी देते हैं, चॉकलेट शॉकलेट सभी देते हैं, लेकिन भाई चौक टॉक कसीना का जो एक्सपीरियंस है वो सबको नहीं नसीब होता है. तो अगर आप अपने सिबलिंग के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं देन यू मेक श्योर कि आप चौक टॉक कसीनो वाले कॉन्टेस्ट में एंटर करिए एंड शेयर अस योर मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज दैट यू हैड विथ योर सिबलिंग्स. यू नेवर नो, मे बी यू विन द नेक्स्ट प्राइज, राइट? तो डोंट फॉरगेट, इट इज 214-837-7147. आप ये गाना सुनिए, उसके बाद हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे. 8 बजे जैसे हमारा होता है गिव अवे का गेम, सो वी गोना डू दैट. टुडे इज आवर साउंड्स लाइक गेम, सो स्टिक अराउंड.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Floors clean.
9: Check.
8: Windows clean.
9: Check.
8: Kitchen clean.
9: Check.
8: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
10: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

guys, we are back. You are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. और पता है अभी कौन सा वक्त हो गया है? आपको पता ही है यार, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. अभी हम खेलेंगे हमारा गिव अवे गेम. दैट इज राइट. आज का हमारा गिव अवे है अगेन फ्रॉम फूडिस्तान. पर फूडिस्तान है क्या? अगर आप ऑबरी में रहते हैं, दिस इज़ स्पेशली फॉर यू गाइज. इफ़ यू लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस एंड केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान एंड ऑबरी. फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग दे सी ऑल इन वन प्लेस. प्लस दे ऑफर द लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. इसका मतलब क्या है? अगर आप फूडिस्तान में कोई प्राइस है और आप कहीं और किसी और दुकान में उससे थोड़ा सा सस्ता मिला, देन यू कैन गो टू फूडिस्तान एंड बी लाइक, ब्रो वहाँ पे तो सस्ता मिल रहा है, तुम ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो. फूडिस्तान बोलेगा नो प्रॉब्लम ब्रो, वी विल प्राइस मैच इट फॉर यू. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे विल गिव फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. अगर आप फन एशिया मेंशन करते हैं तो आपको पूरे 10% डिस्काउंट मिलेगा अपने बिल पे. तो here is your chance to win one free dish from the Vibe restaurant, The Vibe, D-E-V-I-B-E, The Vibe restaurant, which is an upscale dining restaurant located inside Foodistan. Exactly, guys. So don't worry about it. Don't forget about it. Wahan pe andar ek restaurant bhi bada acha sa, and it's, they are saying it's upscale. So definitely. तो आज हमारा गिव अवे है फ्रॉम द वाइब. सो यू कैन विन एनी वन फ्री डिश बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन करेक्टली. टुडे वी आर गोना प्ले द गेम साउंड्स लाइक, जो हमेशा हमें खेलते हैं. तो दिस वन आई डोंट नो इफ यू आर गोना गेट इट राइट अवे और नॉट. ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको हिंट देने वाली हूँ, ठीक है? मैं एक गाना बजाने वाली हूँ, एक इंग्लिश गाना है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इनसेनली पॉपुलर, बाय वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग pop stars of this generation, and of course he is the king of pop, Michael Jackson. So I'm going to play a Michael Jackson tune for you guys. Aur uska ek sounds like gana hai, it sounds exactly the same, bas thoda instrumentation mein farak hai to isliye thoda sa alag lagta hai sunne mein, lekin it is basically the same thing. Aur wo hai jo hindi wala jo gana hai, that is from the movie Koyla. आपको याद है कोयला, माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान की मूवी 1997 में रिलीज हुई थी. सो दिस सॉन्ग इज फ्रॉम दैट मूवी. तो मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती. तो खेलें, चलो. दिस इज हाउ द सॉन्ग गोज. अगर आपको आंसर पता है, कॉल मी एट 972-235-5555. ओके, हियर वी गो. अरे चल ही नहीं रहा ले. अब

0: caller. Oh, not really. Okay, we have our first caller. Hi, can you hear me?
1: Hello.
0: Hi, can you hear me?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay, pehle to apna naam bataiye and then tell me the correct answer if you have it.
1: Amit Kumar aur shayad ye wala hai dekha tujhe to wo Shahrukh Khan drum bajate rehta and all that. Maybe I'm not sure. Wo gaane ka naam us tarah se tha.
0: To aap thoda ga ke suna dijiye to mujhe pata chalega aap kaun sa gaana refer kar rahe hain.
1: मुझे पूरा वर्डिंग तो याद नहीं, वो बहुत पहले देखा था मैंने वो मूवी. देखा तुझे तो
0: नॉट क्वाइट.
1: नहीं
0: नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर द ट्राई. ऑफ कोर्स. ऑलराइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल गाइस. हाय फनेजा रेडियो, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: हेलो.
0: हाय, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
2: My name is Srish Acharya. Okay. And I think the song is Ghumte Mein Chanda.
0: Yeah, you have got it down. Absolutely. Congratulations. Aap jeet chuke hain one free dish from the Vibe restaurant. Chalo taaliyan ho jaate hain aapke liye. And here we go.
2: Thank you very much.
0: So, Srish ji, please stay on the line. Theek hai, main ek gaana lagati hoon. और तब तक मैं आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी, ठीक है? एंड आई विल टेल यू हाउ टू क्लेम योर गिव अवे. ऑलराइट गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए. इन द मीन टाइम वी विल बी राइट बैक.
2: ओके.
0: एंड आई विल
2: टेल
3: यू हाउ टू क्लेम योर गिव अवे. ऑलराइट गाइस.

कभी आप किसी से ऐसे किसी पर्सन से मिले कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं मिले उनसे, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मैं तो समहाउ इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ. ओके, हैव यू एवर मेट समवन एंड यू फील लाइक यू काइंड ऑफ नो देम? नॉट लिटरली, मतलब आपको ये नहीं पता कि व्हाट्स देयर चाइल्डहुड लाइक, उनका फेवरेट कलर क्या है, मे बी यू डोंट इवन नो व्हाट वर्क दे डू राइट नाउ, बट समहाउ द कनेक्शन फील्स सो सो स्ट्रांग दैट यू फील लाइक आई नो दिस पर्सन फ्रॉम बिफोर, एंड इट जस्ट फील्स वेरी इजी एंड ऑर्गेनिक टू सिट एंड हैव अ चैट विद देम और हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. ओके, यू डोंट नो वेयर दे ग्रू अप, यू डोंट नो एनी थिंग एल्स, यू डोंट नो वॉट दे हैड फॉर ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग, बट समथिंग अबाउट देम फील्स फेमिलियर, इधर देयर वॉइस या फिर उनकी आंखें या फिर द वे दे लुक एट यू, द एनर्जी इन द रूम और वेर एवर यू आर, इट चेंजेस एंड सडनली यू आर थिंकिंग वाई डज दिस पर्सन फील लाइक होम, लाइक एवरी टाइम आई टॉक टू दिस पर्सन वाई डज इट फील लाइक योर नर्वस सिस्टम हैज सडनली काम डाउन एंड इट फील्स लाइक होम. Maybe you've experienced that feeling. Maybe you haven't. Maybe you're still looking for it. Maybe you are experiencing it right now. Maybe there's someone listening tonight out there in the audience in DFW who has a person in their life who they simply cannot explain. पर वो आपकी जिंदगी में है पर आप उनको explain नहीं कर पा रहे हो. You have tried to date them. Maybe you have tried to date them. Maybe they've been just best friends. Maybe you tried even forgetting them. Maybe you tried to date them and it just ended up in a disaster. And you tried to move on. You told them, you told your friends that you're completely over them and you have moved on. Lekin 3 mahine baad, boom, they are back in your life. What do you explain? We will talk more about this after we come back from the break. Tab tak ke liye aap ye gana enjoy kariye.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
9: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभाल लेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner.
10: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
11: Hi guys, it is 8:32 on the clock and you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM and this is your bestie Ippy the Hippie. Hanji guys, मेरा आधा टाइम खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ आपके साथ डेढ़ घंटे और हूँ और हम बहुत सारी मज़ेदार सी बातें करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले आप मज़ेदार खाना भी खाइए। द फ्लेवर लाउंज इज नाउ इन फ्रिस्को, सर्विंग एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर $24.99 per person. Enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Take your family, friends and make your weekend delicious at the Flavor Lounge. 5855 Preston Road, Frisco. Flavor Lounge, good food and great memories. Bhai, dinner time ho chuka yaar. Logon ka to actually dinner time khatam bhi ho gaya. To make sure aaj ka dinner aap Flavor Lounge mein hi kare. Kyunki bahut hi delicious hoga. तब तक के लिए दिस इज फॉर ऑल माई लेडीज हु लव द पिंक। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट।

गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो कई बार ऐसे होता है ना, यू मीट समवन एंड यू आर लाइक, ओ माय गॉड, आई फील लाइक आई रियली नो दिस पर्सन, बट यू रियली डोंट नो दिस पर्सन. मे बी यू इवन ट्राई डेटिंग देम एंड सम हाउ इट जस्ट एंडेड अप इन अ डिजास्टर. दे आर बोथ गोइंग, यू बोथ आर गोइंग इन कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस. लेकिन अगेन, ऐसे कुछ टाइम बीतता है, कोई बात नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. एंड 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, बूम, दे आर बैक इन योर लाइफ. आप कहीं पे उनका नाम सुन लेते हैं या फिर आप अपना गाना सुनते हैं. मे बी द टू ऑफ यू हैड अ कॉमन सॉन्ग. मे बी यू आर ड्रीमिंग अबाउट देम. यू नोटिस द सेम नंबर एवरीवेयर. दीज आर ऑल स्पिरिचुअल साइंस एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड देन सडनली यू आर वंडरिंग, वॉज दैट रियली द एंड? Today we are talking about one of the most fascinating and controversial ideas in modern spirituality, twin flames. तो एक चीज clearly जान लेते हैं कि twin flames है क्या. The idea of twin flames is actually a spiritual belief. Whether or not it's true or not is something science has established, has not established. Science has not established as a literal phenomenon. However, if you are into meditation, if you're into all of those things that, listen, I'm a little bit like that. So I definitely believe in it. Then people, you know, it's like Bhagwan. Aapne Bhagwan ko kabhi dekha nahi hai, but aap unki energy feel kar paate ho na. Toh waisi twin flames wali hoti hai. So if you feel the energy, then maybe it is there for you. And maybe it is not. So, but the experience, how do people really describe the twin flame ka experience? It is a feeling of extraordinary connection. Kuch connections aisi hoti hain jinko aap explain nahi kar pate ho. The obsession, the synchronicities, the push and the pull, the heartbreak, the transformation. Those are very, very real human experiences. You know, we've all gone through all of these at some level, I'm sure. We all have, okay? And this is not just a romantic fantasy. Today, we are going to ask some uncomfortable questions as well. Kyunki sometimes the person who changes your life isn't the person who necessarily stays in it. Iska matlab ye bhi nahi ki hamesha aapke twin flame ke saath, aapka jo bhi twin flame hai, uske saath aapka union hoga. Zaruri nahi hai koi. Sometimes the greatest love story isn't about finding the other person. It is about finding yourself. So, stick around because we're going to talk more about this when we come back.

0: जाने तू।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
5: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
4: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
5: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
6: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटी and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
15: We need to talk.
16: अब क्या हुआ?
15: Nothing. It's not you.
16: Oh no.
15: It's the distance.
16: Distance? We live 10 minutes apart.
15: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
17: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
18: Ujhe dekha to ye jana sanam.
19: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।

So guys, this is Ippy the Hippie. We are back on Funasia Radio 104.9 FM. I hope आपको मेरा concept अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं जब बातें करती हूँ काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन इसीलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट देती हूँ. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स. हम सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं आज. एंड उस ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट ट्विन फ्लेम्स आर. तो अगर आपको नहीं पता, देन स्टिक अराउंड, वी गोना टॉक सम मोर. ओके, तो आज मैं आपसे एक प्रॉम्प्ट करने वाली हूँ, ठीक है? एंड पता है प्रॉम्प्ट क्या है? आई वॉन्ट यू गाइस, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर अगर हो भी चुकी है, आई डोंट नो, आई मीन यू सूट योर सेल्फ व्हाट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है? I want you guys to think about someone, okay? आप उनको मैसेज मत करिए, उनका इंस्टाग्राम मत स्टॉक करिए, डोंट सेंड देम अ टेक्स्ट, जस्ट थिंक अबाउट देम, ओके? What happened when you met them for the first time? Did you feel like a calm energy? Did you feel excited? Did you feel anxious? Did you feel obsessed? या फिर did you feel safe? Did you feel like you suddenly entered a story that somehow had already started? Did you ever feel like that? Because today we are going to spend the next 1 hour, abhi 9 to baj chuke hain, 1 hour, aur main aapke saath sirf 10 baje tak hi hoon, exploring that feeling. Aur iske baad hum kal is bare mein baat karenge, Wednesday ko bhi isko continue karenge. Each day this week we're going to talk about the twin flame energy, lekin we're going to talk about something different, what to do, what the patterns are, and so on and so forth. Okay, and by the end of the night, by tonight, you may still believe that they are your twin flame, or aap apna pura पलटी मार दोगे. यू मे रियलाइज दैट दे वर समथिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट, मे बी दे वर योर मिरर. आई मीन टेक्निकली ट्विन फ्लेम्स आर मिरर. ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? ट्विन फ्लेम होता है का मतलब वो होता है कि आप एक ही पर्सन हो, बट सम हाउ योर सोल हैज स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स, एंड द टू पार्ट्स आर बेसिकली कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक फॉर ईच अदर एंड फाइंड ईच अदर, लेकिन सम हाउ बिकॉज दे नीड टू ग्रो विद इन देम सेल्व्स, दे आर नॉट एबल टू फाइंड ईच अदर. ठीक है, today we are going to talk about that. So by the end of the night, या तो you will actually start believing they are your twin flame, या फिर you realize there was something more important, that is your mirror, या फिर आपकी परछाई दिखा रहे हैं. ठीक है, तो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आके बात करेंगे.

तो गाइस हम बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम्स के बारे में, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रनर एंड चेजर का, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट द अवॉइडेंट एंड द एंग्शियस अटैचमेंट। इट्स बेसिकली ऑलमोस्ट द सेम थिंग, एक्सेप्ट अभी इसको उसी चीज़ को हम स्पिरिचुअलिटी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आप बहुत बार अब एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। वन ऑफ द इन अ पार्टनर इक्वेशन देर इज़ वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स एंड द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू लैच ऑन टू इट इवन टाइटर। एक दूर भाग रहा है, एक उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। एंड ये वाला डायनामिक हमेशा चलता रहता है अनलेस बोथ द पार्टनर्स रियलाइज दैट दे हैव टू ग्रो विद इन देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग ईच अदर, परस्यूइंग द पार्टनर। The pursuit is of themselves, of their own true self. ठीक है, तो ये वाला जो equation है ये चलता रहेगा, and then something weird happens. You meet someone till someone understands you. The chemistry is incredible. आप उनसे बात करो 3 बजे तक आपकी conversations जा रही है. You're finishing each other's sentences. You're making plans. You're thinking, oh my god, this is it. And then suddenly वो गायब हो जाते हैं. No explanation, no warning, the messages get shorter, the phone calls disappear, and you can feel the distance too. So what do? आप उनकी तरफ और भागते हो, आप उनसे पूछते हो what's wrong, आप एक और text भेजते हो उनको, and then another, are we okay, and then you move further away. Welcome to the most famous concepts in the twin flame culture. This one's called the concept of the runner and the chaser. Which one do you identify with? Tell me about it, okay? If you want to share more about it, you can call me and let me know on 972-235-5555. Twin flame ke connection mein ek person bhagta hai, to dusra uske piche bhagta hai. One, the other one chases. The more one chases, the further the other one runs away. Here's what I want to challenge the romantic version of the story. क्योंकि sometimes the runner isn't running because the connection is too powerful. ठीक है, romances में, movies में हमेशा ये दिखाते हैं, हमेशा आपने ये वाला narrative हमेशा सुना हुआ है कि the runner जो है उसके लिए connection इतना ज़्यादा powerful हो जाता है कि वो भागता रहता है. He's like, he can't handle the love, he or she, जो भी है, I mean it doesn't matter honestly, but they can't handle the love, they can't handle the intensity of the relationship, इसीलिए वो भाग रहे हैं. हम अपने आप को ये narrative समझा देते हैं, अपने आप को ये convince करने की कोशिश करते हैं कि that is the truth, but sometimes you also have to think a little bit practically. ठीक है, I understand कि हम spirituality के बारे में बात करें, लेकिन आपको थोड़ा सा practical भी सोचना पड़ेगा. Sometimes you have to entertain the possibility कि आपका जो runner है, maybe they don't want the relationship, maybe not in this lifetime, okay? Maybe they'll be ready for it in another lifetime, but maybe in this lifetime they just don't want it. Maybe they have made up their mind. Maybe their priority is something else. Okay? Because spirituality should never become an excuse. Just because wo spiritual meaning hai, uska matlab ye nahi ki hum apna dimag lagana chhod denge. It doesn't mean that it is an excuse for someone's lack of communication. Koi person aapse baar baar dur bhag raha hai, aap usko, uska matlab ye nahi hai ki uske piche bhagte rahoge ye soch ke ki nahi ye itna powerful connection hai, ye confront nahi kar raha hai, nahi. Sometimes you just have to let it go. ठीक है, तो the big question, आज का सबसे बड़ा सवाल, today's uncomfortable question is, if someone constantly disappears from your life and they repeatedly reject you and they repeatedly tell you that they don't want a relationship, does calling them your twin flame really change the answer? क्योंकि उन्होंने तो अपना decision आपको बता दिया है, and that's a no, and that's important, because love का मतलब ये नहीं है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रियलिटी को अबैंडन कर देंगे, है ना? सोचिए इस बारे में. समटाइम्स यू नीड टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम योर बेस्टी, नो?

0: 9 ऑन द क्लॉक, लेकिन अभी छोटे से कमर्शियल ब्रेक में हम जाने वाले हैं. लेकिन जाने से पहले गाइस, तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है. एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो गाइज, राखी आने वाली है, डोंट वरी. राखी में अगर आपको गिफ्ट ऑप्शंस अगर ढूंढने हैं अपनी बहनों के लिए, तो तनिष्क जाइए. उनका इतना अच्छा सेल चल रहा है, यू नेवर नो व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट. क्योंकि यू नो व्हाट गाइज, डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर एवर, दे आर मोर इरेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड. सो मेक श्योर यू गो देयर.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: हेलो, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं. एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे. फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.

गाइस, एक चीज कोई नहीं बोलता है इस सारे ट्विन फ्लेम के चक्कर में. नोबडी टॉक्स अबाउट द साइलेंस. आई नो हाउ हार्ड इट इज कि जब आप आपको लगता है कि इनके साथ आपका कोई बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है और आप उनकी वेट कर रहे हो. आई नो द फीलिंग, ठीक है. एंड आप वेट कर रहे हो साइलेंस में कि मे बी दिस पर्सन इज गोना टेक्स्ट यू बैक, मे बी दे गोना कॉल यू. एवरी वन टॉक्स अबाउट द मीटिंग, द रिकग्निशन, द केमिस्ट्री, द सिंक्रोनिसिटीज, द बटरफ्लाइज. लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आप रात के 2 बजे उठ के आप सोच रहे हो कि यार उन्होंने मेरे को टेक्स्ट क्यों नहीं किया. रात के 2 बजे आप परेशान हो रहे हो, ठीक है. नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ यू ब्लॉक देम ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ यू डिलीटेड देयर नंबर एंड देन सडनली रियलाइजिंग कि अरे भाई मैंने तो रट्टा मार लिया इसके नंबर को. नोबडी टॉक्स अबाउट checking their social media even though you promised yourself that you are not going to check it. Okay? Nobody talks about pretending that you are fine and you're trying to move on with your own life, which is a very good thing. At least you're taking the step, right? But the part of the story that people call, this is the part that people call separation. And maybe the separation isn't about getting them back, but maybe it's about getting yourself back. Maybe that separation is a chance for the universe. It's a question that the universe is asking you. कि आप अपने अंदर देखो, आप अपने अंदर के इंसान को देखो before you can find someone to complete you. First, maybe see if you can try and complete yourself from within.

तो गाइस ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से हम एक बहुत ही पावरफुल एक चीज उठा सकते हैं. ओके, एंड दैट थिंग इज कि इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम द अदर पर्सन ऑफन बिकम्स अ मिरर. वो नेसेसरली वूंड्स नहीं क्रिएट करते, वो आपको नेसेसरली चोट नहीं देंगे या फिर आपके दिल को नहीं तोड़ेंगे एज सच. वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज को रिवील करते हैं. दे शो यू वे यू डोंट फील वर्दी, वे यू आर डीप डाउन अबैंडनिंग योर सेल्फ. आप जहाँ पे वैलिडेशन चेस कर रहे हैं, वे यू आर कन्फ्यूजिंग इंटेंसिटी विथ इंटिमेसी, वेदर यू टॉलरेट इनकन्सिस्टेंसी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन एंड दैट इज अनकम्फर्टेबल बिकॉज इट्स मच ईजियर टू से भाई वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है, आई एम इज द चेजर, आई एम द चेजर, ही इज द रनर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इट्स वेरी इजी टू से दैट. लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस टू फेस लाके एक मिरर देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू नो यू आर अक्नॉलेजिंग आपके अंदर की कमियाँ, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है इसका. इट इज ईजियर टू से दैट दे आर माई ट्विन फ्लेम इंस्टेड कि दिस रिलेशनशिप इज शोइंग मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई डोंट रियली वॉन्ट टू सी और कन्फ्रंट. कभी आप इतने इस बारे में सोचा है भाई? अपना ध्यान रखिए बिकॉज यू नेवर नो वेन यू विल गेट दीज काइंड ऑफ लाइफ लेसन इन लाइफ. लाइफ लेसन लाइफ में ही मिलती है ना. तो आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे. इट इज़ 9:47 ऑन द क्लॉक. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे. दिस इज़ इपी द हिपी. ये आज की आखिरी बात है मेरी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी. कल आप आइए, कल हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. यू कैन ऑल्सो कॉल मी एंड टेल मी इफ़ यू हैव कम अक्रॉस एनी फिनोमिनन इन योर लाइफ और एनी पर्सन दैट यू थिंक माइट बी क्लोज टू व्हाट अ ट्विन फ्लेम इज़. और कल हम और बहुत सारी इसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को लेके बात करेंगे बिकॉज सम हाउ आई हैव फाउंड माई सेल्फ डीप इन टू दिस स्टफ दीज डेज. बिकॉज यू नो वॉट, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ मतलब सब सब कुछ काइंड ऑफ स्मूथली चल रही होती है, तब आपको कुछ कीड़ा होता है, चाहिए होता है लाइफ में कुछ करने का. तो मैं आजकल ये सब के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ. तो आइए ब्रेक के बाद कल आइए 7 से 10. आई विल बी हियर विथ यू इपी द हिपी ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस. लेकिन जाने से पहले मैं ये बोलूंगी, अपना ध्यान रखिए. और अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रख पा रहे हैं, देन टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक भी है, वो भी आपका ध्यान रखेंगे बिकॉज दे हैव बिन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 13 ईयर्स. नाउ दे आर ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रे, सी टी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. दे आर ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट इज needed.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
6: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
5: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
7: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: chair.
1: Que dil kare tu cha tu cha cha. Que dil kare tu cha tu cha cha.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 Karat Pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे। इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीत वापस लाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक ही लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरियोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: 104.9 FM, Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ.
2: अच्छा सुना
1: है?
2: सुना
1: हाँ. वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी.
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: व्हेन लाइफ फील्स टू लाउड इट्स टाइम टू लिसन विद इन जॉइन मिरेकल रिदम्स ए 4-डे मेडिटेशन बॉडी वर्क एंड मूवमेंट रिट्रीट बाय ओशो यूनिवर्सल एट ओशो Kevalya Dham in Denison.
8: My name is Ritika Anand, Sanyasne Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
7: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

0: Phoenicia Radio 104.9 FM.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे बदमावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: help me.
1: Kaash.
0: Please help me.
2: रिकॉर्डिंग्स लाइंड अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: Ha-oh.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
13: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
12: Fikar not. We have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
14: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: We need to talk.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
0: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan.
8: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Dad, property papers kahan hai?
11: Laptop mein.
10: Investment?
11: Google Drive.
10: Insurance? Passwords?
11: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
10: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
12: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
12: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, don't leave a mess, leave a plan.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sonor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

0: Wrong number. Vasco da Gama.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: Floors clean.
7: Check.
6: Windows clean.
7: Check.
6: Kitchen clean.
7: Check.
6: Air ducts clean.
7: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
8: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: अरे यार, घर मिल गया।
10: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
10: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
14: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
8: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र
7: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
8: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
9: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
12: उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ये बॉक्सेस उठा ले रे
13: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं
12: अच्छा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो
13: डॉक्यूमेंट्स बॉक्सेस पूरा घर रिलोकेशन इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक
13: सिर्फ इंडिया नहीं विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज
9: SFL वर्ल्डवाइड घर हो गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव सब सेफली पहुँचता है विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
14: लिया
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया
14: नहीं आया
12: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
15: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
12: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
15: सच में सब संभाल लेंगे
12: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
16: Ocho.
17: Hoko.
16: Ocho.
17: Hoko.
16: Ocho.
17: It's Hoko.
18: अरे बस भी करो यार
17: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है
18: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
19: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your morning drive time with me too. जी हाँ, आप भी उतने ही surprised हैं जितनी मैं actually right now, in the sense कि जो मौसम दिख रहा है बाहर, यार अंदर मतलब कितनी खुशी है इस बात की, आई कांट टेल यू। जब बाहर निकली थी आज सुबह ना, तो ऐसा फील हो रहा था जब वो एक आध बूंद जब आसमान से गिरे, तो आई फेल्ट लाइक वो घन न लगान का गाना मेरे बैकग्राउंड में चलने लगा। वो वाली खुशी आज मिली है मुझे। सो डेफिनेटली दैट वेदर अपडेट विद दैट गुड न्यूज ऑफ फ्यू डिग्रीज लोअर दैन द पास्ट टू डेज दैट वी हैव हैड, आई मीन द हॉटेस्ट डे सिंस 2023 दैट वी हैड ऑन संडे एंड येस्टरडे Day, ladies and gentlemen. So this is Gapshap Gali with me too, that it will follow up with. जी हाँ, शबनम जी को कवर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप वर्ल्ड न्यूज बहुत मिस करेंगे उनका, लेकिन ठीक है, हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर आपका साथ रहा। 972-235-5555 एंड शी विल बी बाय द वे बैक टुमॉरो विथ द धमाका of news, information, and way beyond that she brings on her show. This is Me Too for all of you. Let's begin.

इट इज ऑगस्ट 25th, लेडीज एंड जेंटलमैन, घड़ी मिला लीजिए हमारे स्टूडियो के घड़ी के साथ. इट इज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पास्ट 8, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. एंड ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ट्रैफिक कंडीशंस, जो लेकर आए हैं आपके लिए अटर्नी ओमर ख्वाजा. आप जान लें कि भाई अगर आप किसी एक्सीडेंट या यू नो स्लिप एंड फॉल कुछ इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे यू थिंक द अदर पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड गेट सर्टन कॉम्पनसेशन, लेकिन आप कतराते हैं यार कि कैसे वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैक एंड फोर्थ वो सारी चीजें करना, तो फिर अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये आपके लिए आपका लीगल बैटल लड़ेंगे विथ ऑल द पैशन एंड द माइट दैट दे हैव. क्योंकि एक सिंपल बट वेरी पावरफुल स्टेटमेंट दैट दे हैव फॉर यू, दैट यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज वन. लेडीज एंड जेंटलमैन, 4693005046 इज दैट नंबर टू कॉल, एन अटर्नी omar.com is the website to go. और उन्हीं के तरफ से आप लोगों के लिए ट्रैफिक अपडेट, दो मेजर इंसिडेंसेस जो बताने वाली हूँ. मेजर कोलिजन दैट हैज हैपन ऑन लूप 12 एट ट्रिनिटी रिवर एल्म फोर्क नॉर्थ बाउंड, जहाँ पे राइट शोल्डर और राइट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद हैं. इसके अलावा देर इज अनादर कोलिजन एट 161 एट 635 नॉर्थ बाउंड, जहाँ पे लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद हैं. एक और मेजर कोलिजन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि I-30 पे रिज रोड ईस्ट बाउंड इज वेयर द एक्सीडेंट हैज हैपेंड, एंड देयरफॉर द राइट शोल्डर एंड द राइट मोस्ट लेन आर एब्सोल्युटली closed. There is another collision that I need to report, I-30 at Sylvan Avenue eastbound, where the two leftmost lanes are absolutely closed. And other than that, there are few minor incidences that you might face, but yes, these are the spots that you need to be careful about. If you are in a hurry, maybe a detour would be a good idea. Major backups there that you might face. Once again, thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. Music ka silsila jari rakhenge right here. This is your host, Me Too, all the way till 12:30.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Arey yaar, ghar mil gaya.
2: Ghar to dekh raha hoon. Lekin it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: Isliye call karo Ajay Prabhu of Beam Real Estate. Ajay is an experienced realtor. Wo sirf ghar nahi dikhate, har property ka honest review dete hain. Pros and cons samjhate hain. Best price negotiate karte hain. Builder incentives dilwate hain. Aur closing par cashback bhi.
2: Seriously? Achhe service bhi? Aur cashback bhi?
0: Bilkul. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
3: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Tracks that put you on the right track.

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज, एक ऐसे आर्टिस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जो जाने जाते हैं अपने अनफिल्टर्ड ब्रैश स्टेटमेंट्स और फ्रीक्वेंट कंट्रोवर्सीज इन द मीडिया के कारण, राइट? कोई उन्हें मेरे ख्याल से ये अगर समझाता ना कि ये कितना ज़रूरी है कि अपनी लैंग्वेज और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काबू में रखा जाए, तो शायद आज भी ये गा रहे होते. इतनी कमाल की आवाज़ है और इतना कमाल का गाते हैं. दिस इज़ गपशप गली विथ मीठू. तो मैं चाहती हूँ कि अभिजीत भट्टाचार्य जैसे लोग मुझे ध्यान से सुने. कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, ये तो आपने सुना ही होगा ना. टाइम एंड अगेन यू नो वी हैव सॉर्ट ऑफ फाउंड आवर सेल्व्स इन सिचुएशंस वेयर द आउटकम डिपेंड्स ऑन व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट. हमारी जुबान हमारी पहचान है. अगर आपकी बातों की वजह से ना आप अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं ना, तो तब थोड़ा रुक के एक बार सोचें ज़रूर कि क्या पता आपकी बातें आपका सबसे बुरा साइड दिखा रही हों. यू नो, आपकी बातें, आपकी चोजन वर्ड्स, लैंग्वेज शायद इतनी ही थॉटलेस या केयरलेस या हर्टफुल है कि आप या तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, या रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आ जाते हैं. हमारी लैंग्वेज, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, टोन, ऑल ऑफ दैट ना सिर्फ एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाती है हमारे इर्द गिर्द, बट आवर स्पीच सॉर्ट ऑफ व्हाट कैन आई से इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग एंड कैन ऑल्टर द कोर्स ऑफ आवर फ्यूचर इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट. यू नो, आवर वर्ड्स आर ए वे ऑफ अंडरलाइंग आवर थॉट्स एंड री इन्फोर्सिंग दैम. एट द एंड ऑफ द डे पता है ना आपको, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ. और आज की तारीख में तो भाई सोशल मीडिया पे भी हम जो लिखते हैं, वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड देयरफॉर वी आर 100% इन कंट्रोल ऑफ व्हाट वी से और राइट. यू नो, कहते हैं ना, द टंग इज ए गुड सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर. सो पुट एफर्ट इन कंट्रोलिंग योर वर्ड्स एंड इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. Hopefully, आज का ये जो change, the welcome change that we are seeing in weather, you are thoroughly enjoying. Well, two colleagues slash friends are driving together और एक गाने की request आई, तो ज़रूर पूरा किया जाएगा यार. अनिल की तरफ से call आया और अनिल साहब ने जो है अपने दोस्त जो उनके साथ ही काम पे चले हैं, सत्या के लिए उन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया. सो व्हाई नॉट यार, वी ऑलवेज लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वंस अगेन 972-235-5555. हियर वी गो.

आप जो हमारे साथ चले आए हैं ना, विल मेक इट वर्थ वाइल फॉर यू, आई प्रॉमिस. दिस इज मी टू फॉर ऑल ऑफ यू, कवरिंग फॉर शबनम जी. कल वापस आ जाएंगी और मुझे पता है कि वर्ल्ड न्यूज़ का आपको कितना इंतजार रहता है. ट्रस्ट मी, जब मैं स्टूडियो की तरफ ड्राइव कर रही होती हूँ ना, मुझे भी बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि पहला जो डोज ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ है हमें यहीं तो मिलता है. Thanks to Shabnam ji, and she'll be back as I said tomorrow. Lekin entertainment should continue, the show must go on, and therefore here I am. I'm your host Meetu, और morning drive time के बाद गपशप गली हमारी जो होती है वो गली भी पकड़ेंगे after 10 o'clock. You should know that this part of my show is brought to you by AG Fintax. If you are enjoying these 90s track, let's give them a big shout out. One of the fastest growing tax and accounting firms that they are in the US. तो अगर individual या startup या established business की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके लिए लेकर आ सकते हैं ये innovative financial solutions tailored absolutely to your needs. चाहे वो bookkeeping हो, payroll accounting या bank and credit card reconciliation से लेकर proactive tax planning, tax compliance, financial reporting या फिर business advisory service. They cover it all for you. They will help you to make your finances organized, compliant and absolutely future ready. agfintax.com इनकी वेबसाइट है और 4699429888, that's the number to call and get in touch with them. Hamare saath connect karne ke liye number hai 972-235-5555. Pankaj connected with us and therefore his request playing right now.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
5: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: It's true, हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
13: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
14: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
15: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
14: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

तारीफ. 90s म्यूजिक इज योर पैशन फॉर म्यूजिक लिसनिंग, तो आपके लिए एक और गाना पेश करना चाहती हूँ, लेकिन इन जस्ट अ बिट, बिकॉज पैशन जो है केवल म्यूजिक के फील का तो नहीं, हम अपने हेल्थ के लिए भी उतने ही पैशनेट हैं, एंड देयरफॉर वी बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ इट ऑन टाइम. एंड यही कुछ लेकर आते हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज दे योर हेल्थ इज देयर पैशन. लेट मी टेल यू दैट 214-666-6259 इज द नंबर टू कॉल, एंड जस्ट नो कि आपको जिस दिन भी अपॉइंटमेंट चाहिए उसी दिन मिलेगा. मतलब कि कई जगह होता है ना कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरी तबीयत आज खराब हुई है लेकिन 7 दिन के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहा है. Why really? क्या ही पॉइंट रह जाता है फिर उस चीज़ का, राइट? तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आर नोन फॉर गिविंग यू सेम डे अपॉइंटमेंट्स. दे आर नोन फॉर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू इन ऑर्डर फॉर यू टू से योर हेल्थ प्रॉब्लम्स और एनी आंसर दैट यू आर सीकिंग इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. पूरे विस्तार में, पूरे आराम से वो बातचीत डॉक्टर के साथ आपकी होती है, एंड दैट इज़ द प्रॉमिस दैट दे गिव यू. तो जी हाँ, याद रखिएगा, एनुअल फिजिकल से लेकर एंजाइटी केयर, फाइब्रोस्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, या फिर जो भी आप चाहते हो, ज़रूर जाएं इनके पास, बिकॉज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर कवर्स इट ऑल फॉर यू. वंस अगेन दैट नंबर इज 214-666-6259. This is Meetu with all of you until 12:30. Yeah.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म सुनो सुनो सुनो स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर
4: एनुअल फिजिकल्स प्रिवेंटिव केयर सेम डे अपॉइंटमेंट्स क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस सब एक ही जगह कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
7: We need to talk.
8: अब क्या हुआ?
7: Nothing. It's not you.
8: Oh no.
7: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
0: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: Uche dekha to ye jana sanam.
11: 90s ka romance, 90s ki melodies aur wo legendary awaaz. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhumiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
12: Tracks that put you on the right track.

सनम ओ जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर को

This is morning drive time with me too today. और वापस आ जाएंगी शबनम जी कल. I'm covering for her. और हम यहाँ से सीधे 10 बजे के बाद we'll enter the गपशप गली and that is the show I host between Monday to Friday 10 से लेकर 12:30 बजे तक. तो आज मैं आपके साथ 12:30 बजे तक हूँ और आपको बताना चाहती हूँ यार, since Saturday DFW has seen record breaking heat और temperatures हमारे 109 कुछ ऐसा जो हमने कल देखा वही कुछ आज भी आपको फील होगा. सो यस, इट इज द हॉटेस्ट डे सिंस 2023 दैट वी हैव विटनेस लेडीज एंड जेंटलमैन. ट्यूजडे एक बार फिर बहुत गर्म होने वाला है. एक्सट्रीम हीट वार्निंग विच इज गोइंग टू बी इन एक्शन एंड इट कुड रीच अप टू 109 डिग्रीज बाय द आफ्टरनून आवर्स वंस अगेन. और कुछ एरियाज में से कम भी हो सकता है, लेकिन यस, दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बारिश के जो चांसेस हैं दैट विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर्स. एंड आई कैन अश्योर यू दैट इट इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स हु हैव अ पेट. और उनको वॉक करवाना, पेट को वॉक करवाने के लिए जो जाना होता है, तो यस वी ऑलवेज गो आफ्टर 9 o'clock. कैन यू इमेजिन दैट. कल तो चलो अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी तो क्या कहूँ, गर्म हवा चल रही थी, लेकिन स्टिल हवा तो चल रही थी, हम तो उसी में खुश थे. और साथ में एक स्प्रे रख लिया था एंड दैट हेल्प ऑल थ्री ऑफ अस, माय हस्बैंड, माय डॉग एंड मी मायसेल्फ. सो यस, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, ए लो रेन चांस इज इन होप फॉर ऑल ऑफ अस टुडे. द बेस्ट चांस विल बी टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डैलस फोर्ट वर्थ एंड अनदर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ टुमॉरो. इन एडिशन द हीट विल ईज अप जस्ट अ बिट विद हाइज कमिंग बैक down to the 100 to 101 after today. जी हाँ, ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का. ये जो बारिश, ये ओवरकास्ट जो आप देख रहे हो, उससे आप मिसगाइडेड ना हो, पानी खूब से पीते रहें, बाकी आप जानते हो. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. दिस इज मी टू विथ ऑल ऑफ यू अंटिल 12:30.

मौजा मना ले। इससे ना मुझे गालिब साहब से पूछा हुआ एक सवाल याद आ रहा है। तो किसी ने गालिब से पूछा, भाई कैसे हो? गालिब ने थोड़ा हंसकर कहा कि भाई जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। ये मजे के रिलेशनशिप्स ही तो हैं जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को ना कितने आगे तक लेकर जाती है। तो ऐसे ही एक रिलेशनशिप की बात करना चाहती हूँ, एंड दैट्स रक्षाबंधन। मैं थोड़ा गला साफ करके आऊँ। मैं आपको गले का रीज़न भी बताती हूँ कि मैंने अभी अभी ना गर्मा गर्म पोहे खाए हैं, हाँ, और उसमें ना मिर्ची थी और वो मेरे गले में लग गई है थोड़ी सी। तो जी हाँ, थोड़ी सी खराश है, बट नेवर माइंड। मैंने कहा यार, दोस्तों से बात हो रही है, उनके सामने क्या झिझक क्या शर्म, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करते चलें। ये पोहे वाला जो ब्रेकफास्ट मेरा, ऐसा नहीं सोची कि रोज़ होता है, कभी कभी होता है। तो मज़े लेके मैं गर्मा गर्म पोहे खा रही थी। ये इंडिया का कितना स्टैंडर्ड चीज़ होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम वही सीरियल एंड यू नो दोज काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट दैट वी गेट इन टू। नहीं तो इंडिया में तो यार, मतलब पोहे, उपमा, देन पराठे, पूरी सब्जी, ऑल ऑफ दोज गुडीज दैट वी यूज टू ईट, जो आजकल हमारी शुरुआत दिन की ऐसी नहीं होती है। सो वंस इन अ वाइल आई एब्सोल्यूटली इन्जॉय यू नो ईटिंग द ट्रेडिशनल देसी ब्रेकफास्ट। सो देसी एक जो फेस्टिवल है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, मिर्ची तेज़ थी यार। रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ, इसकी भी मिर्ची बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि ये वो बॉन्ड है कि जहाँ पे जब लड़ाई होती है ना, वो भी बिल्कुल तीखी लड़ाई होती है, और जब जो प्यार होता है वो भी बड़ा तेज़ वाला प्यार होता है। एंड सीक्रेसी रखने के लिए तो हमारे सिबलिंग्स जाने जाते हैं, हमें जानने के लिए, समझने के लिए वो भी उसके लिए जाने जाते हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ होती है हमारे पास, कहानियों का भंडार होता है यार। उसमें से एक कहानी एक मिनट के अंदर आप एक वॉइस नोट भेजो एट 214-837-7147, दैट्स द व्हाट्सएप नंबर। इस पे एक मिनट की अपनी कहानी भेजो अपने सिबलिंग के साथ, एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, एंड जानते हैं ग्रैंड प्राइज क्या है? सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट। ये मतलब कितनी कमाल की बात है यार। सो ए बिग शाउट आउट टू देम, चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, ये सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबली खेलें। भाई बहनों के बीच क्या होता है ना कि कई बार हमारी ना हदें पार हो जाती हैं, तो बस ये हद याद रखिएगा। एट चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मीठू इन अ बिट। दिस इज मॉर्निंग ड्राइव टाइम दैट आई एम कवरिंग फॉर शबनम जी।

0: I guess.
1: And that's Bandhu 2.0, ladies and gentlemen. You are tuned into Morning Drive Time Show with me too. And aap logon ko batate chalein ki ghadi mila sakte hain aap. It is 18 minutes past 9 by the studio clock. Aur aaj ki tareek hai 25, ladies and gentlemen. Aur Tuesday ka ye din hai, jo Monday hum, you know, ek jo start of the week hota hai, kisi ke liye behad achha hota hai aur kisi ke liye not so good, kyunki ek pure hafte ki shuruaat hoti hai. Wo Tuesday aate aate wo bande thode settle ho jate hain. Aap sun rahe hain Funisha Radio, jahan pe main aaj ek thought of the day jo thoda sa adventurous hai, wo un logon ke liye share karna chahti hoon jo pareshan hain week ke start se. Hamari life na सर एक सेट पैटर्न पे चलती है. मानते हैं कि नहीं, सुबह उठते हैं, हाईवे पे ट्रैफिक मिलता है, फेस करते हैं, काम करो, फिर घर जाओ, मंडेन अपने चोर्स और एक्टिविटीज खत्म करो, और फिर वही रिपीट पे चलता रहता है पूरा हफ्ता, है कि नहीं? इट फील्स लाइक हम सब एक एंडलेस एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, नहीं? लेकिन आज लेट्स चैलेंज दैट रूटीन. आज का हमारा मंत्र है, कुछ हटके करते हैं, कुछ डिफरेंट. एंड ऑनेस्टली, कुछ हटके करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई अचानक ही भाई जाओ स्काई डाइविंग करो या इस तरह की कुछ इस तरह की चीजें नहीं करने को बोल रही हूँ. इट कैन बी समथिंग इनक्रेडिबली सिंपल.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
6: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल. 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
7: Floors clean.
8: Check.
7: Windows clean.
8: Check.
7: Kitchen clean.
8: Check.
7: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें.
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
14: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू. एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
6: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
18: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.

आज क्या डेट है बताइए जरा। 25 अगस्त, एग्जैक्टली एक महीने के बाद 26 सितंबर को आपके लिए एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एंड दैट्स सोनू निगम रेवोल्यूशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर आपको होना ही है, और आपके होने के लिए आपके पास टिकट्स होना भी उतना ही जरूरी है, और आपके टिकट्स अच्छे सीट को जाएं वो भी उतना ही जरूरी है, फॉर द प्राइस दैट यू आर गोइंग टू पे। चूज द बेस्ट सीट्स राइट नाउ, फिर बाद में कहिएगा नहीं कि याद नहीं दिलाया था हमने। टिकट मास्टर पे जाके आपने टिकट्स खरीद ली फॉर सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ना सिर्फ ये लगती है कि यार अमेजिंग सिंगर दैट ही इज, एंड हिज बॉडी ऑफ वर्क, यानी कि अमेजिंग कुछ गाने सुनने को मिलेंगे हमें, और हर किसी के टेस्ट के हिसाब से जो केटर होगा, यानी कि फास्ट बी, स्लो, रोमांटिक, अभी मुझ में काइंड सॉन्ग्स, ऑल ऑफ दैट, यू नो, वो सारे गाने होंगे। प्लस उनका जो स्टेज प्रेजेंस होता है, जिस तरह से वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, आई एब्सोल्यूटली लव हिम एज एन आर्टिस्ट। तो ज़रूर जाएं इस कॉन्सर्ट पर, और अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लेट मी टेल यू, the number to call is 855-360-SHOWS is the number to call. Exclusive media partner, of course, Fun Asia Network. चलें, इसके बाद एक giveaway करने वाली हूँ, तो जरूर स्टूडियो का नंबर तैयार रखें। सिंपल सा सवाल है खाने पीने से जुड़ा।

आप जो है ना गूगल के साथ थोड़ा तैयार हो जाए, क्योंकि आप एक एड्रेस सर्च करने वाले हैं. जी हाँ, ये मेरा फोरकास्ट है. यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो. आई एम कवरिंग फॉर शबनम जी, और मेरा नाम है मीठू. आप लोगों के साथ गपशप गली में 10 बजे से 12:30 के बीच मिलती हूँ, विच टेल्स यू कि आज भी मैं 12:30 बजे तक आप लोगों के साथ ही होने वाली हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी कंपनी हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल्स दैट आर कमिंग इन. कॉल करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि एक एड्रेस आपको ढूंढना है, ठीक है. लेकिन वो एड्रेस ढूंढे, आप जानते हैं दुनिया में ऐसे जो सबसे ज़्यादा सर्च्ड एड्रेसेस जो है वो कौन से हैं इन इन द वर्ल्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. यस, देर इज़ नो वन कंसेंसस टू दैट, बट आई टेल यू दिस कि आईफिल टावर इन पेरिस, टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क एंड ताजमहल इन इंडिया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनकी सर्च सबसे ज़्यादा पाई जाती है. एंड ऑफकोर्स Sherlock Holmes Museum as well is listed in pop culture lists as the most famous fictional residential address in the world. It is 221B Baker Street. We all know that, right? अब एक असल address पे आ जाएं. आपको मुझे बताना है चंडीगढ़ बाइट्स का एड्रेस. अब एड्रेस तो लगेगा ही ना, कि अगर आप $10 अगर जीतते हैं तो फिर आपको तो एड्रेस चाहिए होगा चंडीगढ़ बाइट्स का. तो बताइए, ढूंढिए और बताइए चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, इनका एड्रेस क्या है. एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आप मेरे विनर होते हैं आज के, तो आपको $10 ऑफ मिलेगा ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. प्लस मैं पूरी जनता को, हमारे पूरे लिसनर्स को बता दूं कि स्पेशल थाली इनकी जो रहती है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो chandigarhbites.com पे जाइए या गूगल सर्च कीजिए और मुझे बताइए चंडीगढ़ बाइट्स का एड्रेस क्या है. You are listening to Gapshap Gali with Me Too. That is going to start at 10. Filhal, chale. इस अगले गाने पर शाहिद कपूर से, शाहिद कपूर के ब्रदर ईशान खट्टर की याद आ गई यार.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern mangalsutra dhoonte thak gayi hoon.
3: To CaratLane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangalsutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at CaratLane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. CaratLane, now open in Frisco next to Tanishq.
5: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, इतना सब और price?
7: Up to 25% off on lehengas and bridal collection summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional हो या fusion, अब हर outfit बोलेगा।
9: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
10: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
9: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
10: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
9: इंडिया तक।
10: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
7: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुंचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
14: होचो
15: होको
14: होचो
15: होको
14: होचो
15: इट्स होको।
16: अरे बस भी करो यार।
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है,
12: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
17: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज
10: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
20: Tracks that put you on the right track.

जब कस्टमर कुछ बोले ना तो जाने नहीं दिया जा सकता है, दैट्स ए फैक्ट. सी वी आर अ जनरेशन जो कि हमेशा एक क्लोज आईज हम रखते हैं ऑन द लेटेस्ट स्मार्ट वेयरेबल्स एंड मोबाइल एप्स, और आज की अपडेट इसी से रिलेटेड है आप लोगों के लिए. फाइनली वॉलमार्ट और सैम्स क्लब आर लॉन्चिंग टैप टू पे ऑप्शंस, और इसका रोल आउट कल से सिलेक्ट स्टोर्स में शुरू हो चुका है. फॉर ईयर्स यू नो शॉपर्स वर स्टक मैनुअली इंसर्टिंग और स्वाइपिंग फिजिकल कार्ड्स, जबकि टारगेट जैसे रिटेल कंपेटिटर्स ने 2019 में ही डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कर चुके थे वो, और ये फैसिलिटी दे चुके थे वो अपने कस्टमर्स को. ऐसा लगता है कि वॉलमार्ट वॉज इंटेंशनली एज इफ होल्डिंग आउट टू पुश कस्टमर्स टूवर्ड्स देयर ओन प्रोप्राइटरी वॉलमार्ट पे ऐप टू ट्रैक शॉपिंग डेटा, लेकिन कस्टमर्स की एंडलेस कंप्लेन फाइनली काम आ गई. उन्होंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया हाईलाइटिंग ऑल दोज एंग्री कमेंट्स एंड ऑफिशियली सरेंडर्ड. इस साल के एंड तक ऑल यूएस लोकेशंस विल सपोर्ट एप्पल पे, गूगल पे एंड कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स, और गैस स्टेशंस पर ये फीचर मिड नेक्स्ट ईयर तक आने वाला, मिड 2027 तक आ जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम आप अपनी ग्रोसरी रन पर जाएं, यू कैन फाइनली जस्ट टैप योर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच और एफर्टलेसली जस्ट चेकआउट आप कर सकते हैं एट वॉलमार्ट एंड सैम्स क्लब. है ना अच्छी सी खबर. ये अच्छी सी खबर ये जो बंजारे, ये जो एक ब्रदर्स का डुओ है ना, उनका ये गाना सुनवाती हूँ और फिर उसके बाद बात करेंगे उनके दूसरे गाने पर विच इज ऑल्सो ट्रेंडिंग लेडीज एंड जेंटलमैन.

जब मेहनत का रास्ता सही इंटेंशन के साथ जुड़ता है और सितारे अगर आपके आपके साइड हैं तो भाई चमकता जरूर है। चमकने के ऊपर कुछ बताने वाली हूँ और दैट इज अबाउट द ब्रदर्स बंजारे, जो ये ब्रदर डुओ है इनके बारे में बताने वाली हूँ, अनुज एंड सुमित कुमार के बारे में बताने वाली हूँ। बट प्रायर टू दैट एक और बहुत ही चमकती हुई चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर चमकता हुआ इनका करियर। एंड दिस इज पीएम जे ज्वेल्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, क्योंकि हर ओकेजन को थोड़ा सा और चमका देता है। स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस इनके पास जो हैं वो हर सेलिब्रेशन हर माइलस्टोन को बिल्कुल चमका देता है। एज आई सेड, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टमनेनी, पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जेनरेशंस पीपल। ये आपके लिए फ्रिस्को में है एंड दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप राइट हियर इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट। इट इज पीएमजे ज्वेल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। द स्टोरी अबाउट द टू ब्रदर्स अनुज एंड सुमित कुमार, बंजारे के नाम से ये इंडी पॉप डुओ जानी जाती है और कोविड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल से म्यूजिक प्रोड्यूस करना इन्होंने सीखा और फिर उन्होंने ये गाना बनाया जो आपने अभी अभी सुना, बैरन, जो कि वायरल हुआ। और हरियाणवी एक ऐसा गाना पहली बार मेरे ख्याल से ऐसे पैन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी ये पूरी तरह से पसंद किया जा रहा है। एंड देन द हरियाणवी बॉयज दे एंटर्ड हॉलीवुड एज वेल, और ये तब हुआ जब सोनी पिक्चर ने इनके सेल्फ प्रोड्यूस हरियाणवी ट्रैक बरसात को एज प्रमोशनल कैंपेन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए उन्होंने यूज़ करने का डिसाइड किया। और ये जो है कितनी कमाल की बात है। एंड दे सेड कि यू नो कि बचपन में उन स्कूल में हरियाणवी लैंग्वेज बोलने पर स्कूल में फाइन लगता था, और आज सोचिए ज़रा, टुडे दैट एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज एन इमोशनल एंथम ऑफ ए ग्लोबल मार्वल ब्लॉकबस्टर, एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल माइलस्टोन फॉर रीजनल इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इज़न दैट ट्रू। और ये गाना जो बरसात में आपके लिए लगाने वाली हूँ, ये उनके एक खुद के हार्ट ब्रेक्स और उसको नेविगेट करते हुए दे हैड दिस एपिफनी ऑफ द सॉन्ग दैट यू माइट कॉल इट लिरिक्स, जो कि एक्चुअली पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर के ट्रैजिक सिनेमैटिक जर्नी व्हेन ही वाज लोनली व्हेन ही वाज लेफ्ट बाय द वर्ल्ड, उसके साथ इतना अच्छा फिट कर गया। एंड दैट्स व्हेन दीज सोनी म्यूजिक इंडिया दे डिसाइडेड टू यूज इट एज प्रमोशनल कैंपेन in India, and that's the song Barsaat that I'm going to play for all of you. अगर आप जानते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके डेटाबेस में एक एडिशन यहाँ पे हमने अभी अभी कर दिया। फनीशर रेडियो 104.9 FM पे, दिस इज

0: are listening to Funisha Radio 104.9 FM. सपने ना सच होते हैं अगर सही रास्ते आप चले और वो रास्ता अगर ड्रीम होम मॉर्गेज की तरफ से तरफ चले तो फिर आपका जो सपने वाला घर है ना वो बिल्कुल आप खरीद सकेंगे. दे आर एक्सपीरियंस टीम एंड कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर टू योर नीड्स वेदर यूर बाइंग योर फर्स्ट होम अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग ड्रीम होम.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
4: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
1: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता
4: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
12: Tracks that put you on the right track.

0: नहीं समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं।
1: नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि आज भी ये कैसे चल रहा है कि हीरो और हीरोइन में इतना एज गैप होता है। एंड दिस एक्चुअली ड्रू अटेंशन, इफ यू रिमेम्बर, व्हेन यू नो वामिका गब्बी एंड अक्षय कुमार वर पेयर्ड इन दिस हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला। एक तो क्या ही बनाया था वो समझ में नहीं आया, एंड दैट केम फ्रॉम प्रियदर्शन वॉज ऑल्सो ए वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। और इस क्रिटिसिज्म को ऑनलाइन जब लोगों ने काफ़ी करना शुरू किया तो अक्षय कुमार का जवाब इसके लिए ये था कि यार एज गैप्स जो है इस तरह के बड़े कॉमन है फिल्म्स में, बट क्यों कॉमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट समडे। कि क्या लगता है आपको, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि भाई रियल लाइफ में भी मैरिजेस में कई बार ऐसे एज गैप्स हमें मिले हैं, लेकिन यार हमारे वो दादा दादी नाना नानी के टाइम पे हुआ करते थे, अब नहीं होता है। अगर होते भी हैं तो बहुत ही गिनती के केसेस होंगे कि इतना एज डिफरेंस होता है, और अगर होता है आज के दिन में भी जब होता है तो क्या लगता है आपको कि वो उसका सक्सेस रेट कैसा होगा, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल्स कितनी अलग होती है। लेकिन यस, समथिंग टू बी कंसिडर्ड कि हर इंसान की मैच्योरिटी लेवल बहुत अलग होती है, तो एक बहुत यंग इंसान हमसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट। सो ये चीज़ ना, ये काफ़ी डिबेटेबल फैक्ट है। मे बी किसी दिन ना इसी बात पे बात करेंगे, द एज डिफरेंस इन पार्टनरशिप ऑफ लाइफ। फिलहाल चलें आगे बढ़ें, क्योंकि यार मेरी तो गपशप आप लोगों के साथ आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे कंटिन्यूड रखने वाली हूँ गपशप गली विथ मी टू। वेलकम ऑन बोर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वे टिल 12:30।

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. हमारी गपशप जो है ना, सीधे मैं लेकर जाने वाली हूँ आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे. रीजन बीइंग कि हमारी बातों में, हमारी गपशप में हेल्थ हमेशा एक प्रायोरिटी रखता है. ये दोस्तों के बीच भी ना आप ये कभी ना कभी जिक्र करते हो, यार ये नहीं कर रहे हैं हम, वो नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स यू हैव दैट कॉन्शियस फीलिंग विद इन कि जो नहीं कर पा रहे हैं उसे करने की एक चाह तो है. और वो रास्ता ना सीधे पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ जाता है कि अगर आप अपने हेल्थ का सही सही ख्याल रखना चाहते हो विदाउट द बर्डन ऑफ यू नो गोइंग टू अ डॉक्टर, यू नो वेटिंग फॉर द डॉक्टर कि मतलब आपके कब मिलेगा अपॉइंटमेंट, की पता चले कि भाई आपके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके जवाब आपको कब मिलेंगे. आपको यहाँ पे सेम डे अपॉइंटमेंट मिलता है, सबसे बड़ी बात इनकी ये है. और आपको मतलब एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है फॉर यू टू एक्सप्लेन योर क्यूरोसिटीज, योर कंसर्न्स, वट एवर यू हैव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. आप आराम से डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो. तो ये वो जगह है जहां पे एनुअल फिजिकल हो सकता है, या अगर एंजाइटी केयर या फाइब्रोस्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड बहुत सारी और चीजें. मैं कहती हूँ कि भाई बात करो एंड वो बहुत सारी और सर्विसेज क्या अवेलेबल हैं इन दिस लोकेशन आप जरूर पता करो. 214-666-6259 इज द नंबर. और पता है इनका टैगलाइन क्या है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का, योर हेल्थ इज देयर पैशन. ये मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू.

0: आधी रात को लड़का लड़की दोनों साथ में
1: नया जमाना
0: बिल्कुल
1: शुक्र मनाओ दूर दूर खड़े हैं
0: हाँ
1: हाथ पकड़ा तो
0: दुनिया ही थम जाएगी
2: ओए क्या कहा पकड़ लिया हाथ मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या
1: उनसे पूछिए ना
2: राम जी राम जी हाथ पकड़ने से दुनिया रुक गई नहीं रुकी अब आप जा सकते हैं
0: बोलता है नहीं रुकी चलो
2: चलिए चलते हैं राम जी

0: यू डू अंडरस्टैंड ना कि कंपोजर ने जो ये बच्चों की आवाज इन कोरस यूज की वो कितनी खूबसूरत बात है, टू ब्रिंग दैट इनोसेंस, दैट सिंप्लिसिटी, दैट प्योरिटी इन दिस सॉन्ग दैट वाज कंपोज बाय, आई टेल यू हु, विशाल सी. मुझे इनका लास्ट नेम आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट हियर, लेट मी सी इफ आई कैन क्विकली फाइंड इट आउट फॉर यू. इट्स विशाल चंद्रशेखर हु कंपोज्ड इट. और ये फिल्म सीता रमनम जो आपने सुना, सीता रमम, सॉरी. सो यस, काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पोजर्स हैं जो ऐसी चीज़ों पर ना बड़ा ध्यान देते हैं. एक और ऐसा गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहती हूँ जिसमें वी हैव दोज बच्चों की हंसी, बच्चों की एक जो एक एक कोरस में उनका एडिशन एंड ऑल ऑफ दैट. शांतनु मोइत्रा बींग एट द हेल्म ऑफ दैट सॉन्ग. वो गाना अगर सुनना है ना, कौन से गाने की बात कर रही हूँ, तो आपको ब्रेक के बाद वापस आना है. और आने के लिए आप जानते हैं कि यू हैव टू स्टे ट्यून्ड राइट हियर ऑन 104.9 FM. दिस इज़ फन एशिया रेडियो और ये है शो गपशप गली. और आप लोगों के साथ ये जो गानों का सिलसिला और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा अंटिल 12:30.
1: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Dad, property papers कहाँ हैं?
3: Laptop में.
2: Investment?
3: Google Drive.
2: Insurance? Passwords?
3: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
2: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
4: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
4: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho?
7: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
10: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.senadainc.com today.
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durant. Apni story WhatsApp kijiye 214-837-7147 par ya contest details ke liye visit kijiye Funisha Radio ke social media pages.
4: Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
8: Tracks that put you on the right track.

Sonu Nigam, ladies and gentlemen, he was a singer of that song, as we all know. और पता नहीं कितने सारे और अच्छे अच्छे से गाने वो लेकर आने वाले हैं. एंड उनका करियर जो कि 90s से शुरू हुआ अब तक इतना बढ़िया चल रहा है. एंड ऑल थैंक्स टू हिज पैशन फॉर म्यूजिक, हिज डेडिकेशन फॉर म्यूजिक एंड द चॉइस ऑफ म्यूजिक दैट ही ब्रिंग्स. एंड वेरी वेरी कीन टू लिसन टू हिम, बिकॉज क्या है ना कि सोनू निगम एक कंप्लीट पैकेज है, कि वो गाने उनके बड़े सारे अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, और उसके अलावा वो गाते इतना अच्छा है, उसके अलावा उनका स्टेज प्रेजेंस इज कमाल का. लेडीज एंड जेंटलमैन, द वे ही कनेक्ट्स टू हिज ऑडियंस इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव. एक अच्छा सिंगर कई बार ऐसे कॉन्सर्ट्स में खिल नहीं पाता, बिकॉज वो एक स्टेज प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इनमें वो बात है कि वो पूरी ऑडियंस को अपने तरफ खींच लेती है एंड कनेक्टेड फील करती है ऑडियंस उनके साथ. सोनू निगम रेवोल्यूशन, सैटरडे सेप्टेम्बर 26th एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके फेवरेट गाने, आइकॉनिक वॉइस जो सोनू निगम की है, ये साथ में हम एंजॉय करेंगे. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. अब बात रह जाती है टिकट्स की, जो आपको मिल जाएंगी ticketmaster.com पे. वंस अगेन, इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, ticketmaster.com, या फिर यू कैन कॉल एट 855-360-SHOWS. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वुड बी योर शॉर्टकट टू द गारंटी दैट इट ब्रिंग्स दैट यू विल बी प्रेजेंट एट द कॉन्सर्ट. एंड यू मस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्द से जल्द टिकट खरीद लें. अब देर तक वेट करने का क्या फ़ायदा, अच्छी टिकट्स निकल ना जाए हाथ से, अच्छे सीट्स निकल ना जाए आपके हाथ से. ठीक है, एक और गाना मैं सोनू निगम का प्ले करना चाहती हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, बटवारा 1947, दैट सनी देओल फिल्म, यू नो, सनी देओल, प्रीति जिंटा एंड शबाना आजमी इन द फिल्म. और ये गाना जो है, इट इज़ गोइंग टू चेंज द गियर ऑफ द रिदम दैट वी वर ऑन, लेकिन नॉनदलेस मुझे लगता है ये इतना प्यारा सा गाना है कि आई वुड बी वेरी हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू. सोनू निगम की आवाज़ अलॉन्ग विथ हीर.

मैं इस गाने को ना रिपीट पे सुन सकती हूँ. ये गाना इतना मीठा है, जिस तरह से रेंडर किया है ही द फीमेल वॉइस अलोंग विथ ऑफ कोर्स सोनू निगम. यार सोनू निगम इज़ एंकरिंग दिस सॉन्ग तबस्सुम. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग. और सोनू निगम की ये आवाज़, और क्या पता ये गाना भी आपको लाइव सुनने को मिल जाए. ज़रूर याद रखें, टिकट मास्टर डॉट कॉम पर जाके आपको अपने टिकट्स जल्द से जल्द खरीद लेने हैं फॉर द कॉन्सर्ट विच इज़ हैपनिंग ऑन, जी हाँ, सितंबर 26. एग्जैक्टली 1 महीने के बाद 26 सितंबर को हम इंजॉय करने वाले हैं सोनू निगम की आवाज़. क्या होता है ना कि कुछ गाने, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जो फास्ट बीट गाने हैं वो तो एनर्जी लेकर आते ही हैं, लेकिन जब आपका पसंदीदा गाना वो कितना ही सॉफ्ट रोमांटिक हो, वो भी आपको ढेर सारी एनर्जी देकर जाता है. सो यस, एक और ऐसा गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पसंद किया गया, आई एम गोइंग टू प्ले दैट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड आई डू वॉन्ट टू मैंशन कि ये जो आपने गाना सुना था, इट वॉज़ फ्रॉम द फिल्म बंटवारा, एंड इट वॉज़ द फिल्म जिसमें शबाना आज़मी की एक्टिंग की बड़ी तारीफ हो रही है. और अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल मिला हमारे लिसनर से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्स्ट डे ही ये फिल्म देखी थी. फर्स्ट शो तो नहीं पता मुझे, लेकिन फर्स्ट डे ही उन्होंने ये फिल्म देखी थी, एंड ही रियली एंजॉय द फिल्म, एस्पेशली शबाना आज़मीज वर्क. एंड दैट इज़ वॉट आई एग्जैक्टली हियर, कि उनको इस रोल के लिए अवार्ड मिलना ही चाहिए. दैट इज़ हाउ अमेजिंग शी हैज़ एक्टेड. शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ माई, एक प्रोफाउंड और इमोशनल एक एंकर बनी रही इस फिल्म का. एंड सनी देओल अपेरेंटली ब्रिंग्स ग्रेविटास एंड डिग्निटी टू हिज रोल एज सिकंदर. दोनों ही बहुत कमाल के थे. और एक फिल्म जो कि एक बहुत ही ख़ास मैसेज जो लेकर आता है कि ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी हैज़ टू राइज अबव रिलीजन डिवाइड्स, रिलीजियस डिवाइड्स एंड बॉर्डर्स. एंड दैट इज़ वॉट राजकुमार संतोषी's फिल्म बंटवारा 1947 जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था, उसका ये जो थीम है ऑफ द फिल्म. एक और एक मीठा सा खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए, गपशप गली विथ मीठू.

That's the movie A Flying Judd, starring Tiger Shroff and Jacqueline Fernandez. Jo aaj ke din release hui thi in the year 2016. Yes, we are right now at the time jab ki hum ek aisa segment lekar aate hain jab hum is din release hue kuch filmon ke gaane aapko sunwate hain. It is a simple bahana to play different music for all of you ladies and gentlemen and to share some trivias of the film. Jaise ki for example ye A Flying Judd jo Tiger Shroff ka jo costume tha blue and yellow, how many of you remember that one? Kyunki many of you might not remember kyunki box office flop rahi thi ye box ऑफिस पे और इसीलिए शायद ये फिल्म आपने देखी ही ना हो, बट आई एम श्योर ट्रेलर पोस्टर समथिंग दैट यू हैव वॉच दैट विल रिमाइंड यू कि ब्लू और गोल्ड सुपर हीरो सूट उनका जो था वो वेगस से स्पेशली डिजाइन होकर आया था. यस, इंपोर्ट करवाया गया था और ये सूट जो था उनका कुछ 20 लाख रुपीस का पड़ा था तब, 10 साल पहले की बात हो रही है. इसके अलावा फिल्म के जो मेन विलेन थे राका का जो रोल था वो नेथन जोन्स ने प्ले किया था, हु इज द एग्जैक्ट सेम मैसिव गाय फ्रॉम द हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मैड मैक्स फ्यूरी रोड. जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, रेमो डिसूजा वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये फिल्म पूरी तरह से चले, लेकिन इट डिडंट वर्क एट the box office at all. It flopped. Well, Tiger Shroff is waiting for a good successful film. बहुत टाइम से उनकी कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे ही इज वेरी एक्टिव. लेट्स स्टार्ट विद लग जा गले, एक एक्शन, हाई इंटेंसिटी एक्शन एंड रोमांटिक रिवेंज ड्रामा दैट इट इज गोइंग टू बी, ऑल्सो स्टारिंग जानवी कपूर एंड लक्ष्य कपूर लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट्स राइट, रिमो डिसूजा के साथ एक और वो फिल्म करने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू बी एन एक्शन फिल्म एज वेल एंड इट इज going to release in 2027 or 2028. Iske alawa Vajra jo ki Ram Madhwani ke saath kar rahe hain, now that is going to be a grand spiritual action saga and I am very hopeful ki ye film zarur chalegi. Naam hai Vajra. Iske alawa bhi unke paas film hai jis jo ki ek action thriller hone wali hai and Hitman is the name of the film and then there is an untitled zombie comedy film, a kid friendly zombie comedy directed by Ahmed Khan the choreographer and इसमें अनिल कपूर और नाना पाटेकर भी होंगे और ये जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर. टॉकिंग अबाउट किड्स फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन और टॉकिंग अबाउट टाइगर श्रॉफ, उनके पापा पे चलते हैं जैकी श्रॉफ पे. और मैंने ना हाल ही में एक फिल्म देखी जो मुझे बहुत क्यूट लगी यार, बहुत ही क्यूट, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग दैट सुपर हीरो एंड इट इज ए वेरी क्यूट, फुल ऑफ इनोसेंस, बट यस समथिंग दैट आई थिंक यू ऑल विल इंजॉय वॉचिंग. कुछ और मुझे फिल्म मिलने ही रही थी तो मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए मैंने ये फिल्म लगाई और बच्चों ने क्या एक्टिंग की है, सीरियसली द आइडिया, द एग्जीक्यूशन, द थॉट ऑफ कास्टिंग जैकी श्रॉफ एज अ सुपर हीरो, एवरीथिंग इज बैंग ऑन एंड द किड्स परफॉर्म सो ब्यूटिफुल. याद रखिएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच विथ योर किडोज, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो. ऑलराइट, एक और फिल्म की बात करने वाली हूँ जो आज एक दिन 3 साल पहले रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल 2, जिसके लिए आयुष्मान खुराना का सिर्फ पूजा बोलने से काम नहीं चल रहा था, पूजा करके मुझे एक सेक्सी आवाज़ निकालते थे इन ड्रीम गर्ल द फर्स्ट इन द फ्रेंचाइज. इस बारी ड्रीम गर्ल 2 के लिए उन्हें जो तैयारी करनी पड़ी वो थी इमेंस. वुमेन यू नो ड्रेस में, वुमेंस ड्रेस में उनको आना था, उनको मेकअप पूरा करना था, हैवी मेकअप उनको करना था एंड इसके पीछे काफ़ी मेहनत की उन्होंने और वो मेहनत उनकी जुड़ी है विद आइकॉनिक फिल्म चाची 420 के कमल

ड्रेस में, वुमेंस ड्रेस में उनको आना था, उनको मेकअप पूरा करना था, हैवी मेकअप उनको करना था. एंड इसके पीछे काफ़ी मेहनत की उन्होंने, और वो मेहनत उनकी जुड़ी है विद आइकॉनिक फिल्म चाची 420 के कमल हासन को उन्होंने ऑब्जर्व किया इन द फिल्म गोविंदा इन आंटी नंबर वन. ऑब्जर्व किया जहाँ पे जो हीरो है वो फीमेल की तरह तैयार होके ही दे डू द रोल. तो ये चीज़ उन्होंने, आयुष्मान खुराना ने कुछ टिप्स इन सॉर्ट ऑफ कुछ इमिटेट करने की कोशिश की वही इन द फिल्म ड्रीम गर्ल 2, विच वॉज ए हिट. एंड कॉमेडी सीक्वल्स जनरली रिस्की होते हैं, बट ऑडियंस इज कम्प्लीटली बॉट इन टू द मैडनेस, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सॉलिड बिजनेस किया. ड्रीम गर्ल 2 स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड अनन्या पांडे.

August 25th, yani ki aaj ke din, in the year 2023, Dream Girl 2 released and it was a success at the box office. Ek aur film pe le chalu, jo aaj ke din release hui thi in the year 2022 aur ye thi Vijay Devarakonda ki film, jo ki itne mashoor hai and he's a crush of the generation today. Aur Ananya Pandey unke saath aur promotion is film ki itni grand thi ki kya hi kaha jaye. It felt like the biggest event of the year and that year was 2022 और माइक टाइसन भी थे, लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन भी इस मूवी में थे. मतलब आप सोचो खर्चा किस लेवल पे किया गया होगा. लेकिन फिल्म की ओपनिंग कमाल की रही, बहुत कमाल की रही. इतना हाइप था कि बहुत सॉलिड ओपनिंग हुई इस फिल्म की, लेकिन रिव्यूज इतने खराब आए कि डे टू पर ही मूवी कंप्लीटली क्रैश हो गई, रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉसेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड दैट्स द मूवी लाइकर.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Kya aapko business khareedne ke liye loan chahiye?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: Kya aap franchise shuru karna chahte hain?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: Kya aapko apne business ke liye working capital ki zarurat hai?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: Construction ho ya renovation, business khareedna ho ya refinance karana ho, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Weekend ka plan, abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्डर टू गेम।
15: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।

0: हम भी दूर दूर से चांद सितारों से ना सही, लेकिन डैलस के कोने कोने से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. डू वांट टू मेक श्योर कि ट्रैफिक अपडेट आपको वक्त पे मिले. अगर आप अभी अभी निकले हैं तो इट माइट बी रियली रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. एंड दिस ट्रैफिक अपडेट इज़ ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा. कि अगर आप किसी एक्सीडेंट या किसी स्लिप एंड फॉल केस में आप परेशान हैं और आपको अटर्नी की मदद चाहिए हो जो कि आपका लीगल बैटल लड़ सकें और आपकी जो कॉम्पनसेशन है आपको दिलवा सकें. एंड इफ़ आई टेल यू दैट अटर्नी उमर ख्वाजा कम विद द प्रॉमिस ऑफ यू नॉट पेइंग एनीथिंग अनलेस योर केस इज वन, तो क्या बात है ना. तो 4693005046, दैट्स द नेक्स्ट मूव दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू गेट द अपॉइंटमेंट विथ देम. एंड रिमेंबर attorneyomer.com पे जाएं, फ्री कंसल्टेशन है आप लोगों के लिए, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं. उन्हीं की तरफ से आप लोगों के लिए ट्रैफिक अपडेट. देर इज ए मेजर कोलिजन एट लूप 12 at Trinity River, Elm Fork, northbound, और जिसके कारण राइट शोल्डर और राइट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद है. इसके अलावा I-35 ईस्ट पे एट बेल्टलाइन रोड इन कैरल्टन northbound, आपके लिए जो एग्जिट है वो बंद है. तो these are the backups that you might find because of the collisions. And then there is also this minor backup that you can find on I-30 at Tarrant Dallas County Line eastbound, जहाँ पे right shoulder बंद है. और इसके अलावा construction जो चल रहा है US-75 पे at Gallatin Parkway northbound, जिसके कारण minor backups आपको मिल सकता है. right shoulder बंद है, right most lane भी बंद है. So this is a traffic update. Now you can maneuver according to the need for you to reach your destination fast, or maybe you are okay to be in the queue in that backup on these lanes. And once again, ladies and gentlemen, for everything that is fresh and new, everything about Dallas Fort Worth, the businesses and all other information that you must know, we make sure that you get it right here on Financial Radio 104.9 FM, bringing the community together. This is Gapshap Gali with me too. I'm going to play this next track for all of you to enjoy. अगर आपके दिमाग में कोई गाना ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है कि सुनना ही है, तो आप जानते हो आपको क्या करना है, राइट? 9722355555 स्टूडियो का नंबर.
1: ओ सनम, ओ जिगर, तुमको हो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर को...

And that's, ladies and gentlemen, Asfar Hussain Urf Bayan. And this is the alternative rock band from Pakistan, jinka ye gaana aap sun rahe the. Hopefully you enjoyed it. Pepsi Battle of the Bands in 2018 that he won this Lahore-based rock band, jinka ye gaana behad mashoor ho raha hai. Inhi ka ek aur gaana play karna chahti hu aur ek flavor dena chahti hu inke style of music ka, kyunki bhai seekhe sikhaye hain. National College of Arts in Lahore, that is where he got his training from, and that's the style of music that he is creating, this the one that you just heard in this song. And aap sabko kehna chahti hu ki aapke liye ye jo agla gana play karne wali hu, it has come from Anil, and Anil wanted to listen to this because unhone haal hi mein inko discover kiya tha, kafi saalon se active hai, lekin ji ha unhone haal hi mein discover kiya, and he wanted to listen to this song. So yes, Anil ka wait to abhi khatam hone wala hai, lekin hamara kya hai na ki jab international airports pe hote hain, hamara na wo jo layovers hota hai us pe, yaar kya wait hai, wo endless wo jo wait hota hai hamara, aur jiska natija ye hota hai ki endless phone scrolling hamari chalti rehti hai, wo duty free window shopping chalti rehti hai hamari, aur hum gate ke paas na mayus hoke baithe rehte hain ki yaar kab waqt khatam hoga aur board kar payenge. बट इंडिया के एयरपोर्ट्स आजकल एक नया और बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और इसका नाम है फ्लाइब्रेरी. यू नो, फ्लाइंग और लाइब्रेरी को मिला के फ्लाइब्रेरी, समथिंग दैट यूएस कैन ऑल्सो स्टार्ट. आई थिंक बहुत सक्सेसफुल होगा यहाँ पर भी, कि इमेजिन करें कि आप कंप्लीटली फेयर, यू नो, फ्री एयरपोर्ट लाइब्रेरी अगर आप इस्तेमाल कर सके, बिना किसी मेम्बरशिप कार्ड के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बस जो मन किया वो शेल्फ से किताब आपने उठाई, एंड this whole initiative magically turns your boring waiting time into this quality reading time. और ये ना भुवनेश्वर एयरपोर्ट में लास्ट ईयर, अर्ली लास्ट ईयर शुरू किया गया. अब ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो है 61 सिटीज़ के एयरपोर्ट्स तक एक्सपैंड हो चुका है, स्पैनिंग मेजरली, यू नो, द टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़. एंड द रूल्स आर रिफ्रेशिंगली सिंपल. आप फ्लाइट बोर्ड करते हो, एक सिंपल सी किताब उठाते हो, जो भी आपको पढ़नी है, मज़े में आप ये बुक पढ़ो ड्यूरिंग योर वेट टाइम बिफोर बोर्डिंग और ड्यूरिंग योर जर्नी, यानी कि फ्लाइट में भी आप पढ़ सकते हो, लेकर जा सकते हो ये किताब, और फिर बस ड्रॉप इट ऑफ एट द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट. और ये पूरा सिस्टम कम्युनिटी ट्रस्ट और पब्लिक डोनेशंस पर चलता है, कि चाहे तो कोई आप अपने बुक्स वहाँ पे रख के जा सकते हैं जो डोनेट करना चाहते हो, क्योंकि हम जो रीडर्स होते हैं उनके घर इतने सारे किताब होते हैं, तो नई किताबों के लिए जगह कैसे बनेगी, ऐसे ही तो बनेगी. यू कैन ड्रॉप इट ऑफ एट दीज लाइब्रेरीज टू कॉन्ट्रीब्यूट. दैट इज द सिस्टम दैट दे हैव स्टार्टेड, एंड इट द सिस्टम इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दोज पब्लिक डोनेशंस, एज आई सेड. और एयरपोर्ट्स आर ऑल अबाउट रशिंग एंड कॉन्स्टेंट अनाउंसमेंट्स, बट this initiative I feel encourages passengers to slow down a bit, disconnect a bit from their screens to reconnect with reading, ladies and gentlemen. Nahi lagta ki aapko yahan pe US mein bhi ye cheez kamal ka chalega?

लिसन, दिस इज लंच टाइम स्पेशल और खाने पीने की बात अभी तक मैंने नहीं छेड़ी है. ये तो मतलब इट इज डेड अगेंस्ट माई फिलोसफी इन लाइफ, क्योंकि गाना और खाना साथ ही साथ चलते रहना चाहिए, है ना. तो इसी के चलते मैं आपके साथ उस ब्रांड का जिक्र करने वाली हूँ जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स है, एंड दैट्स होको, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड होको जो कि जेनरेशन्स से जेनरेशन्स को इम्प्रेस करता आया है, इस वो अब जो नॉर्थ टेक्सस में है, ये बहुत इंप्रेसिव बात है. इट इज यू नो इन फ्रिस्को एट 2693 प्रेस्टन रोड सुवीट 1000 जीपीएस को ये एड्रेस दें और सीधे पहुंचे फॉर लंच, क्योंकि इनका खाना बहुत मजेदार है. चना पूरी से लेके इनके सैंडविचेस, इनकी करीज, एंड यस ऑफ कोर्स द फेमस, द वर्ल्ड फेमस होको कोल्ड कोको. जी हाँ, ये भी आप ट्राई कीजिए. ये गर्मी के दिन ना ये इस तरह के ड्रिंक्स बहुत मजेदार लगते हैं. बिना इंडिया का ट्रिप लिए आप यहां बैठे बिठाए होको के मजे जरूर लें, एंड पूरे जो कहते हैं ना दिल के और आत्मा के तृप्त होने तक खाएं जरूर. जैसे कि अब म्यूजिक होता है ना, कि जब तक मन तृप्त नहीं हो जाता ना, म्यूजिक बंद करने का मन नहीं करता. और ऐसे में अनिल कॉल्ड मी आज मुझे 10 मिनट के अंदर दो अनिल्स ने कॉल किया. तो अनिल, आपने जो जिस गाने की रिक्वेस्ट की है ना, मैं उसको बाईपास करके एक और गाना लगाना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही ने कहा इट इज आज अनिल का डे है. तो मैंने सोचा अनिल कपूर का क्यों ना गाना एक आपको लगाऊं. आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वन.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
5: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी.
6: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
8: मेरा?
6: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
8: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sathiya.
9: Kuch awaaze sirf entertain karti hain aur ek awaaz aapki zindagi ka soundtrack ban jati hai.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
11: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
12: Tracks that put you on the right track.

You are listening to Financial Radio 104.9 FM. Zindagi Unplugged segment mein na ek topic chhedna chahti hu, and that is the topic of likability. Aur likability is topic pe main jaun. Uske pehle, what we like and love, let's talk about that in terms of food, ladies and gentlemen. Kyunki aap logo ke liye ek mauka hai to win a giveaway right now. Ab Kareena Kapoor, Varun Dhawan, Aditya Roy Kapoor, Sonakshi Sinha, Kartik Aaryan jaise diggaj logon ko pasand hai pizza. तो मतलब मैच किया ना उनका और हमारा टेस्ट, तो बताइए पिज्जा के बारे में ही कि यहाँ पे हमें कौन सा पिज्जा मिलता है जिसमें देसी ट्विस्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि सवाल कुछ और है आप लोगों से. फन पिज्जा किचन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू हैव विजिटेड देम वेरी ऑफन, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जहाँ पर ना हमें वो ट्विस्ट मिलता है, एक देसी ट्विस्ट मिलता है उस इटालियन स्पेशलिटी पे. और अब एक नए ब्रांड न्यू क्विजीन को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और उससे इंस्पायर एक पिज्ज़ा का लाइनअप आप लोगों के लिए लगाया है. तो वो क्विजीन कौन सा है? देखिए, देसी क्विजीन का ट्विस्ट तो है इनके पिज्ज़ाज में, वो इनके मेन्यू में मिल जाएगा. इसके अलावा एक और क्विजीन है जिनका पे बेस्ड उन्होंने कुछ पिज्जा लाइनअप्स रखे हैं आप लोगों के लिए. तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू टेल मी, विच क्विजीन फन पिज्जा किचन हैज टेकन अप फ्रॉम मोस्ट रिसेंटली. अगर मुझे आप बता पाए तो $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बिल्कुल मुफ्त में देने वाली हूँ आपको. एक्चुअली मुफ्त तो कहना नहीं चाहिए, मेहनत है आपकी इसमें. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो, कॉल मी राइट नाउ एंड टेल मी देसी पिज्जाज के अलावा और कौन से ब्रांड न्यू क्विजीन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. ओके, आई एम गोइंग टू गो एंड टेक दैट कॉल. इन द मीन टाइम व्हाट यू डू इज एंजॉय दिस सॉन्ग, एंड लाइकेबिलिटी इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट.

लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ठंडी सी सांस लें, और फिर देखें क्या कमाल लगता है. जी, $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को, दैट इज ऑलरेडी गॉन टू मेघा. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही फरमाया. अब देसी ट्विस्ट जो पिज्जाज में लेकर आते थे फन पिज्जा, वो तो है ही मेन्यू में, लेकिन उसके अलावा ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दे आर अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा दैट यू आर गोइंग टू गेट, राइट फ्रॉम फ्रेश फिएस्टा वेजी टू द फायरी पोलो लोको. और सी फूड स्पेशल भी है इनके पास मेक्सिकन फ्लेवर्स के साथ, तो जरूर ट्राई कीजिएगा. बाइट ऑफ बोल्ड ब्यूटिफुल डिलिशियस मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप दैट दे हैव इन देयर मेन्यू नाउ. डू चेक इट आउट एंड चेक आउट द पीपल रियली, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं. एक लाइकेबिलिटी फैक्टर ना एक बहुत बड़ी चीज होती है. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नेचुरली सबके फेवरेट क्यों बन जाते हैं? एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें ना ये एक लाइन फ्रॉम ग्लिंडा द गुड विच इन द विजर्ड ऑफ ऑज, आई एम श्योर आपने सुना होगा, कि इट्स नॉट अबाउट एप्टीट्यूड, इट्स द वे यू हैव व्यूड, यू हैव बीन व्यूड, यू आर व्यूड, यू नो दैट इज द लाइन फ्रॉम दैट सॉन्ग. और सच बताऊं तो आज के ज़माने में ना दिस इज 100% ट्रू. आपको नहीं लगता? स्टडीज एक्चुअली ये बताती हैं कि आपकी लाइकेबिलिटी आपके IQ से ज़्यादा आपके करियर के सक्सेस और आपकी खुशियों को प्रेडिक्ट करती है. लेकिन एक जेन्युइनली लाइकेबल इंसान बनते कैसे हैं यार, बताते हैं ना हम आपको. Right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Zindagi Unplugged segment on Gupshup Gali.

You are tuned into Gupshup Gully with me too, ladies and gentlemen. कुछ गाने जो आपको बेहद पसंद हैं, वही कुछ लगाने की कोशिश में हूँ यहाँ पर. Hopefully you enjoyed that track. पता नहीं इस गाने में ना एक अजीब सी एनर्जी मिलती है मुझे, अजीब सा मजा आता है आप लोगों के लिए प्ले करके. वो होता है ना कि जो चीज़ आपको खुद बहुत पसंद है, वो चीज़ जब आप किसी और के लिए लगाते हो, आपको लगता है कि अगले को भी बहुत मजा आया होगा सुन के. बस मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि यू डिड एंजॉय लिसनिंग टू दैट वन, लेडीज एंड जेंटलमैन. अब एनर्जी की बात हो रही थी तो रियल एनर्जी की बात कर लेते हैं यार. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, हियर मी आउट वेल. तारा कमर्शियल एनर्जी ये प्राउडली सर्व करते आए हैं टेक्सास बिजनेसेस को सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. तो देरी किस बात की, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जरूर इनकी वेबसाइट पे जाओ taraenergy.com, और वहीं पे आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा जो मैं अभी यहाँ पे भी बताने वाली हूँ आपको. 8444282808 इज दैट नंबर. तारा कमर्शियल एनर्जी नाम याद रहना चाहिए. अच्छा, उन बंदों का नाम आपके दिमाग में ना बहुत क्लियरली छपा होता है जो बड़े लाइकेबल होते हैं. वैसे तो लाइकेबिलिटी जो है फॉर अ पर्सन कैन बी प्रिटी सब्जेक्टिव, मानते हैं कि नहीं, लेकिन अगर जनरली अगर मैं बात करूँ ना तो ये अल्टीमेटली सोशल कॉम्पिटेंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है. द अबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस, कम्युनिकेट क्लियरली एंड बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप्स. वुडंट यू अग्री? एक्चुअली आज के ज़माने में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है, ये लाइकेबिलिटी फैक्टर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू यू नो थ्राइव सोशली एंड प्रोफेशनली? बस इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ. वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज ए फैक्ट. क्योंकि स्टडीज़ भी इसी चीज़ को वैलिडेट करती है कि भाई लाइकेबिलिटी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट योर करियर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इवन मोर देन योर आईक्यू. लेकिन एक जेन्युइनली लाइकेबल इंसान बनते कैसे हैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को. नाउ इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, यू नो द सीक्रेट साइकोलॉजी कम्स डाउन टू ए फ्यू वेरी सिंपल थिंग्स. पहला, asking thoughtful follow-up questions. जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से genuine interest लेकर सुनते हो ना, they instantly feel connected and that is only possible, ladies and gentlemen, by being fully present. ये दूसरा की aspect है कि अपने phone को side में रख कर सिर्फ उनकी बातों पर focus कीजिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज के ज़माने में इसे एक्चुअली बताना पड़ता है लोगों को कि भाई दैट इज़ ए थिंग दैट इज़ कॉल्ड मैनर्स. आल्सो सोशल मैनर्स ये कहता है कि फ़ोन साइड में रखें जब आप किसी से बात कर रहे हैं. डोंट कीप स्क्रोलिंग और यू नो लुकिंग इनटू योर स्क्रीन जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी के साथ बैठे हुए हैं. तीसरा पता फैक्टर क्या है? फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड. क्योंकि हमें नेचुरली वो लोग पसंद आते हैं जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं. एंड द एब्सोल्यूट बेस्ट पार्ट, वल्नरेबल. देखिए मैं ये ना सुबह से शो कर रही हूँ ना, इसलिए शायद ये टंग ट्विस्ट. वल्नरेबिलिटी यार, वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हूँ. आई कांट बिलीव दिस. एनीवेज, सो ये साइकोलॉजी में ना इसे एक प्रैटफॉल इफेक्ट का नाम दिया गया है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस प्रैटफॉल इफेक्ट? बताती हूँ आपको राइट आफ्टर दिस गाना.

लाइकेबिलिटी फैक्टर प्रीति जिंटा में कूट कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि उनके डिम्पल्स इतने प्यारे थे, उनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि लोगों ने इंस्टेंटली उन्हें पसंद किया था व्हेन दे सॉ हर इन द एड्स एंड लेटर इन द मूवीज, राइट? कुछ लाइकेबिलिटी फैक्टर्स की ही बात कर रही हूँ, और उसमें बिलीव इट और नॉट, वल्नरेबिलिटी इज अ बिग बिग थिंग, ए की थिंग, यू नो. और इसे साइकोलॉजी में प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं. हैव यू एवर फेल्ट ऑकवर्ड और एम्बेरस जब आप गलती से कुछ एक कुछ यू नो गिरा देते हैं, या कॉफी स्पिल हो गई, या कुछ छोटी मोटी क्लम्जी गलतियां जब आपसे हो जाती हैं? वेल, डोंट बी. पीपल एक्चुअली लाइक यू मोर क्योंकि आप रियल और रिलेटेबल लगते हैं. जैसे कि जेनिफर लॉरेंस जब ऑस्कर्स में गिरी थी ना, द होल वर्ल्ड फेल इन लव विथ हर ए लिटिल मोर, क्योंकि थोड़े से ज्यादा ह्यूमन लगते हो आप तब, है कि नहीं? प्रैटफॉल इफेक्ट दैट इट इज कॉल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए, लाइकेबिलिटी फैक्टर में ये भी है. तो अपनी गलतियों को माइक्रोस्कोप से ना देखें, ना एम्बेरस हों कि अगर कभी कुछ गिर जाए आपके हाथ से. या कभी होता है ना कि जब 10 लोग खड़े हैं तभी आप स्लिप करके गिरते हो, वो उन सारे लोगों के लिए है कि यू आर गुड. डोंट ट्राई टू हार्ड फॉर पीपल टू लाइक यू. यू कांट कंट्रोल एवरीवनस ओपिनियन, ये तो क्लियर है. इसीलिए पीपल प्लीजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी वार्म, जस्ट बी जेन्युइन, और जिन लोगों के साथ हो उनके साथ बिल्कुल प्रेजेंट रहो. बी ऑथेंटिकली यू एंड दैट्स ऑल मैटर्स. सीरियसली.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: वी नीड टू टॉक।
15: अब क्या हुआ?
14: नथिंग, इट्स नॉट यू।
15: ओह नो,
14: इट्स द डिस्टेंस।
15: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
14: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
13: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
16: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
17: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
18: My name is Ritika Anand, Sanyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
17: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
19: Tracks that put you on the right track.
2: Thank you once again for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. And literally, this platform brings not only the community together, but the topics that will be most relatable to all of you listening to us right now. And this time, मेरे साथ एक ऐसे gentleman जुड़ने वाले हैं जो हमें बड़ी detail से और बड़ी आसानी से बहुत मुश्किल चीजें समझाते हैं. And that's Mr. Hussain साहब. Hussain Panjwani from Dream Home Mortgage. DreamHomeMortgage.com is the website, ladies and gentlemen, that you must remember. Or saath hi saath, main bata dun ki 972-245-5626 is the number that you can call and get in touch with Hussain Sahab and his team. Aap email kar sakte ho info@DreamHomeMortgage.com. With that, I'm so ready to welcome the man on the airwaves of Fun Asia Radio. Kuch करीब 30 साल इनका एक्सपीरियंस इस बिजनेस में जो है इसका पूरा पूरा फायदा हम जो यू नो हमें जो मिलता है थ्रू हिज टिप्स एंड एडवाइसेस दैट आई एम वेरी कीन टू लिसन टू. इस पूरे प्रोसेस का जो होता है ना, ये जो एक टेंशन होता है हमारा डाउन पेमेंट का, घर खरीदने का, वो फाइनेंशियल टर्म्स, वो इतने सारे कंफ्यूजिंग कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि हमें ये पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रेस कर देता है. तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हमारे साथ हैं ट्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर हुसैन पंजवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज. वेलकम ऑन द एयरवेव्स. थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर द एंटायर कम्युनिटी. क्या हाल चाल है हुसैन साहब?
19: हमारे तो एकदम बढ़िया है. आपके क्या हाल है और आपकी कम्युनिटी के लिस्टनर्स के क्या हाल है?
2: थोड़े से बेहाल हैं, अभी गर्मी काफी चल रही है इसीलिए थोड़े से बेहाल हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा वेदर जो है बढ़िया होने वाला है. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू कि हमारे डैलस की जो गर्मा गर्म हाउसिंग जो मार्केट है उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं.
19: अभी तो फिलहाल गुड न्यूज आई कैन शेयर विद लिसनर्स है कि फाइनली हम थोड़ा देख रहे हैं कि लास्ट आज और कल में थोड़े रेट्स बेटर होना फाइनली शुरू हुए. वी आर फाइनली सीइंग के रेट्स थोड़े गिरना शुरू हुए, तो दैट्स डेफिनेटली गुड न्यूज.
2: यस फॉर श्योर.
19: एंड फॉर हम ये भी देख रहे हैं कि
2: जी
19: हाउसिंग मार्केट भी थोड़ी एक्टिविटीज जो हम समर की बिगनिंग में देखते अभी हम देखना शुरू हो रहे हैं. तो आई गेस इट स्किप द मंथ ऑफ जुलाई और ये अभी अगस्त की लास्ट दो हफ्ते से हम थोड़ी एक्टिविटीज देखना शुरू किए.
2: Amazing news, I am sure, for everybody who are seeking. Well, for a lot of first-time home buyers, the entire mortgage process feels incredibly intimidating. Jab young couples ya first-time buyers hai na, aapse pehli baar milne aate hain, what is that biggest myth about getting a mortgage that you constantly have to bust for them?
19: Lot of people think ke first-time home buyers ko lagta hai ke unke liye bahut sare quote unquote special programs. So I'm glad we are talking about this. Every first time home buyer thinks, oh, I'm a first time home buyer, so what is the government going to quote unquote give me? So and I always say mera 28 saal purana dialogue hai ki there are no free lunches in United States.
2: Correct.
19: You know, there are no free lunches. And first time home buyer, there are programs, but there is no certain I would say government ki taraf se koi ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कोई ग्रांट नहीं है. यू जस्ट डोंट क्वालिफाई बिकॉज यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर. देर आर सम प्रोग्राम्स आउट देयर फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, बट इट इज यू हैव टू क्वालिफाई फॉर देम. लाइक आई सेड, जो हमारी बैंक में भी एक ग्रांट है, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर इनकम. यू हैव टू बी अ फर्स्ट टाइम होम बायर, इट हैज टू बी योर प्राइमरी रेसिडेंस. बट ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, हाउस होल्ड इनकम $1.5 lakh ki hai, and you're trying to buy a $500,000 house, so you will get some kind of grant or you will get some kind of assistance from the government.
2: Absolutely.
19: It is not like that. So I'm glad we are talking about this because a lot of people are like, oh, Hussain, by the way, I'm first time home buyer. How much money is the government going to give me? Okay. Or what credit am I going to get? Or so there are no such programs. Yes, again, I want to clarify, there are programs, but most of the programs are based on your income. And of course, for lower income, there are more grants out there, some kind of interest rate incentives based on your income. So there are a couple of incentives out there, but all of them are income driven.
2: So
19: having said that, go ahead.
2: So while we are at it, I thought we'll talk about the down payment program, you know, for the first time home buyers.
19: You are reading my mind, I guess. You are ahead of me one step, as always, I guess. So, आप तो मेरे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे मुझे लगता है
2: मुझे लग रहा है
19: मुझे मॉर्गेज
2: हाँ नहीं मुझे लग रहा है मैं आपकी टीम जल्दी ज्वाइन कर पाऊंगी थैंक्स टू यू एक्चुअली फॉर सिंपलीफाइंग इट फॉर अस
19: नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट बट एज अ टिपिकल वुमन यू विल स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस
2: वो दिन दूर नहीं सच्ची बट अभी आपकी एडवाइस चाहिए तो बताएं डाउन पेमेंट प्रोग्राम के बारे में
19: इट्स अ डाउन पेमेंट इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम इफ यू क्वालिफाई The million dollar question is if you qualify, and honestly, you do qualify. $25,000, $25,000 for first time home buyer if you are buying your primary residence, and it is based on your income. So, agar aapki median income based on the county you live in, if you qualify, you're a first time home buyer, it is your primary residence, you can get up to $25,000 grant. And me too, the beauty is you don't have to pay that back if you live in that house for 5 years.
2: This is
19: there is no certain qualification fees, aapko application fees. It is all black and white. Aisa nahi ke, me too, aaye refinish radio se to chalo Hussain unko approve kara diya. Hussain ka bhai aaya to approve ho gaya. Hussain ka dushman aaya to approve nahi hua. You know, it's nothing like that. If you qualify, you qualify. If you don't qualify, there will be a reason why you don't qualify. And it is all public record. So again, agar aapki income, I'll give a generic example. Agar 78,000 ya 75,000 ke niche hai, and you have a household of four members, husband, wife, two kids, or total four members, total household income, not just borrower's income. Agar average, let's say, char log hai aur uski 76,000 to 78,000 se kam income hai, so then they can qualify for the grant. Now I'll give this example. I had a borrower, she tried for a grant and literally she could not qualify for, because her income was $800 a year over the limit, $800. Over the year, just imagine, around $67 a month, uski income wo threshold se zyada thi and she didn't qualify.
2: Wow.
19: And aisa nahi ki jaake income kam karwa sakte because that's her salary. So, and this just happened last quarter. So, I'm just telling you that agar wo qualify hote, to they would qualify. Agar uski income $1,000 kam hoti, to she would have got $25,000. She checked my first time home buyer, primary resident. But because of literally $800, she didn't qualify. So I'm just telling you, this money is out there for first-time homebuyers. So try to take advantage of it. If you're planning to buy, these funds will be available again on October 1st. So the thing we have to do is, by September 15th, finalize your house. You can apply for the loan. Get your loan approved based on the grant. And as soon as we hit 1st of October, we can submit for the grant. And we get an answer in less than 72 to 96 hours.
2: And while we are talking about this, mujhe aap ye bataiye, Hussain sahab, ki aapke saath jo ye aise jo down payment program, you know, istemal karna chahte hain, wo aapke saath kis point pe connect karein? What do you want them to do before they come to you?
19: It means just do your homework, make sure you are seriously looking for a home, you are ready to make that move. ऐसा नहीं कि आपकी लीज मार्च में हो रही है और अभी से आप ये ग्रांट की इंक्वायरी कर रहे हो इफ यू आर सीरियसली ट्राइंग टू बाय अ हाउस यू थिंक यू विल बी एबल टू कन्विंस योर लैंडलॉर्ड और समथिंग टू ब्रेक द लीज मूव इन द हाउस बाय अक्टूबर 15th और अक्टूबर 31st देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर टॉकिंग टू अस वी कैन गेट द ग्रांट ट्राई टू गेट यू एटलीस्ट हम इनिशियली आपको बता सकेंगे कि आप ये ग्रांट के लिए क्वालिफाई होते हैं कि नहीं होते इट्स लाइक pretty simple. If you qualify, we will let you know in 72 hours. Then you submit your application once your loan is approved.
2: Sounds good. And once again, to all my listeners, Hussain sahab, Hussain Panjwani sahab se hamari baatcheet chal rahi hai. Number inka 972-245-5626. DreamHomeMortgage.com is the website and you can send an email to them, info@DreamHomeMortgage.com. Anything else that you would like to add before I let
19: would,
2: you go?
19: I would like to add three more things. I'll make it as quick as possible.
2: Okay.
19: Second thing is cash out loans. Aajkal hame kafi inquiries aati hai. Cash out ke liye kafi log ke credit cards chade hue hai for whatever reason. Kiska job chhut gaya ya kisko पैसे की जरूरत है, दे वांट टू पे ऑफ द क्रेडिट कार्ड और इवन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. सो इफ यू हैव योर प्राइमरी रेसिडेंस यू कैन गेट कैश आउट अप टू 80%. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी आपको कैश आउट मिल सकता है. एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे देयर इज अ प्रोग्राम जहां आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है. यू डोंट इवन हैव टू हैव अ जॉब इफ यू आर ट्राइंग टू गेट कैश आउट ऑन योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इफ यू आर रिटायर्ड, अगर आपका टैक्स रिटर्न नेगेटिव इनकम है, यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज और आपको वो सब मगजमारी में नहीं जाना है, तो यू कैन गो फॉर नो डॉक लोन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अ लाइट डॉक लोन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. एंड अगेन गेट अप टू 65% to 75% कैश आउट. एनीवे बिटवीन 65% to 75% कैश आउट डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लो ऑफ दैट रेंटल प्रॉपर्टी. एंड देन वी हैव सम ग्रेट प्रोग्राम्स फॉर इवन सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोअर्स जहां हम आपके टैक्स रिटर्न बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं. And you can put 10% down to 20% down. We have now loans for our physicians. This is a great program where you can go with 0% down. You don't have to pay any mortgage insurance. And you can buy a house up to $2 million. Yes, a house up to $2 million as long as it's your primary residence. You don't have to be a first-time home buyer. It has to be your primary residence.
2: That's
19: and
2: incredible.
19: If you're a physician, you can go with 0% down loan. And last but not the least, any kind of commercial loan, whether you are trying to finance, get cash out on your commercial loan. Agar aapki commercial loan reset hone wali hai, aapki bank aapko hard time de rahi hai, whether it's a land, shopping complex, a development project, we can help your dream home. The bottom line means anything to do with real estate, Dream Home can help you.
2: Awesome. And that is the promise that Mr. Hussain Panjwani and his team comes with. Once again, get in touch with him, 972-245-5626. DreamHomeMortgage.com is the website. And thank you very much for taking our call and answering
19: thank
2: so
19: you,
2: many questions.
19: Always, always a pleasure. Thank you so much.
2: Thank you. You have a wonderful rest of the day. This is Gapshap Gali with me too.

ऑलराइट प्यार है लोगों को खिलाड़ी कुमार से, यानी कि अक्षय कुमार, और हमने उनको कितने अलग अलग रोल्स में देखा है, लेकिन वन ऑफ हिज डार्केस्ट अवतार्स दैट यू आर येट टू सी इज गोइंग टू बी इन दिस मूवी कॉल्ड हैवान, जहां पे मेन प्रोटैगनिस्ट या विलेन का काम कर रहे हैं, हैवान का काम कर रहे हैं अक्षय कुमार, एंड ही इज गोइंग टू गो हेड टू हेड विथ सैफ अली खान, हु टेक्स ऑन द चैलेंजिंग रोल ऑफ अ ब्लाइंड मैन एक्चुअली इन दिस वन. ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें बमन ईरानी भी रहेंगी और साथ में संयमी खैर, अ गुड एंड अ वंडरफुल स्टार कास्ट अलॉन्ग विद श्रिया पिगलांवकर एंड शारिब हाशमी. ये सारे एक बहुत ही बढ़िया एक ऑन्सम्बल कास्ट, they all in pivotal roles, but yes, the main roles of a villain and a hero are Akshay Kumar and Saif Ali Khan. और इसी का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसीलिए नए और ताज़ा इस सेगमेंट में, यानी कि ताज़ा और न्यू इस सेगमेंट को मैं जो करती हूँ, इसमें ये गाना इंक्लूड करना चाहूँगी, हैवान फिल्म का दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ एन ओड टू ऑल द फादर्स.

Shan after a long time in the sense ki kisi ek prominent big budget film mein kafi dino ke baad ye ga rahe hain and I wish him all the luck because he has been quite vocal about the fact ki unhe zyada kaam nahi mil raha and he would love to sing kyunki unhe aisa lagta hai ki unhone bahut abhi in dino jab kaam nahi tha zyada bahut practice ki hai aur unko lagta hai ki wo pehle se behtar gaate hain to listen ladies and gentlemen we have to really support this song from the film Haiwan jo ki September में रिलीज होने वाली है मैं बताऊं कब रिलीज होने वाली है आई होप आई एम क्विकली एबल टू फाइंड इट फॉर ऑल ऑफ यू एंड नाउ इट इज 11 सितंबर की ये अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म रिलीज होने वाली है और इसी बात पे एक और शान का गाना हो जाए शान से लगाने वाली हूँ शान का गाना लेकिन साथ में याद दिलाने वाली हूँ कि आप लोगों को गाने पसंद है ना तो आप लोगों के लिए यू नो बहुत सारा ये लाइनअप जो रहता है ऑल थ्रू द डे ऑल थ्रू नाइट दिस इज फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM जहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ कि माई टाइम एक्विटी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको CPA सुधीर पाए और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प कर सकती है इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज को हेल्प कर सकती है बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. तो अगर आपका long term wealth कुछ planning चाहिए आपको retirement planning चाहिए या तो अपने investment को grow करने के लिए planning चाहिए तो my time equity they offer personalized solutions designed around your personal goals. mytimeequity.com is that website and the number to call is 469-702-1272.

0: Up next is आयुषी with afternoon अड्डा. Enjoy her show and आज के लिए मुझे इजाजत दे, मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे. This is me too signing off for the day.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: Now sir, or price?
9: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
11: Main hero in hoon.
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
13: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
15: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
14: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
15: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
14: इंडिया तक.
15: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
12: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
12: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: ये तारा वो तारा हर तारा.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशन, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
21: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

नमस्ते एंड वेलकम डैलस, दिस इज योर होस्ट आयुषी और आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 एफएम। सबसे पहले मीठू को धन्यवाद उनकी मीठी मीठी आवाज़ और उनके प्यारे प्यारे गानों के लिए जिससे वो हमें एंटरटेन कर रही थी। आप शो को आगे बढ़ाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपका दिन ना किसी एक गाने से शुरू होता है, आप उठते ही हैं उस गाने को गुनगुनाते हुए, पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचते हुए। तो ऐसा ही एक गाने के साथ आज मैं सवेरे उठी हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना वो मोमेंट आपके साथ शेयर करें, वो गाना आपके साथ शेयर करें।

0: एक लड़की थी दीवानी सी।
1: It was this beautiful song जो आज मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी मेरे साथ इसी गाने को गुनगुनाएं, और साथ ही क्या करें, आज 90s के सफर पे चलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ 90s के गाने बजाने चाहिए, बिकॉज इन गानों की ना बात ही अलग है। मतलब कब मैं घूम फिर के जब भी शोज़ करती हूँ तो हफ्ते में एक बार 90s के उन खूबसूरत गानों की तरफ चली ही जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। एंड मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स वेट करते हैं कि कब 90s के गानों का सिलसिला शुरू हो, ताकि वो भी कॉल करें और फरमाइश दें। तो भाई देखिए, आज मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है बिल्कुल शो शुरू करते ही, तो आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई गाना है या फिर ऐसा कोई पहला गाना जो बिल्कुल 90s का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है, तो कॉल करिए और बताइए हमको। स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555। ये रहा अगला गाना आप सबके लिए।

involved in a car or truck accident or a slip or fall incident. Attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful and you need an attorney that will make sure you're compensated. Aur aap tab tak pay nahi karte hain jab tak aap case jeet nahi jaate hain. To free consultation ke liye aaj hi call kariye Omar Khwaja ko. Unka number hai 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और 90s के गानों का सिलसिला चल रहा है. अगर आपको सुनना है तो जल्दी से कॉल कर दीजिए, मतलब अपनी फरमाइश वाले गाने तो मैं सुनाते रहूंगी और बातें भी चलती रहेंगी. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशिया 104.9 FM पर.

0: द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. तो भैया आज ही जाइए पेज 3 ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट पेज 3 eatery.com. खाने का समय हो गया, ये सुन के हमको भूख लग गई है, लेकिन जल्दी से अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का. तो जल्दी से ब्रेक पे जाइए, वापस आइए. आपकी होस्ट आपका यहाँ इंतजार कर रही है कुछ 90s के सुरीले मीठे और प्यारे गानों के साथ. था ठीक है, पेज 3 ईटरी है हब 121 में और बहुत ही लाजवाब खाना है, गारंटी है मेरी. बहुत सारे गाने लाइन अप कर दिए हैं क्योंकि भैया आपके कॉल्स तो आना शुरू हो ही जाते हैं. कैन यू गेस दिस सॉन्ग? ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और फिर आपको सुनाएंगे ये प्यारा और सुरीला सा गाना 1942 अ लव स्टोरी से. बने रहिए और सुनते रहिए फन एशिया.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
4: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: इस साल तो कमाल डबल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
19: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
18: कैसे?
19: Page 3 eatery?
18: No, not another restaurant again.
19: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
18: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
20: Page 3 Eatery, eat, sip, gossip, repeat.
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
5: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।

लंच का टाइम हो गया है और जल्दी से आपको बता देते हैं कि अगर आप हब 121 के पास हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस पेज 3 ईटरी फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स. अगर आप अभी तक यहाँ नहीं गए हैं देन यू आर मिसिंग आउट ऑन रियली गुड फूड. येस दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट meets modern flair. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night or a foodie meetup, page 3 brings

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. Whether you are an individual, startup, or an established business, AG FinTechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success. AG FinTechs is your partner in building a strong financial future. You can call them on 469-942-9888. I repeat, it's 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपकी होस्ट आयुषी आज यहाँ पर आपसे कुछ गानों की फरमाइश ले रही है. जी हाँ, फरमाइश का सिलसिला चल रहा है. किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को एनिवर्सरी विश करना चाहते हैं, बस ऐसे ही याद करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा गाना प्ले कर देते हैं. और 90s के गानों की बात तो कुछ और ही है. तो आज हमारे शो पे 90s का सफ़र चल रहा है और आपके लिए अगला गाना तैयार है.

कभी हाँ कभी ना का था ये गाना, शाहरुख खान थे इसमें। और ये शाहरुख खान की उन फिल्मों में से है ना जो कि उस समय में बिल्कुल भी नहीं चली थी, मतलब ऑलमोस्ट फ्लॉप फिल्म थी। और लेकिन बाद में जो ये फिल्म है ना, लोगों को इतनी प्यारी लगी, इतनी समझ में आई, ठीक वैसे जैसे अंदाज अपना अपना आपके साथ हुआ था कि जब शुरू में फिल्म आई तो नहीं चली, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। ऐसे ही होता है, कोई कोई चीज़ें ना बाद में समझ में आती हैं हमें, इतने घनचक्कर हो जाते हैं हम लोग। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। वैसे तो ये वक्त मेरा नहीं है, इस वक्त पे जो हमारी आरजे हैं वो आती हैं, पर आज वो नहीं है तो उनके जगह पे हम हैं और हम सुना रहे हैं आपको कुछ मज़ेदार बॉलीवुड के गाने 90s के दौर के। अगर आपको भी सुनने हैं अपने मन के गाने तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। नो हेल्थ इंश्योरेंस और इट्स पैशन हेल्थ आउट ऑफ योर नेटवर्क। स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट 85 अ मंथ। योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ वेन अप्रोप्रिएट, केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। यू कैन कॉल और टेक्स देम ऑन 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम। पैशन हेल्थ, आर पैशन, योर हेल्थ, आर कम्युनिटी। दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं। स्टूडियो का नंबर आपको पता है, स्टूडियो का नंबर है 9722355555। अगर अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे। फिलहाल ये गाना आपके लिए। कहाँ गया मेरा गाना?

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Dad, property papers kahan hai?
3: Laptop mein.
2: Investment?
3: Google Drive.
2: Insurance? Passwords?
3: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
2: Dad, wahi to problem hai, sirf aapko pata hai.
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice. Sadia.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एजा नेटवर्क।
11: Don't touch that dial. Keep listening.
12: 104.9 FM. Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और ये जो दोपहर अड्डा चल रहा है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी ही पसंद के गाने प्ले करने के लिए। जी हाँ, गानों की लिस्ट आ चुकी है। मुझे लग रहा है वक्त कम पड़ जाएगा, मेरे पास एक घंटा बचा है। मुझे नहीं लगता मैं इतने गाने एक घंटे में प्ले कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन जल्दी से आपको वक्त बर्बाद किए बिना अगले गाने की तरफ लेके चलते हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी सुनना शुरू किया उनको बता दूं, हम हैं आज 90s के दौर में, वो दौर जिसके गाने आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं।

So here was this beautiful song in the voice of Asha Bhosle ji and Amit Kumar. और इस गाने की फरमाइश आई थी पंकज और पल्लवी की तरफ से. उम्मीद करती हूँ गाना पसंद आया होगा और गाड़ी में आपका सफर भी और सुहाना हो गया होगा. चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं. इसकी भी फरमाइश आई है हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं उनकी तरफ से, तो वो आपको सुनाते हैं. उसके पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें. If you're planning a wedding, graduation, housewarming or any other celebration, तो stress करने के पहले, venue, decor, catering और छोटी छोटी इन details के पीछे भागने के पहले, आपको इस नाम का पता होना चाहिए. Venisa Events. They make planning simple by bringing everything together in one place. From venue selection and beautiful decor by Signature Events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by renowned Pasera Grand. तो भाई अब आप सिर्फ memories बनाने पे ध्यान दीजिए और ये लोग ध्यान रख लेंगे बाकी चीज़ों का कि आपका इवेंट कैसा होने वाला है. यू कैन कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770. वेनिसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो अगले गाने की तरफ जल्दी से चले. बहुत ही प्यारा सा गाना है, मेरा फेवरेट है और मेरी फेवरेट फिल्म से है. गाने की पहचान आपको कराते हैं और सोच रहे हैं इसी के साथ गिव अवे क्यों ना कर लें. आपको बस फ़ोन उठाना है, जल्दी से बताना है कि कौन सी फिल्म का गाना है ये. ठीक है, प्ले कर रही हूँ सॉन्ग आप लोगों के लिए. तो फोन उठाइए और जल्दी से इस गाने के बारे में बताइए कौन सी फिल्म का गाना है. बहुत ही सिंपल है, जो सबसे पहले कॉल करेगा वो आज का गिव अवे ले जाएगा.

तो इस गाने की फरमाइश की थी सोहेल और मरियम ने, और मैंने सवाल पूछ लिया था इसी में कि कौन सी फिल्म है ये और किसको नहीं पता इस फिल्म के बारे में, हम आपके हैं कौन का गाना है ये, और सही जवाब मुझे तुरंत ही मिल गया था, तो जोरदार तालियां सुरुमा जी के लिए। तो सुरुमा जी, यू कैन गो टू सान इडली रेस्टोरेंट एंड यू कैन विन अ डोसा ऑफ योर चॉइस, यू हैव वन अ डोसा ऑफ योर चॉइस विद अ फिल्टर कॉफी। सो सान इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसा, फ्लफी इडली, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, सुन के ही भूख लग गई हमको, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी भी मिलती है यहाँ पे। फैमिली डिनर्स हो या केटरिंग सर्विसेज हो, जैन फ्रेंडली ऑप्शन भी है इनके पास, तो आज ही जाइए सान इडली वेज रेस्टोरेंट, हाईवे 121 और कस्ट पे है ये। तो सुरुमा जी, आप यहाँ जाके अपना तोहफा कलेक्ट कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों कॉल आए, मतलब इस फिल्म के बारे में कौन नहीं जानता है, इस गाने के बारे में कौन नहीं जानता है ना, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जिसको हम कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 20-25 बार देख चुके हैं और हम आज भी देख सकते हैं। मतलब मेरे लिए फिल्म पुरानी ही नहीं होती, हमको पता नहीं क्या एक कनेक्शन है इस फिल्म के साथ, और कितनी बार भी लगा दो। इनफैक्ट अभी मुझे, अब तो मेरी बेटी साथ में है इसलिए हम कोई भी फिल्म नहीं देख पाते, उसको टुकड़ों में देखते हैं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करके, जब वो हमको देखने देती है, वरना हर समय उसका रोमा डियाना, नाच्या और माशा एंड द बेयर चलते रहता है। I know all toddler moms could relate with these names if you guys don't know about it. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, और हमारा giveaway खत्म नहीं हुआ है, I have one more giveaway from San Italy restaurant itself. तो अगला question आ रहा है, अगला गाना आ रहा है जो मैं play करने वाली हूँ, और आपको जल्दी से बताना है कौन सी फिल्म का गाना है ये। स्टूडियो का नंबर तो पता ही आप लोगों को, 972-235-5555 है, ये रहा अगला गाना, जल्दी से फोन उठाइए, कॉल करिए और जवाब दीजिए।

हेलो ब्रदर का गाना था ये, और हमें हमारे दूसरे विनर भी मिल गए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार मिस्टर तरुण के लिए। सो तरुण जी एंड सुरोमा जी, यू बोथ कैन गो टू सैनिडली एंड एंजॉय योर फ्री डोसा एंड फिल्टर कॉफी। चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं 90s में, कौन सा बजाऊं कौन सा छोड़ूं समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ गानों की फरमाइश आई हुई है तो पहले वो आपके लिए प्ले कर देते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: How may I help you?
7: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
6: Fear not, we have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
11: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
13: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
12: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: एक और लड्डू ले लो।
16: थोड़ी और बिरयानी।
15: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
17: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
18: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
20: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
21: Fun
16: एशिया 104.9 एफएम आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज हम सुन रहे हैं 90 के कुछ सुरीले गाने. बहुत सारी फरमाइश आई, बहुत मजा आ रहा है और ऐसे ही शो को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्यारे खूबसूरत 90 के दशक के गानों के साथ. इन गानों से हमारा एक अलग रिश्ता है. ये आवाज़ें जो हम इन गानों के थ्रू सुनते हैं, चाहे वो एसपी बालासुब्रमण्यम हो, चाहे वो अमित कुमार हो, चाहे वो सोनू निगम हो, ये गाने ना मतलब दिल को छू जाते हैं यार. इन गानों से एक अजीब सा रिश्ता है. कितने भी नए गाने आ जाएं, कितने भी नए गाने हमारी यू नो सॉन्ग लिस्ट में ऐड होते जाए, लेकिन इन गानों की जगह कोई नहीं ले सकता है. और ठीक उसी तरह इन फिल्मों की बात जो हम कर रहे हैं 90 के दशक की, इनकी भी जगह कोई नहीं ले सकता है. जैसे कि ये गाना जो कि हमारी कॉलर की फरमाइश पे है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में.

रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भेज दी है आपने? अगर नहीं भेजी है तो जल्दी से भेज दीजिए। आजकल तो इंडिया राखी भेजना बहुत आसान हो गया है, और अगर आपके भाई बहन यहीं आसपास यूएस में हैं तो भी अमेजोन पे राखी डिलीवरी हो रही है, तो भैया जल्दी से राखी भेज दीजिए। और जब रक्षाबंधन की बात करेंगे तो आपको ये कैसे नहीं बताएंगे कि रक्षाबंधन पे फनीशिया और चौकटाव कैसिनो रिजॉर्ट ड्यूरेंट लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए। दे जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर, सो यू हैव टू सेंड देम अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप। नंबर है 214-837-7147। आई रिपीट, इट्स 214-837-7147। एंड यू कुड विन एन एक्साइटिंग डेली प्राइज इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेज, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसिनो रिजॉर्ट ड्यूरेंट। फॉर कंप्लीट डिटेल्स चेक फनीशियाज सोशल मीडिया पेज चौकटाव कैसिनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड। तो भाई पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 21 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, 21 और ओल्डर, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई, प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। राखी आ रही है, राखी भेजिए और इस कॉन्टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लीजिए। तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेके चलते हैं आपको।

Diamonds aren't just forever, they are even more irresistible during the Tanishq Festival of Diamonds. Enjoy to 25% off on diamond value and making charges plus 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. Visit Tanishq in Frisco. So, कुछ ऐसा हुआ है अभी कि मेरी एक कॉलर ने कहा था मुझे कि उनको मैंने प्यार किया गाना सुनना है आते जाते. मैंने प्ले किया और उन्होंने कहा कि सलमान खान ना मेरे फेवरेट हैं. मैंने बोला हाँ हाँ मेरे भी फेवरेट हैं. और उनके रूम में आज भी सलमान खान की पोस्टर लगी हुई है, मतलब उनके घर पे बैक इन इंडिया जहाँ पे भी वो रहती हैं वहाँ पर अभी भी पोस्टर लगी हुई है. और उसके बाद ऐसा हुआ है ना कि सारे के सारे गानों की फरमाइश पता नहीं क्यों सलमान खान की आ गई है और सलमान खान के गाने एक पर एक चले हुए हैं. तो अगला गाना भी सलमान खान की ही एक फिल्म से है.

So here was this beautiful song from the movie Khamoshi. जी हाँ, खामोशी का ये गाना था आप लोगों के लिए. अगले गाने की फरमाइश आ गई है, लाइन अप करके रखा है मैंने. लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आपको वीकेंड पे क्या करना है. जी हाँ, बिल्कुल बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों को तैयार जो करना है फॉर अनफॉरगेटेबल लाइन ऑफ म्यूजिक का एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे September 26th at 8:30 PM at Trade Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, the iconic voice, Sonu Nigam, Revolution, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. I repeat, it's 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam live. Exclusive media partner, Phanasia Network. So, bhai, Saturday 26 सितंबर आप ब्लॉक कर लीजिए, टिकट ले लीजिए. सोनू निगम को लाइव सुनने का मौका मिलने वाला है आपको.

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: तो बस वक्त आ रहा है इस गाने के बाद आप लोगों से विदा लेने का। जी हाँ, आज का शो यहीं खत्म होता है। आपकी होस्ट आयुषी आज आपसे विदा ले रही है। अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बिहारी मॉम इन अमेरिका से मेरा हैंडल है, क्योंकि हम बिहार से हैं, हम पटना वाले हैं। जी हाँ, तो ज़रूर फॉलो करिए अगर वहाँ पर मेरी गपशप, बक बक और मेरी डेली व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं। तो साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आयुषी भूषण के नाम से मेरा हैंडल है। तो फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वैसे फनीशा पे शोज का सिलसिला चलता रहेगा, मेरे बाद किरण जी यहाँ पर होंगी एंड शी विल कंटिन्यू विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल बातें। फिलहाल आप लोगों से विदा ले रही हूँ आज के लिए। उम्मीद करती हूँ 90s के गानों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही कुछ अलग लेकर के आने की कोशिश करूंगी। कल भी मैं आपके साथ यहाँ पे 12:30 से 2:30 बजे तक रहने वाली हूँ। आज के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
8: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी।
5: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
18: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
21: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
20: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

ना सिर्फ ये कि विशाल भरद्वाज एक फिल्म मेकर हैं बल्कि म्यूजिक कंपोजर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, और ये जो गाना आप सुन रहे थे दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी, मूवी का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, ओमकारा मूवी से लिया गया है ये गाना, और इस गाने में आवाज़ें भी थी विशाल भरद्वाज ही की आवाज़ में आप ये गाना सुन रहे थे। अच्छा जी, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। विशाल के बारे में आपको कुछ बताऊं, 4th अगस्त का महीना चल रहा है, तो 4th अगस्त 1965 इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ। अपने काम के लिए, हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, उसकी कहानी थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगी। उन्होंने अपने करियर का आगाज किया एज अ म्यूजिक कंपोजर विद अ चिल्ड्रंस फिल्म अब है, और फिर बहुत ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिली गुलजार साहब की फिल्म माचिस से। उसके बाद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड उसी फिल्म के लिए मिला, आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट फॉर द मूवी माचिस। तो कहानियां तो इस तरह की बहुत सारी हैं गुलजार साहब, इनके विशाल भरद्वाज साहब के बारे में, लेकिन अब जब माचिस की बात हो रही है तो फिर मैं आपके लिए माचिस के ही गाने से इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। एक बहुत ही खूबसूरत गाना, ही सेज चप्पा चप्पा चरखा चले।

My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai. Ji haan, they help individuals as well as families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities or saath hi saath alternative investments. So agar aap long-term wealth planning kar rahe hain, retirement planning kar rahe hain, ya aap apni investments ko grow karna chahte hain, to My Time Equity aapke liye personalized solutions offer karte hain. Aap unko call kijiye, they are just a phone call away. Discuss your concerns and your plan with them, your ideas with them, and they will design a plan for you. That is mytimeequity.com. Once again, the website is mytimeequity.com. Ya phir aap unhe call kijiye 469-702-1272 mein. तो जी विशाल भारद्वाज पे हमने आज स्पॉटलाइट डाली है. इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ म्यूजिक कंपोजर किया फिल्म अभय के साथ, जो कि एक बच्चों की फिल्म थी. उसके बाद इनको पहला अपना अवार्ड मिला माचिस फिल्म के लिए, जिसका म्यूजिक इन्होंने कंपोज किया. गुलजार साहब की फिल्म थी माचिस, जिसके लिए इन्हें मिला फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड. इसके बाद इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया कुछ बेहतरीन फिल्मों का, जैसे कि सत्या, गॉड मदर, एंड गॉड मदर के लिए तो इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन. और उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, यानी कि डायरेक्टर बने फिर ये फिल्म मकड़ी के साथ. 2002 में मकड़ी फिल्म आई थी, एंड देन एक और सीरीज ऑफ बेहतरीन फिल्में जो इन्होंने बनाई, जिनमें से एक फिल्म ओमकारा, जिसका गाना मैं आपके लिए प्ले कर चुकी हूं. दिस नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी कमीने. दिस इज रात के ढाई बजे.

अच्छा जी, म्यूजिक कंपोजर से तो इन्होंने करियर का आगाज किया, लेकिन फिर जब फिल्म डायरेक्टर बने तो इन्होंने अपना एक ऐसा साइड हमें दिखाया कि वी ऑल बिकेम अ फैन ऑफ हिज फिल्म्स. ही स्टार्टेड हिज फिल्म करियर विद द फिल्म मकड़ी, जिसमें ना सिर्फ ये डायरेक्टर थे, ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी एज वेल एंड ही वॉज द स्क्रीन राइटर. उसके बाद मकबूल फिल्म आई इनकी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, शेक्सपियर्स के ड्रामे पे बनी ये फिल्म जिसमें इरफान खान, तब्बू, पंकज कपूर हमें नजर आए और दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स मैकबेथ. उसके बाद 2005 में इन्होंने द ब्लू अम्ब्रेला मूवी डायरेक्ट की. ही वॉज द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द स्क्रीन राइटर और ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई कि इसे मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म. और फिर आई 2006 में ओमकारा. ओमकारा के ये डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे. ओमकारा ने एक, जैसे कहती है ना, बैग भर के अवार्ड जीते, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला इस फिल्म को, नॉमिनेशन मिली फिल्म फेयर अवार्ड की फॉर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग एज वेल एज बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर. तो एक गाना आपके लिए ओमकारा से प्ले करते हैं. दिस इज संग बाय हिज वाइफ रेखा भारद्वाज एंड दिस इज नमक.

एंड इफ योर चाइल्ड इज इन थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेड तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी. नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी कैन हेल्प योर चाइल्ड बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दे विल यूज फॉर अ लाइफ टाइम. क्रिएटेड बाई एक्सपीरियंस कोचेस सुनही साइमन सैंटियागो एंड ऑड्रा लैंगस्टन हु हैव मेंटर्ड डिबेट चैंपियंस एंड वैलेडिक्टोरियंस एज वेल एज आईवी लीग ग्रेजुएट्स. ये ऑनलाइन प्लान जो उन्होंने प्रोग्राम जो उन्होंने क्रिएट किया है इज डिजाइन टू हेल्प यंग माइंड्स ग्रो with into confident leaders. तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल ये सुन के आया है तो all you have to do is give them a call. They are just a phone call away. 214-724-2867. That is 214-724-2867. या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कीजिए. आपको बहुत सारी डिटेल्स वहां पे मिलेंगी. That is nextgenspeakersacademy.com. nextgenspeakersacademy.com. Now give your child the confidence that they need to lead tomorrow starting today with Next Gen Speakers Academy. Bollywood Spotlight mein humne spotlight dali hai Vishal Bharadwaj pe.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
2: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
1: Par yahan sari arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
2: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai. Especially jab Vanessa events ka saath ho.
1: Sach mein? Sab sambhalenge.
2: Are sab kuch. Wedding ho, housewarming, graduation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
0: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम.
7: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

बॉलीवुड स्पॉटलाइट में सुन रहे हैं आप विशाल भारद्वाज के खूबसूरत गाने, बिकॉज आज की स्पॉटलाइट डाली है हमने एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर पे, सिंगर भी, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना थोक के हिसाब से काम दिया, लेकिन जितना भी हमने उनका काम देखा उसको अप्रिशिएट किया. ही हैज दिस डिफरेंट सेंस ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स विच एज एन ऑडियंस आई थिंक हिट्स विद अस एंड वी लव हिज मूवीज एज वेल एज द म्यूजिक दैट ही हैज कंपोज्ड एंड संग एज वेल. ये जो आप गाना सुन रहे थे ये ओ रोमियो फिल्म से लिया गया है जो अभी अभी 2026 में रिलीज हुई. दिस इज हिज लास्ट, अभी तक का जो लेटेस्ट काम है विशाल भरद्वाज साहब का वो है ओ रोमियो 2026, विच इसमें ये डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और स्क्रीन राइटर भी थे. इसी तरह के कुछ बेहतरीन गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूं. अगला गाना आपके लिए प्ले करते हुए आपको बताएं जी कि अगर आप टेक्सस में हैं, बिजनेस ओनर हैं और आप ढूंढ रहे हैं स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, तो फिर जान लीजिए कि तारा कमर्शियल एनर्जी इज हेयर एंड द बेस्ट solution for you. They are proudly serving Texas businesses since 2002. Competitive rates hain ji, they are reliable, behtareen service aapko dete hain aur sabse important baat ki jo bhi aapki requirements hain unke ird gird ye aapko customized energy plans bana ke dete hain. So it is an absolute win-win situation for you. Give them a call. You have any questions, that is 844-428-2808. 844-428-2808 या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट taraenergy.com, which is TARA taraenergy.com. अच्छा, इस गाने के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाली हूँ, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज फॉर ऑल द हॉलीवुड म्यूजिक लवर्स. लेकिन ये न्यूज आपके साथ शेयर करना जरूरी है. लेट मी जस्ट कंफर्म द न्यूज, लुक एट इट, एंड आफ्टर दिस सॉन्ग प्लीज बी रेडी टू हेयर समथिंग very important.

जी हाँ, इस गाने पे जाते हुए आपसे बात कर रही थी कि बीच में थोड़ा सा पॉज लूंगी और आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है. एंड दैट अपडेट इज फाइनल फॉर ऑल ऑफ यू हु आर डॉली पार्टन फैंस. डॉली पार्टन्स म्यूजिक्स फैन, क्वीन ऑफ कंट्री म्यूजिक, हैज डाइड एट द एज ऑफ 80. सॉन्ग राइटर, सिंगर, एक्ट्रेस डॉली पार्टन, जिनकी ग्लिटरिंग कंट्री म्यूजिक स्टारडम वॉज मैच्ड बाय हर पॉप फेम एंड पॉपुलर ऑफकोर्स पैरेलल करियर्स इन फिल्म एंड टीवी एज वेल. शी हैज डाइड टुडे, दैट इज August 25th. शी वॉज 80 years old, विद हर फैमिली नॉट रिलीजिंग अ कॉज ऑफ डेथ येट, बट सेइंग दैट शी डाइड पीसफुली टुडे in Nashville. The announcement came on her official Instagram with a video from her nephew on behalf of the Parton family. Aapko bataye ji, per the family's official announcement, a rhinestone life that shone bright enough for the world to see. Dolly will forever stand as an inspiration, not only through her timeless music and prolific songwriting, but also her wit, warmth and kindness that made us all feel like family. तो जी, डॉली पार्टन्स लेगेसी इज वन ऑफ लव, कंपैशन एंड रेजिलियंस. ये मैसेज आया है उनकी फैमिली की तरफ से. एंड डॉलीज हेल्थ इश्यूज हैड बिकम हेडलाइंस इन द फॉल ऑफ 2025 व्हेन शी अनाउंस्ड दैट शी वुड नॉट बी एबल टू फॉलो थ्रू ऑन अ 6-show डिसेंबर रेजिडेंसी एट लॉस वेगस सीजर्स पैलेस दैट हैड बीन अनाउंस्ड एज अ लॉन्ग अवेटेड रिटर्न ऑफ हर ऑन द कॉन्सर्ट स्टेज. लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर पिछले साल से ये तबीयत खराब की सारी बात चल रही थी. एंड फाइनली दिस news has been broken, so just wanted to share it with you and as a tribute right now to her, as a fan, as you know, respect to her for all the work that she has done. Here is a tribute to her from me as well as Fun Asia Radio.

2002 से लेके 2026 तक अराउंड आप कह लीजिए 22 फिल्में डायरेक्ट की होंगी, या कुछ डायरेक्शंस, कुछ प्रोडक्शंस और कुछ स्क्रीन राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मकड़ी, गोइंग टू मकबूल, द ब्लू अम्ब्रेला, ओमकारा, ब्लड ब्रदर्स, नो स्मोकिंग, 10 कहानियां, बल्कि 10 कहानियां का तो सिर्फ स्क्रीन प्ले दिया था इन्होंने, साथ साथ कमीने. मैं आपको बताती हूँ आप जो उन्होंने डायरेक्ट की हैं, कमीने डायरेक्ट की, सात खून माफ, मातरू की बिजली का मांडोला, और फिर हैदर, फिर रंगून, पटाखा, मॉडर्न लव एंड देन फुर्सत, देन चार्ली चोपड़ा एंड खुफिया, और फिर अभी आखिरी मूवी जो उन्होंने डायरेक्ट की, दैट वाज ओ रोमियो. और इसी के साथ कुछ अलग अलग मूवियों के म्यूज़िक भी दिए, म्यूज़िक कंपोज़र भी रहे मूवियों में, और सारा ही मिक्स मैच करके मैं आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सारे गाने प्ले कर रही हूँ, विशाल भरद्वाज के फिल्मों के या फिर उनके कंपोज. अच्छा, ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ये गुलजार साहब की फिल्म थी, लेकिन गुलजार साहब और विशाल का जो जोड़ी है वो बड़ी ही कमाल का हमें म्यूज़िक दिया करती थी. And this is one of those, movie is Hututu and the music is Vishal Bharadwaj.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: जिंदगी एक रंगमंच है,
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
11: वी नीड टू टॉक।
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैकजैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स or older to game.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, FunAsia Radio.

विशाल भारद्वाज पे हमने डाली है स्पॉटलाइट और उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने या उनके कंपोज्ड किए हुए कुछ गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी, अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी एंड गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का, और उसी के साथ इतनी सारी निटिग्रिटीज होती हैं सिचुएशन की कि बहुत सारे टाइम पे तो हमें पता ही नहीं होता कि छोटी छोटी चीजों के साथ क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। ऐसी सिचुएशन में यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड हु कैन टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग फॉर यू व्हाइल यू focus on your recovering and your mental and physical well-being. And that attorney is attorney Omar Khwaja. Na sirf attorney Omar aur unki team aapko help karegi to fight the case, they will help you get the best compensation that you deserve. And the best part is ki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap case jeet nahi jate. So it is a win-win situation for you. If you or someone you know or care for is going through something like that, give attorney Omar Khwaja a call for free consultation. He's just a phone call away. 469-300-5046 is the number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorney Omar, OMAR, attorneyomar.com.

Alright, जी, और अब टाइम आ चुका है आपके लिए एक गिव अवे लाने का. द गिव अवे हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज. जी हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं अपना नेक्स्ट फेवरेट हैंगआउट स्पॉट, तो फिर मिराज लाउंज एक्सपीरियंस करना आपके लिए जरूरी है. एंजॉय प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, और साथ ही साथ होती हैं 3 मुख्तलिफ किस्म की नाइट्स सेलिब्रेट करती हैं. और भी बहुत कुछ होता है वहां पे, जैसे कि डीजे नाइट्स, लेडीज नाइट्स भी सेलिब्रेट होती है. एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, देन आई मस्ट टेल यू दे सेलिब्रेट college night as well, which is absolutely wonderful. Aur isi ke saath happy hour runs Monday through Thursday 11 AM से 6 PM. तो वो हैप्पी आवर तो मैं क्या बोलूँ, हैप्पी डे ही चलता रहता है आपके लिए. फीचरिंग हुकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 24.99, जबकि शॉट्स फॉर ओनली 4.99. तो जी, ये तो हुआ आपके लिए मिराज लाउंज में क्या क्या आपको मिलता है. दे आर लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. जरूर विजिट कीजिए मिराज लाउंज, चेक आउट देयर मेन्यू एंड सी व्हाट यू लाइक. एंड दिस इज योर चांस ऑफ विनिंग $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 एंड मोर. आपको मिराज लाउंज जाके जब आप खाना खाएंगे डाइन इन और $50 आपका बिल बना, तो आपको $20 ऑफ मिल जाएंगे $50 और मोर पे. तो जबरदस्त गिव अवे आपके लिए आया है. 2 विनर्स मैं सेलेक्ट करूंगी. हमने स्पॉटलाइट डाली है आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में विशाल भारद्वाज पे, और आपको मुझे बहुत ही सिंपल सा जवाब मतलब बात बतानी है, और वो ये कि विशाल भारद्वाज की डेट ऑफ बर्थ क्या है. बताइए मुझे विशाल भारद्वाज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जीत लीजिए मिराज लाउंज का ये $20 ऑफ द डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. 972-235-5555 is the number to the studio.

मिराज लाउंज की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया था. दो विनर्स मैंने सेलेक्ट करने हैं. $20 ऑफ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 एंड मोर. सवाल बहुत आसान था. विशाल भारद्वाज की बर्थडे आपको मुझे बतानी थी बिकॉज ही इज द वन हु वी आर सेलिब्रेटिंग एंड आज हमने स्पॉटलाइट उन्हीं पे डाली है. सबसे पहले तो आपको करेक्ट आंसर बता दें जी. करेक्ट आंसर है 4th August 1965. जी हाँ, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विशाल भारद्वाज. और आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. हिमांशु, मिहिर, शोभित, शिवानी, केतकी, राजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल्स आती हैं वो मैं एक मैथ के फॉर्मूले में डाल के हम नंबर्स निकालते हैं और आपकी लक ही आपकी विन का फैसला करती है. मैं कभी कोई विनर पिक नहीं करती. सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि मेरी मर्जी से कोई विनर नहीं मैं पिक करती. सो आपकी लक फैसला करती है. और आज जिसकी लक ने जोर मारा वो है जी हमारे थर्ड कॉलर और हमारी फिफ्थ कॉलर, यानी कि शोभित और केतकी. शोभित एंड केतकी, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने जीत लिया है ये मिराज लाउंज का $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. यू प्लीज गिव अस अबाउट 2 डेज. आपका नाम और नंबर हम रेस्टोरेंट में पहुंचाएंगे एंड देन यू विल हैव 7 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मिराज लाउंज जरूर विजिट कीजिए. दे आर लोकेटेड ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे. यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव द फूड एज वेल एज द वाइब्स ऑफ द रेस्टोरेंट. और आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया.

जी हाँ, और बस अराउंड 4 बजे तक मैं आपके लिए एक दो गाने और विशाल भरद्वाज साहब के प्ले करूंगी, और फिर हमारी जो आज स्पॉटलाइट है उसका एंगल थोड़ा सा बदलेंगे और किसी और पे अगले 1 घंटे के लिए स्पॉटलाइट डालने वाली हूँ. उससे पहले आपको बताऊं कि विशाल भरद्वाज ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन फॉर द मूवी गॉड मदर. ही देन वेंट ऑन टू विन 2 कंसेक्यूटिव अवार्ड्स. ब्लू अम्ब्रेला के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, और नेशनल अवार्ड फिर जीता उन्होंने स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर द मूवी ओमकार. इसी के साथ उन्होंने फिल्म फेयर नॉमिनेशंस पाई मूवी कमीने के लिए फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल, क्योंकि उस फिल्म का ना सिर्फ डायरेक्शन उन्होंने किया था बल्कि गाने भी इन्होंने खुद ही डायरेक्ट किए थे, बल्कि कंपोज किए थे. उसके साथ ही वन हिज सेकेंड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन फॉर हिज वेंचर इश्किया. इश्किया फिल्म एक बड़ी ही जबरदस्त फिल्म थी जी, और बड़े ही कमाल के इसके गाने थे. इसी गाने के साथ हम आगे बढ़ेंगे. एट 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड ही वन द 3rd बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द मूवी हैदर. अब ये तमाम वो फिल्में हैं जो इन्होंने खुद डायरेक्ट की हैं, और जब भी इन्होंने, मेरा ख्याल है स्पेशली जो हैदर और ये सारी फिल्मों का टाइम था, जब ये कुछ डायरेक्ट करते थे तो एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट हमारे सामने आता था. 2016 में विशाल भरद्वाज वॉज गिवन द यश भारती अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. इसी के साथ उन्होंने अपना 2nd नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फिल्म तलवार के लिए फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले फॉर राइटिंग तलवार. तलवार मूवी आपको याद होगी, एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी. इरफान खान उसमें मौजूद थे. एक बड़ी ही इंट्रीगिंग कहानी थी. जब ये स्टोरी ट्रू ब्रेक हुई थी तो एवरीबडी वॉज वंडरिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. और इस मूवी में वैसे मैं कंफ्यूज ही रही ये मूवी देख के भी, बट दैट वॉज द मूवी एंड इट वन हिम अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. शेक्सपियर्स के ऊपर बेस्ड मूवी मकबूल ओमकारा और हैदर. विशाल भरद्वाज को शेक्सपियर्स के अफसानों से मैं कहती हूँ मेरे ख्याल बेइंतहा मोहब्बत है, क्योंकि वो कई सारी ये 3 मूवियाँ उन्हीं के अफसानों पर बेस करके बना चुके हैं. ये है विशाल भरद्वाज की कहानी, और इस मूवी के साथ हम इस प्रोग्राम का कर रहे हैं, इस सेगमेंट का कर रही हूं इख्तिताम. 4 बजे के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपके लिए लेकर आऊंगी एक नया स्टार, और वो कहते हैं ना क्या, एंगल थोड़ा बदलेंगे और स्पॉटलाइट डालेंगे एक खूबसूरत हसीना पे. बट बिफोर दैट दिस इज मूवी इश्किया, और गाना है जी राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, दिल तो बच्चा है.

Jacqueline Fernandez, a Sri Lankan actress based in India. She has worked in Indian films, khasar pe Hindi films mein, aur saath hi saath reality shows mein aayi hain. Music videos bahut sari aati rehti hain, jaise ki Nora Fatehi pe bahut sari music videos aati hain, waise hi Jacqueline hame aksar music videos mein nazar aati rehti hain. To ji, kuch khubsurat filmein unke naam ke saath mansoob hain, although she has never been a big star, but some very beautiful music has been picturized on her, aur wahi म्यूजिक आपके लिए वो कहते हैं ना चुन के लाई हूं वो सारे खूबसूरत गाने या मजे मजे के गाने जो कि हम एंजॉय करते हैं. थोड़ा सा विशाल भरद्वाज साहब का जो म्यूजिक हम प्ले कर रहे थे दैट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर और जैकलीन पे जो म्यूजिक पिक्चराइज होता है वो बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर होता है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि रक्षाबंधन आ रहा है जी, और इस रक्षाबंधन फानेजे रेडियो और चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आए हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस और ग्रैंड प्राइज. डेली प्राइजेस में इंक्लूडेड है जी डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे, जबकि जो ग्रैंड प्राइज होगा दैट इज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड जो कि होगा चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट में. तो आपको ये जीतने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक मिनट का वॉइस नोट बनाना है और उसमें क्या बात करनी है आपको बताना है द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी ऑफ यू एंड योर सिबलिंग, और वो वॉइस नोट आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे. द नंबर इज 214-837-7147. नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 214-837-7147. इस पे व्हाट्सएप कीजिए अपनी ब्यूटीफुल मेमोरी विद योर सिबलिंग और ऑटोमेटिकली आप हिस्सा बन जाएंगे इन डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज का. और कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आपको हमारे फानेजिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे मिल जाएंगी. तो इसका मतलब अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो नाउ इज द टाइम टू गो एंड स्टार्ट फॉलोइंग अस. बहुत कुछ हमारा जो रेडियो में होता रहता है वो सब आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे, स्पेशली फेसबुक पे, एवरीवेयर वी आर वेरी एक्टिव. चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट इज where you make unforgettable memories. You have to be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply. And while you are there, please play responsibly.

पटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट बड़ो

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

taken from the movie Kick 2014 में आई थी, जिसमें जैकलीन ने शाइना मेहरा का रोल प्ले किया था. अच्छा जी, अलादीन से अपने करियर का आगाज किया. 2009 में ये मूवी आई थी जिसमें हम जिसे डायरेक्ट किया था सुजॉय घोष ने, और हमें इसमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन साहब, संजय दत्त, रितेश देशमुख एज वेल एज जैकलीन. और फिर यू नो हाउसफुल, जाने कहाँ से आई है, और फिर एक बड़ी फिल्म आई विच वॉज मर्डर 2, जिसमें इमरान हाशमी के साथ हमें नजर आई. देन शी वॉज सीन इन हाउसफुल 2, रेस 2, जिसका गाना आप सुन रहे थे, रमैया वस्तावैया में उन्होंने एक स्पेशल अपेयरेंस दिया, और फिर आई मूवी किक. एक्चुअली ये जो गाना था ये रेस 2 नहीं बल्कि किक का था. रेस का भी आपके लिए थोड़ी देर में गाना लगाती हूँ. देन वी सॉ हर इन रॉय, जो चिट्टियां कलाइयां आपके लिए मैंने गाना प्ले किया था. देन ब्रदर्स, हाउसफुल 3, डिशुम, द फ्लाइंग जट एंड मेनी मोर मूवीज जिसके साथ वो एसोसिएटेड रही. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. माधुरी दीक्षित के इस गाने को किया रीमिक्स बनाने वालों ने, एंड दिस वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी बागी 2 के लिए 1, 2, 3 का रीमिक्स बना, और उसमें स्पेशल अपेयरेंस थी जैकलीन ने.

0: और आप तमाम लोगों के लिए एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आई हूँ, और वो है एक इवेंट जो आपके लिए होने वाला है 11 सितंबर को. जी हाँ, टू ऑल ऑफ यू, गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस, जिस आवाज ने हमें दिया प्योर 90s का नॉस्टैल्जिया आपको यहाँ मिलने वाला है. ये वो आवाज है जिसने हमें बॉलीवुड के कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने दिए, आइकॉनिक लव सॉन्ग्स दिए, और ये आवाज आ रही है आपके लिए लाइव इन प्लेनो. कुमार शानू आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस कीजिए वही अनफॉरगेटेबल 90s का जादू. और सितंबर 11th को ये इवेंट हो रहा है जी, एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. अच्छा, इवेंट तो ये आपको पता ही है कि कॉन्सर्ट्स होते हैं तो जो है सभी लोग साथ साथ गाते हैं. अगर आपको वो 90s का दौर और 90s का म्यूजिक और 90s की म्यूजिक का नॉस्टैल्जिया है तो फिर आइए इस कॉन्सर्ट में ज़रूर टिकट खरीदिए. अपना सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं तो, लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि फ्री पार्किंग है एंड एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. व्हाइल यू बाय द टिकट, डू लुक इनटू दैट. आप अपने टिकट्स को eventbrite.com से खरीद सकते हैं. कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 214-869-2668 इज द नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. और ये मेरे लिए स्पेशल बात, इस एड को पढ़ते या इस बात को आपको बताते हुए मुझे क्यों खुशी होती है, क्योंकि 90s का बॉलीवुड आपके लिए मैं लेकर आती हूँ एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सेप्ट द फर्स्ट थर्सडे जिसमें हम फूड जंक्शन करते हैं. तो 90s के बॉलीवुड में इस हफ्ते यानी कि इस थर्सडे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्पेशल कुमार शानू स्पेशल. तो सारे खूबसूरत 90 की दिहाई के जो कुमार शानू के गाने हैं वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. 90s, वो 90s का बॉलीवुड ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण हैपनिंग ऑन थर्सडे, यानी कि अभी थर्सडे 2:30 से 5 बजे तक सुनना मत भूलिए और टिकट लेना मत भूलिएगा. 11 सितंबर को रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो में ये इवेंट आपके लिए हो रहा है. eventbrite.com पे अभी लॉग ऑन कीजिए.
1: Take it away!

0: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी?
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
6: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
7: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
7: इंडिया तक।
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: फ्लोर्स क्लीन
13: चेक,
12: विंडोज क्लीन
13: चेक,
12: किचन क्लीन
13: चेक,
12: एयर डक्ट्स क्लीन।
13: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
14: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
6: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.
7: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

0: We have another 23 minutes right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran, and it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. Hamare saath maujood hain URA Debt Relief ke Aman, Mr. Aman, jo hame batayenge ki URA Debt Relief aapko kaise help kar sakta hai in making the right choices where your debts are concerned. Let's welcome him on the airwaves of Fanasia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फनेशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. ये महीना तो बाय बाय कहने लगा है और ये इस महीने का आखिरी मंगलवार होगा, लेकिन अगले मंगलवार आपको पहली तारीख को जब आप मिलेंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस महीने वो गलती मत कीजिए. वो गलती जो आपने इस महीने, पिछले महीने या पिछले एक साल से करते आ रहे हैं उससे भी पीछे, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरकर. जी हाँ, आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड की हर महीने किसी की $75, किसी की $25, किसी की $50 मिनिमम पेमेंट आती है और आप इसी सोच में या गलतफहमी में या उम्मीद में पे कर देते हैं कि चलो अगले महीने देखेंगे, ये उतार ही दूंगा इस बार तो. लेकिन वो दूसरे खर्चे आ जाते हैं जिसके कारण वो उतर नहीं पाता. अगर आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं उतर रहा है तो जस्ट सिंपली डायल URA. URA आपके इन क्रेडिट कार्ड्स की आधे से ज्यादा कर्जे को माफ करवा देगा. जी हाँ, आधे से ज्यादा कर्जा वाइप्ड ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा. जो बाकी आधा बचेगा उसकी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स बन जाएंगी. तो अगर आप आधा कर्जा माफ करवाना चाहते हैं जो आपने खर्चा है, एंजॉय किया है, तो फिर URA को कॉल कीजिए. कार्ड कोई भी हो, बिजनेस, पर्सनल, स्टोर, कोई भी क्रेडिट कार्ड. और इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी रिपोजेस हो गई है, ट्रक या ट्रेलर या आपकी पर्सनल कार या टोटल हो गई है, उसको भी आप नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. क्योंकि कई बार टोटल होने के बाद इंश्योरेंस पूरा क्लेम नहीं करती, तो बाकी जो अमाउंट है वो आपको पे करनी है, उसको भी नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. जस्ट सिंपली डायल URA नंबर 1-888-888-9914. 6 बार तो 8 ही हैं, 9914 याद रखिए, नडिन में 14. 1-888-888-9914. और अगर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, कॉल मी डायरेक्टली ऑन माई सेल फोन, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए. मेरा डायरेक्ट नंबर है 9167763555. 9167763555. अगेन 9167763555. हमारी वेबसाइट है www.ura.org. नंबर ना लिख पाए हूं तो फन एशिया रेडियो से भी नंबर ले सकते हैं. थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू.

And it is almost time to say my byes to you. But before that, मैं आपको देने लगी हूँ traffic की update कि इस वक्त क्या कुछ roads पे नजर आ रहा है. सबसे पहले तो जी एक incident नजर आ रहा. Actually, there is a disabled vehicle at 114, that is 114 at Alliance Gateway westbound. इस disabled की vehicle की वजह से 2 out of 4 lanes are blocked. The severity of the incident is reported extremely high. Lots of backup is piling up at 114 at this spot, which is Alliance Gateway. Isi ke saath, there is another stall that has been reported at SH170 at SH114 westbound. Just ki wajah se, once again, 2 out of 4 lanes are blocked. The severity of this incident is reported extremely high as well. So please dhyan rakhi agar aap in do spots mein se kahin pahunchne wale hain. Luckily, there is no collision, but there is a stall and a disabled vehicle. Then there is another disabled vehicle that has been reported at IH30 towards 161 Bush Turnpike westbound. Jiski wajah se, once again, 2 lanes are blocked out of the 7-8 lanes. So the severity of this incident is not reported extremely high, but still, जब ट्रैफिक का ये आलम होता है और रश आवर होता है तो आप जानते हैं कि एक छोटा सा स्टॉल भी कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. देयर इज अ कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड वाज रिपोर्टेड अबाउट 2 आवर्स अगो. अभी भी वहां पे थोड़ा सा जो है ट्रैफिक आपको शायद मिल सकता है बिकॉज पहले काफी सारी लेन्स ब्लॉक थी, अब खाली एक लेन पे आ चुका है ये इंसिडेंट. दिस इज एट IH20 टूवर्ड्स सेंट ऑगस्टीन रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से अब ओनली एन एग्जिट लेन इज ब्लॉक्ड, ऑल्दो द सेवेरिटी इज स्टिल रिपोर्टेड.

काफी सारी लेन्स ब्लॉक थी, अब खाली एक लेन पे आ चुका है ये इंसिडेंट. दिस इज एट IH-20 टूवर्ड सेंट ऑगस्टीन रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से अब ओनली एन एग्जिट लेन इज ब्लॉक्ड, ऑल्दो द सेवेरिटी इज स्टिल रिपोर्टेड हाई बिकॉज इट इज ऑफकोर्स रश आवर. बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्न ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. आई विल सी यू टुमारो. टुमारो इज another flavor. Afternoon drive time with Sunehri Kiran mein har roz aapke liye kuch naya aata hai. And tomorrow, which is Wednesday, we'll start with romantic melodies, go on to pop frequency, and of course the top 10 trending dramas according to the TRP charts lekar aaungi aapke liye 3:30 se 4 baje tak. Aur uske baad hoga trophy tracks and blockbuster beats, lots of music, lots of entertainment and information that is lined up for you always on your afternoon drive time with Sunehri Kiran, 2:30 p.m. till 5 p.m. You have a lovely rest of your day.

0: अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है।
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
4: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
5: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
6: लैपटॉप में।
5: इन्वेस्टमेंट,
6: गूगल ड्राइव,
5: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
1: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
1: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

जाएगी अब। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, यारो मैं हूँ पारो। इस वक्त नहीं आती हूँ लेकिन आ जाऊंगी, आ गई हूँ। आप लोगों के साथ रहूंगी शाम के 7 बजे तक, 5 से 7 का यह सफर रहेगा। बहुत बड़ी खबर है, अभी आप सुन भी रहे थे बीबीसी की अपडेट ऑन डॉली पार्टन। डॉली पार्टन अ वेरी फेमस रेवर्ड आइडलाइज्ड अमेजिंग सिंगर म्यूजिशियन एक्ट्रेस बिजनेस वूमेन। शी इज कंसिडर्ड अ चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी मानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने अपना पहला जो गाना है शी रोट एट द एज ऑफ 6 एंड शी हैज बीन परफॉर्मिंग रेगुलरली ऑन टीवी एट द एज ऑफ 10। 1946 में जन्म हुआ था और आज के दिन यानी कि 25th August 2026 व्हेन शी वाज 80 इयर्स ओल्ड ये नहीं रही। एंड देयर लॉट ऑफ हर सॉन्ग्स आर जस्ट बहुत ही बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री को। एंड यस, दिस इज आवर बॉलीवुड शो और इसमें हम बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, बट म्यूजिक की अगर बात करें तो बॉलीवुड भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है वर्ल्ड म्यूजिक, कंट्री म्यूजिक, जो वेस्टर्न म्यूजिक है उससे। सो यस, दे आर काइंड ऑफ कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली और बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं हु आर डॉली पार्टन फैंस। सो यस, इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ कंट्री। सो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड फीमेल कंट्री परफॉर्मर्स और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि 11 ग्रामी अवार्ड्स, 3 एमी अवार्ड्स एंड tons and tons of like jaise ki 6 golden globe awards aur itne sare hain that I think it's best to say that she was a legend. Aur chhota sa unka ek gana ke sath aagaaz karte hain, show ko shuru karte hain aur uske baad hum chalayenge bollywood ke hi gaane kyunki ye show hi bollywoodia show hai. Paro ka aap logo ke sath rahega jaise maine kaha. And if you have a song in mind, as you know I love to play the songs that you love to listen to, so 972355555 has studio ka number, अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए।

आपका क्या होगा जनाबे आली? अरे कुछ कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं है, फनीशा सुनते रहिए, लाइफ एंजॉय करिए, जो होगा वो अच्छा होगा। किस तरह तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बता देती हूँ। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इट इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स, यानी कि हमारे जैसे लोग चटपटा मसालेदार खाना पसंद है। दे आर सर्विंग सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज और सारी नॉर्थ इंडियन डिशेस फेवरेट्स जो कि मेरी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ इंडिया, यू नो, विद दैट होम स्टाइल पंच फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान, ऐसी प्लेट होगी दैट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन। स्टेप इन टुडे, आज चले जाइए, कभी भी जाइए, लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट। ये वादा है तंदूरी फ्लेम का आपके साथ। कहां पर है ये तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट? इज लोकेटेड इन गार्लैंड। छोटा सा एक ब्रेक होगा, उसके बाद पारो यहीं लौट कर आएगी आप लोगों से करने बातें, कुछ गिवअवेज, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, आज का दिन है क्या खास, करेंगे कुछ बातें यहीं पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो, पारो इन द हाउस।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
3: हे तुमने कभी इंश्योरेंस लिया कभी पॉलिसी समझ भी आया
4: नहीं आया
3: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
7: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
8: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
7: सच में सब संभालेंगे
8: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
9: अरे यार घर मिल गया
10: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
6: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
10: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
6: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him
11: तुझे देखा तो ये जाना सनम
12: 90s का रोमांस 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज DFW get ready to relive the magic of Kumar Shanu live unforgettable 90s September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano Gaiye jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane limited seats free parking aur meet and greet options available for tickets visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par presented by Focus Entertainment and Fortune Group

वेलकम बैक दोस्तों. यारो मैं हूँ पारो, रहूंगी आप लोगों के साथ जैसे कहा था 7 बजे तक. एंड लेट मी टेल यू समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. यस, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है. डजंट मैटर व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, लेकिन सपनों का घर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस आई फील. और आई थिंक मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो एज आई हैव बीन ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, यानी कि बचपन से लेकर अब तक माई ड्रीम होम हैज़ बीन चेंजिंग. लेकिन फिर भी एक इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई हैड दिस इन माई माइंड कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कर्विंग सीढ़ियाँ ऊपर जाने जो अपस्टेयर्स जाएं, थिंग्स लाइक दैट. वी यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट इन हाई राइज इन दिल्ली. तो ऑब्वियसली सपना कुछ अलग सा था जो जिस घर में मैं नहीं रहती थी. एंड होता है, ऐसा ही है, जो हमारे पास नहीं होता उसी का तो सपना होता है, क्योंकि जो है वो तो मतलब है ना, उसकी तो बात खत्म हो गई. सो अगर आपका ऐसा कोई सपना है, इट मे बी योर फर्स्ट होम, इट मे बी योर सेकेंड, थर्ड, एनी होम, बट इट इज योर ड्रीम होम, वेल देन द क्वेश्चन कम्स इज मॉर्गेज. मॉर्गेज कहाँ से लाएंगे, इंतजाम करेंगे, स्पेशली अगर घर का बजट थोड़ा ज्यादा है. तो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, बिकॉज योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. ये बहुत सालों का इनका एक्सपीरियंस है, 1998 से ये सर्व कर रहे हैं फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री. जी हाँ, बिल्कुल, टेक्सस डालस नहीं, अक्रॉस द कंट्री दे हैव बीन हेल्पिंग टू टर्न होम ओनरशिप एंड यू नो ऑफर पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. इन 50 स्टेट्स में लाइसेंस्ड है. देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस दैट इज टेलर्ड फॉर यू. चाहे, जैसे मैंने कहा, चाहे आप पहला घर खरीद रहे हैं या कोई और घर खरीद रहे हैं, या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप इस तरह से कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज रीच आउट टू देम 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. क्योंकि ड्रीम होम मॉर्गेज ऐसी जगह है जहां आपके सपनों का घर साकार होता है. स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे.

0: गोली
1: बोल बचन की वाणी
0: शाणी
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right and body pain from tow truck to headlight.

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: यू सी सर द होल कंट्री
1: यू सी सर अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं. यस, अमिताभ बच्चन के इस फन गाने के बाद लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग जिसके सवाल बहुत सारे हमारे लिसनर्स को होते हैं. और अच्छी बात यह है कि हमारे पास हैं एक्सपर्ट मिस्टर राहुल शाह. हेलो मिस्टर राहुल जी, कैसे हैं आप?
2: जी, बहुत बढ़िया, आप कैसे?
1: मैं अच्छी हूँ. और बताना चाहती हूँ दैट वी टॉकिंग अबाउट SFL वर्ल्ड वाइड.
2: यस, सो यू आर बेसिकली
1: यस. अब आई थिंक थोड़ा सा कुछ आवाज में प्रॉब्लम था, बट आई थिंक पीपल शुड बी एबल टू हियर राहुल जी नाउ. हेलो राहुल जी, फिर से कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया, आप कैसी?
1: परफेक्ट. यस, मैं अच्छी हूँ. और जैसे हमारे लिसनर्स को बोल रही थी कि SFL वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हमारे लिसनर्स को. SFL वर्ल्ड वाइड हैज बीन अ ट्रस्टेड एंड लीडिंग इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल शिपिंग एंड रिलोकेशंस सिंस 2005. ये आपकी मदद करते हैं टू फाइंड द चीपेस्ट वर्ल्ड वाइड शिपिंग रेट्स फ्रॉम मेजर कैरियर्स सच एज FedEx, DHL, UPS एंड और विद देयर इंस्टेंट ऑनलाइन रेट कैलकुलेटर. तो राहुल जी, बताइए थोड़ा सा SFL वर्ल्ड वाइड के बारे में हमारे लिसनर्स को.
3: SFL वर्ल्ड वाइड इज अ लॉजिस्टिकल कंपनी, ऑलराइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स SFL वर्ल्ड वाइड डज. सो फॉर यूजर्स लाइक फॉर नॉट फॉर बिजनेस ओनर्स, दैट्स सेपरेट. आई विल कीप दैट इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू. सो इफ यू आर प्लानिंग टू लाइक यू नो इफ यू आर प्लानिंग टू शिप समथिंग maybe from Dallas to some other city, or maybe from other city to Dallas, or you know anywhere internationally or locally, or maybe from Mumbai se aap kahin aur bhejna cha rahe hain, aap Europe mein kahin bhejna cha rahe hain, to wo cheez mein SFL worldwide aapki kafi help kar sakta hai. So anything that you want to ship, if it's a small container or if it's small envelope, aap rakhi bhi bhej rahe hain aapka, to wo cheez mein bhi jo competitors offer kar rahe hain, to usse 50% less price mein SFL worldwide aapka shipping mein help karta hai. And we also do relocation. To agar aap kahin move kar rahe hain, like you got a new job some other city, or maybe you're getting married and you're moving to another state, another city, in Dallas, in Seattle, anywhere internationally and you know locally, तो वो चीज़ में SFL आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है. वी हैव ऑपरेटर्स ऑन ग्राउंड जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे चीज़ों को यू नो अनपैक करने में, उसको प्रॉपरली डिसेंबल करके प्रॉपरली कंटेनर्स में रखने के लिए, मेकिंग श्योर नथिंग ब्रेक्स अपार्ट. और इवन इफ इट्स अ स्मॉल लोड, लाइक आपके पास दो बॉक्सेस भी है, यू डोंट हैव टू पे फॉर द एंटायर कंटेनर. वी हैव ऑपरेटर्स हु हैव एम्प्टी स्पेसेस जो आपके ऑन रूट रहेंगे, वो सारा सामान को प्रॉपरली पैक करके ट्रक्स में रख के आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे. एंड यू नो देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, वन मोर प्रॉब्लम विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव, कि ठीक है आपने सामान मेरा मूव कर लिया, नाउ वॉट अबाउट माई कार? आई हैव टू मोटरबाइक्स, आई हैव यू नो वन एक्सपेंसिव कार विच ऑल्सो आई वॉन्ट शिप वेयर आई एम गोइंग, राइट? तो वो चीज़ में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. SFL विल हेल्प यू विद दैट एज वेल. वी ऑल्सो डू ऑटो यू नो ऑटो रिलोकेशन. आप जहाँ जा रहे हैं आपका ऑटो भी आपके साथ वहाँ जाएगा. एंड फॉर बिजनेस ओनर्स यू नो SFL कैन हेल्प यू विद यू नो गेटिंग योर गुड्स इंटरनेशनली और लोकली. ये चीज़ में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क विच गोज इन यू नो बिजनेस गुड्स. तो वो सब चीज़ों की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. SFL विल हैंडल ऑल द पेपर वर्क फॉर यू, यू नो ऑल द शिप पेपर वर्क, एवरीथिंग दैट यू हैव, SFL इज हेयर फॉर यू. तो आपको वो चीज़ में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और इफ़ यू वॉन्ट कैलकुलेट रेट्स फॉर ऑल दिस, यू कैन विजिट SFLWorldwide.com और यू कैन गिव अस अ कॉल एट 800-691-2335. इट्स गोना बी 800-691-2335.
1: That's amazing. मतलब कि अगर छोटी सी राखी हो, कोई तोहफा हो, या फिर बड़ी कार हो, everything in the world, not just in the US. That's really very very beneficial to our listeners. बहुत सारे हमारे listeners जो हैं वो business है उनका, so this is going to be extremely useful कि they can do instant rate calculator. तो मतलब आपके सामने है पूरा rates and all that, and you can make that decision right away. Thank you so much, Rahul जी.
3: Thank you.
1: So yes, listeners, if you have any questions, agar kuch information miss ho gayi hai, if you want to get any information about SFL World, you can do that and you can call us 972-3555. Ek gana chalana chahti hu jiski request aayi thi aur Safi ne kari thi request. So Safi, ye aapke liye. Thodi der pehle hum mortgage aur dream home ki baat kar rahe the, to well suna hai maine ki Chandigarh mein ghar khareedna kafi mushkil hai. Waise ye gana aisa kuch kehta hai.

0: जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ मेरा मन करता है ये चंडीगढ़ में घर क्यों नहीं है मेरे पास. वैसे तो मैं चंडीगढ़ एक ही बार गई हूँ, बस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो चंडीगढ़ हमारे आसपास ही है, बाजू में हमारे. एंड यस, विद ऑल दी इन्फॉर्मेशन दैट फनीशा इज प्रोवाइडिंग यू, चाहे वो ड्रीम होम मॉर्गेज की थोड़ी देर पहले बात करी थी, अभी SFL वर्ल्ड की करी थी, और बहुत सारी हमारे जो बहुत अच्छे वेंडर्स और क्लाइंट्स हैं जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं. सो यस, ऐसा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपका सपना है वो साकार हो सकता है विद फनीशिया. जैसे कि अगली चीज मैं बताने जा रही हूं आपको अबाउट श्री कृष्णा ज्वेलर्स. श्री कृष्णा ज्वेलर्स स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, राखी वगैरह का टाइम है, बहुत सारे लोग गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, और वरलक्ष्मी व्रतम बहुत सारे लोग इस टाइम पे करते हैं. श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज सेलिब्रेटिंग श्रवण मासम एंड 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डैलस विद 10 स्पेक्टेकुलर ऑफर्स फ्रॉम फ्री सिल्वर एंड गोल्ड गिफ्ट्स टू डायमंड एंड सॉलिड एज ज्वेलरी प्लस एक्साइटिंग सेविंग्स ऑन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. देयर इज समथिंग स्पेशल वेटिंग फॉर यू. सेलिब्रेशन इज नाउ थ्रू सेप्टेंबर 17th एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स इन फ्रिस्को. आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, उनका एड्रेस, उनका नंबर और सब बताऊंगी मैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. यहीं पर लौट कराएंगे फनीशा रेडियो.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
6: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
7: Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
9: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
10: Kahan? Food is on in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
11: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
13: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
14: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
15: We need to talk.
14: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
14: Oh no.
8: It's the distance.
14: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
15: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. Sab एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
0: वेलकम बैक दोस्तों. यारो मैं हूं पारो. श्री कृष्णा ज्वेलर्स जो हैं उनका नंबर बता देती हूं और एड्रेस बता देती हूं. वैसे तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि बड़ी प्रीमियम परफेक्ट लोकेशन है. यू कैन विजिट देम एट 13145 मेन स्ट्रीट स्वीट 220 है ये फ्रिस्को में. और यू कैन कॉल देयर नंबर विच इज 4302311111. दे आर सेलिब्रेटिंग 10 स्पार्कलिंग ईयर्स इन डालस. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल 11वां साल है ये इन डालस. सो यस, आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड 10 ईयर्स इन डालस. एंड एक्चुअली उस 10 सालों में से 6 साल तो आप लोगों के साथ फनीशिया पर बीते हैं. एंड विद दैट आई डू वांट टू से दिस इज अ वेरी फेस्टिव सीजन. राखी है इस फ्राइडे को. लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेट दैट. इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल इंडिया में, स्पेशली इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिल्ली में जहां से मैं हूं, नॉर्थन बेल्ट में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है राखी. हमारे यहां तो इस वक्त अगर दिल्ली आप जाएं तो मतलब इतनी ज्यादा दुकानें भरी होंगी राखियों से कि अगर आप दुकान के आसपास जाएंगे तो कुछ आपके ऊपर ही गिर जाएंगी. इतनी ज्यादा लटकरी होती है. एंड इट्स सच अमेजिंग कलरफुल राखीज एंड ऑल द गिफ्ट बैग्स एंड ऑल द गिफ्ट हैम्पर्स जो भाइयों भाई बहनों को देते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत लोग खाली. ये वैसे तो भाई बहन का फेस्टिवल है ट्रेडिशनली, लेकिन इट इज सेलिब्रेटेड रियली एज फ्रेंड्स हु आर सिस्टर्स ब्रदर्स और कोई भी आपके क्लोज रिलेशन है. क्योंकि जो राखी का बंधन है ये बहुत प्यार का बहुत स्पेशल बंधन है. एंड दैट इज वॉट इज सेलिब्रेटेड. सो यस, आई वांट टू विश आप लोगों को वेरी हैप्पी राखी जो इस हफ्ते में आने वाली है.

What a beautiful song. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. एजी फिनटेक्स के बारे में कौन नहीं जानता, बिकॉज दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूएस. जी हाँ, चाहे आप एक इंडिविजुअल आपके हो, या फिर आप स्टार्टअप हो, या फिर आपका एस्टैब्लिश बिजनेस हो, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशंस. आपकी नीड्स के हिसाब से वो टेलर करके आपको सोल्यूशंस देंगे, चाहे वो बुक कीपिंग हो, पेरोल अकाउंटिंग, या फिर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. मतलब इसमें से related इससे ज्यादा कोई भी इस पूरा जो आपकी business के लिए जरूरत है, they will take care of that and they will provide custom solutions. They help keep your finances organized, compliant and future ready. ये trusted है, efficient है and they are committed to your success. ये आपके partner हैं AG Fintechs, जो आपकी help करेंगे in building a stronger financial future for ये. आप इनका नंबर कॉल कर सकते हैं, विच इज 4699429888, या फिर विजिट कर सकते हैं agfintechs.com टुडे. घड़ी में हुए हैं 5:52, और कैसे वक्त निकल रहा है, फिसल रहा है. मुझे ये शाम का, मैं जब भी शो करती हूँ, मारविन जी का शो है एंड आई एम कवरिंग टुडे, और जब भी मैं उनको कवर करती हूँ, ये शो करती हूँ 5 to 7, आई ऑलवेज फील कि ये एकदम, आई नो आई एम नॉट ड्राइविंग और आई एम नॉट इन द ट्रैफिक, बट एक्चुअली गेट द फीलिंग दैट मैं इस समय ड्राइव करी हूं और ट्रैफिक में हूं, और बहुत जल्दी जल्दी जल्दी ये टाइम जाता है, बीतता है. एंड दिस इज सच अ वंडरफुल टाइम, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर रिटर्निंग बैक एंड वाइंडिंग डाउन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस सफर में, ये जो आपका घर की तरफ का सफर है, काम से आप जो घर लौट रहे हैं, जैसे होता ना शाम को चिड़िया घर लौटती हैं चहचहाती हुई, ऐसे ही आप भी घर लौट रहे हैं, गर्म गर्म चाय के इंतजार आपकी कर रही होगी, आई एम श्योर चाय के साथ और भी कुछ परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे, और आपका टीवी तो डेफिनेटली इंतजार कर रहा होगा, फोन तो खैर आप ही के पास होगा. बट आई थिंक ये जो एक स्पेशल टाइम होता है व्हेन पीपल आर वाइंडिंग डाउन, आई रियली लव दिस टाइम. आई थिंक दिस इज वेरी स्पेशल एंड इट ऑल्सो इज अ टेस्टमेंट कि आपने पूरा दिन कितना काम किया है एंड कितना आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. आप जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका काम है, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं या आप किसी और फील्ड में हैं, बट यू मस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड. स्पेशली अगर आप थके हुए हैं इस वक्त, तो दैट इज अ टेस्टमेंट हाउ मच work you have done for others. So thank you for your work and I am really glad ki ye jo lautne wala safar hai isme hum aapke saath hain. And again I want to wish a very happy Rakhi to all those who celebrate. Jaise maine kaha, mere liye bahut hi special occasion hota hai aur bahut achhi memories hai meri Delhi ki with this particular festival. Aur jaise waise to bandhan kabhi bhi acha nahi hota, mujhe aisa lagta hai ki bandhan kabhi nahi hona chahiye, लेकिन अगर बंधन बहुत सच्चे दिल का और प्यार का हो तो हो सकता है.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: ओचो
6: होको
5: ओचो
6: होको
5: ओचो
6: इट्स होको
1: अरे बस भी करो यार
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है
1: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है एक बार वहाँ के लेजेंड चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
1: फ्लोर्स क्लीन
7: चेक
1: विंडोज क्लीन
7: चेक
1: किचन क्लीन
7: चेक
1: एयर डक्ट्स क्लीन
7: वेट एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है
8: बिल्कुल जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो और सोनू निगम साहब आ रहे हैं. बहुत हंगामा हो रहा है डालस में. आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल, आर यू गोइंग? यस आई एम गोइंग, यस यस यस यस. एंड अगर आप इस कैटेगरी में अभी तक नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि सोनू निगम रेवोल्यूशन का पार्ट हिस्सा बनने का मौका आपको मिल रहा है. सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. कब होने जा रहा है? ये है सैटरडे सितंबर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके फेवरेट गाने और वही आइकॉनिक आवाज. दिस इज ऑल गोइंग टू बी यस यस यस लाइव सोनू निगम. सोनू निगम साहब के जो शोज होते हैं बहुत मस्त होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं. और अगर आप पहले, कई बार होता है लोग बोलते हैं हम पहले देख चुके हैं, हम पहले जा चुके हैं सोनू निगम के कॉन्सर्ट में, वेल दिस इज गोना बी डिफरेंट. इज एवरी कॉन्सर्ट इज डिफरेंट. इट एक्चुअली फील्स लाइक यू आर सीइंग अ न्यू आर्टिस्ट बिकॉज ही ऑलवेज ब्रिंग्स सो मच न्यूनेस टू हिज कॉन्सर्ट्स. एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, वेल यू नीड टू गो एंड सी फॉर योर सेल्फ. टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एंड एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनीशिया नेटवर्क. सोनू निगम साहब की कौन सी बहुत सारे गाने हैं उनके. इनफैक्ट मुझे लगता है अगर उनके आप एक लाइफ या उनका जो करियर है, लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, खाली करियर एडल्ट करियर की बात कर रही हूँ. यंग करियर, यंग एज पे उनका करियर स्टार्ट हो गया था. अगर उनके करियर को मैप किया जाए और लैंडमार्क्स लगाए जाएं तो कुछ कुछ गाने ऐसे होंगे उनके जो हर एक पर्टिकुलर लैंडमार्क है उनके करियर का, कि ये गाने से ऐसा हुआ. बॉर्डर के गाने से उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला, मतलब लोगों ने उनकी आवाज़ किस गाने से पहचानी, किस गाने से पॉपुलर हुए, किस गाने से उनकी जबरदस्त रेंज लोगों को पता चली. सो एवरी देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स ऑफ हिज दैट हैव दिस माइलस्टोन्स व्हिच यू कैन स्केच आउट. वेरी इंटरेस्टिंग करियर ही हैज हैड एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बट अ लॉट ऑफ लव.

सोनू निगम साहब की बात हो रही है, तो लेट्स डू अ गिव अवे एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट कुछ खाने, कुछ चटपटी बात, क्योंकि वैसे भी डिनर का टाइम है. लॉट ऑफ पीपल आर एज आई सेड रिटर्निंग होम. सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट दैट इज होको, HOCCO. You know you have found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories. And aisa hi hota hai Hoco ke saath. That's exactly what Hoco has been for generations across India. Aur ab yahan par ye North Dallas mein hai, aap logo ke paas mein Hoco. So whether you have been craving their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoco cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Aap ja sakte hain Hoco at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034. Yun ka address hai. And experience the authentic flavors that have made it one of India's, that have made Hoco one of the India's most beloved food brands. Inke pure menu ke liye ya fir aur zyada jankari ke liye, you can visit their website, which is hoco.us. Fir se bata deti hu, hoco, hocco.us. Aap yahan aayenge to hungry, lekin jayenge taste of India apne saath thoda sa Bharat lekar. And now this is your chance to win a plate of aloo tikki chaat from Hoco by answering a simple question. Jaise maine kaha Sonu Nigam sahab aa rahe hain, to main ek sawal Sonu Nigam sahab ke career ke life ke bare mein puchti hu. So yes, unka career jaise maine kaha young adult age mein, aise keh sakte hain, start ho gaya tha early 90s mein. He became a TV personality, lekin usse pehle unhone ek child actor ki tarah 80s ki ek famous film hai jisme batour child actor kaam kiya tha. और वो फिल्म बहुत फेमस है. अगर आप बता सकते हैं उसका नाम, तो आपको मिलेगा आलू टिक्की चाट. द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर 972355555 है स्टूडियो का नंबर. ऑल यू हैव टू टेल मी इज किस फिल्म में सोनू निगम साहब ने चाइल्ड एक्टर की तरह 80s में काम किया था. और बड़ी हिंट दे दी मैंने, बहुत हिट फिल्म है ये.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern manga sutra dhoonte thak gayi hoon.
3: To carrot lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern Mangalsutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
5: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौकटॉ कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो.
16: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
16: कैसे?
17: पेज 3 ईटरी?
16: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
17: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
16: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
18: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

वेलकम बैक दोस्तों. यारो मैं हूँ पारो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉल्स. और यस, ये सच्ची बात है. सोनू निगम साहब ने बहुत सारी फिल्मों में, मतलब बहुत सारी तो नहीं बट कुछ फिल्मों में डेफिनेटली काम किया है एज अ चाइल्ड एक्टर इन 80s. लेकिन सवाल था मेरा कि सबसे हिट फिल्म दैट एंड दैट इज बेताब 1983 की. कुछ लोगों ने और कुछ नाम बोले. कामचोर में किया है उन्होंने 1982, उस्ताद ही उस्ताद से, हमसे है जमाना, बट बेताब इज द राइट आंसर एंड द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर और द फर्स्ट पर्सन टू गिव एनी आंसर इज अलका राजन. सो अलका जी, आपने जीता है. और अलका जी ने ये मुझसे सवाल पूछा कि मेरा नाम जो है आप अनाउंस करेंगे. एंड यस अलका जी, मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी. एंड आप अपने ये दिस इज समथिंग, ये टाइम स्टैम्प हो गया. सो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, दे ऑल आर हियरिंग दिस दैट यू आर द विनर. लेकिन देखिए, आलू चाट अब आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लोग बोलेंगे अलका जीत लिया आलू चाट होको की, तो हमें भी खिलाओ भाई. सो अब तो आपको होको में पार्टी देनी पड़ेगी. एंड बट आई एम श्योर यू आर गोना लव दैट. एंड आई डू वांट टू से दिस दैट बहुत सारे लोगों ने कॉल किया एंड आई थिंक मोस्ट पीपल डिड गेट इट राइट दैट इट इज बेताब. बेताब बहुत ज्यादा हिट फिल्म है. इनफैक्ट द हिटेस्ट मोस्ट फिल्म इफ दैट इज इवन अ वर्ड दैट इज सोनू निगम की एज अ चाइल्ड एक्टर. क्योंकि बेताब सोनू निगम साहब के लिए नहीं, वैसे अब सोनू निगम साहब इतने हिट हो गए हैं कि उनकी वजह से भी लोग याद रखते हैं बेताब को, लेकिन सनी पाजी की वजह से. क्योंकि सनी डियोल वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एक्टर्स की एंट्री हुई थी बॉलीवुड में विद बेताब. और उसके बहुत इंतजार किया था लोगों ने कि दी हैंडसम धर्मिंदर पाजी के हैंडसम बेटे उतर रहे हैं मैदान में. एंड लॉर्ड ऑफ आई हैव टू से दिस, क्योंकि ये मेरा बड़ा मन करता है ये बात बोलने का, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो नेपो किड्स की बात होती है, जो बच्चे होते हैं बड़े स्टार्स के, वो आते तो बहुत जोर शोर के साथ हैं, क्योंकि एंट्री उनकी कई बार बड़ी अच्छी होती है, रेड कार्पेट वाली होती है, पैसा इतना होता है माँ बाप के पास एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं. लेकिन देर आर वेरी वेरी फ्यू दैट हैव मेड एन इम्पैक्ट एंड सच ह्यूज ये कह सकते हैं आप फिल्म्स उनकी, जो मतलब बहुत एक ज़बरदस्त बड़ी सी उनकी एक जो लिस्ट है बिलव्ड फिल्म्स की. गदर तो एक है, बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने गदर मचाया है. दैट इज सनी डियोल, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. उनके बोलने का स्टाइल बड़ा यूनिक है एंड एक्टिंग बहुत इंटेंस. So yes, thank you so much for all who participated. और एक और giveaway है, अगर आपने नहीं जीता ये वाला, चिंता की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, पारो है यहाँ पर, तो एक और giveaway आएगा आपके लिए जल्दी से.

0: साथिया, एक आ रहा है आप लोगों के लिए दूसरा गिव अवे, एंड दैट इज फ्रॉम माय फेवरेट प्लेस, दैट इज फन पिज्जा किचन. जी हाँ, फन पिज्जा किचन का आप जानते हैं एक इस गिव अवे का, ये हमारे जो भी सारे गिव अवेज होते हैं उनके सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं. एक तो ये दैट यू कैन एक्चुअली गो देयर, सो फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में आप जाके ये गिफ्ट कार्ड अवेल कर सकें, ले सकें, और दूसरा पिछले एक महीने में आपने ये पर्टिकुलर गिव अवे नहीं जीता. बिकॉज इफ दैट इज द केस, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और किसी और का मौका छूट जाएगा. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट. अब सवाल क्या है, सवाल बताती हूं आपको. आज का दिन मैंने कहा था कुछ एक स्पेशल है. आज का दिन 25th August, एंड 25th August इज एक्चुअली नेशनल पार्क सर्विस फाउंडर्स डे. जी हाँ, नेशनल पार्क सर्विस, ये बहुत साल पुरानी बात है. 1916 में, August 25th, 1916, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साइंड व्हाट इज नाउ कॉल्ड द ऑर्गेनिक एक्ट टू एस्टैब्लिश द नेशनल पार्क सर्विस. तो ये जो हमारे नेशनल पार्क हैं जहां हम जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने बहुत सारे पार्क्स यूएस के करे हैं विजिट, और कुछ जो नहीं करे हैं वो भी मैं करना चाहती हूँ. सो ये जो हमारे पास ये इतनी अच्छी विरासत हमें मिली है, विरासत में मिली है ये पार्क्स, और इनका जो मेंटेनेंस और ये सब होता है, ये दैट इज अ लॉट इज फॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड फॉर दैट. क्योंकि आज के दिन 100 साल से भी पहले एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी ये एरियाज जो हैं 400 एरियाज हैं, आप ये कह सकते हैं 50 states में दे आर प्रोटेक्टेड. तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर यहां पर भी आप बनाने लगे हाई राइज वगैरह तो फिर तो चली जाएगी ना सारी नेचुरल जो हमारी इतनी सुंदर अर्थ है, कई हजारों लाखों करोड़ों सालों के ये जो बने हैं हमारे प्यारे नेशनल पार्क. सो इनको प्रोटेक्ट करना, जो हम ये कैपिटलिज्म है इन पर इनक्रोच ना करे, और इनके लिए जो भी मेंटेनेंस और वो सब, इसके बहुत सारी ये सब चीजें. दिस इज एक्चुअली द एरिया इज टोटल ऑफ 84 million एकर्स. तो इसको ये लोग इंजॉय कर सके, ये सीनिक ट्रेल्स एंड ऑल दैट, ये सब ये जो दिन है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके लिए. सो यस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे. एंड मेरा अगला सवाल कुछ इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं फन पिज्जा किचन के बारे में. फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप. अगर आप मेरी तरह मैक्सिकन, इंडियन, इटालियन पिज्जा सब पसंद करते हैं, सो यस, दिस इज अ प्लेस फॉर यू. फन फनीशा, यू आर ऑन एयर. लगता है नहीं आवाज आई, लेकिन अगर आप गिव अवे के लिए कॉल कर रहे हैं तो मैं आपको सवाल, अभी मैंने पूछा नहीं है, पहले आपको फन पिज्जा किचन के बारे में बताती हूँ, फिर मैं सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं. वैसे तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड यू कैन डेफिनेटली कॉल. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: पिकी मंडे,
0: ये तो मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा, बट लेट्स लिसन टू दिस. फन पिज्जा किचन के ये जो है, दिस इज देन जस्ट पिज्जा, दे आर फुल ऑफ फ्लेवर. फिएस्टा, फ्रॉम द फ्रेश फिएस्टा वेजी टू द फियरी पोयो लोको, द सी फूड पैक्ड सीनियोर कैमरॉन, एवरी बाइट इज बोल्ड, एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस. आप फन पिज्जा किचन पर जाइए एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ. न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन. फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. और अब आपका चांस है टू विन $10 गिफ्ट कार्ड from Fun Pizza Kitchen by answering, जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सवाल. और ये सवाल actually is not a question that I'm asking, it's really something that is for you to think about. So ये आप कुछ भी इसका जवाब आप दे सकते हैं. Top 10 national parks हैं, आपको मुझे ये बताना है which national park is your favorite and why. And what I'm going to do is, ye thodi si interesting cheez kar, kabhi kabhi main is tarah se karti hu giveaway mein, that I'm going to put all the names and then I'm going to select one winner. Aur jo hamara camera hota hai uske samne hum karte hain, so that way is those who are watching us on funisher.net aur hamare app par, they can actually see that ki dekhe kaun hamara lucky draw mein winner hai. To aapko mujhe ye batana hai 972355555 par call karke jaldi se mujhe do cheeze batani hai. Ek to ye that which नेशनल पार्क इज योर फेवरेट और द टॉप 10 नेशनल पार्क्स. कोई ऐसा मत बता दीजिएगा जिसका नाम टॉप 10 में नहीं और कहीं रिमोट सी जगह है जिसका नाम किसी को पता नहीं. नहीं, देयर आर टॉप 10 नेशनल पार्क्स, फेमस बहुत सारे हैं. यू जस्ट हैव टू से व्हिच इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, चाहे आप वहां गए हो या नहीं गए हो, जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपका मन है, या आप गए हैं लेकिन आपको वो मेमोरी बहुत स्पेशल लगती है. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी द नेम ऑफ अ पार्क एंड व्हाई, एंड देन यू विल बी एंटरिंग इन द लकी ड्रॉ टू विन $10 फ्रॉम Fun Pizza Kitchen. That's all you have to do. So नंबर फिर से बता देती हूँ 972355555. हम एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे इस गाने के चलते चलते, लेकिन पारो आपके कॉल्स देती रहेगी ऑफ एयर, एंड आई विल बी अनाउंसिंग द विनर राइट आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक.

0: खाली है कयामत मत तड़पा ऐसे तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी
1: कहाँ गया कहाँ रखा था सुनो ना मेरा वो वाला सेट कहाँ है
2: कौन सा
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
2: अरे सारे तो सेम है
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
2: ओ हाँ ये तो अलग है
3: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
5: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
2: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
5: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
2: ये क्या होता
5: है सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: हेलो
11: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है
10: फिकर नॉट वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल 25 प्लस डिशेस वेलकम ड्रिंक चाट appetizers main course and dessert saturday to sunday 12 p.m to 3 p.m this weekend let the flavor lounge do the cooking
12: breaking news home loan ya refinance ab aur bhi aasan myfamilyhomeloan.com deta hai transparent pricing no hidden fees no surprises aur ha sabse badi khabar unka ai powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals 15000 plus google reviews hazaron families ka bharosa visit myfamilyhomeloan.com Or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Don ko pakadna mushkil hi nahi. Namumkin hai.
14: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
15: Tarikh par tarikh.
3: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
14: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
16: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
17: My name is Ritika Anand, Sanyasne Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
16: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants, book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
18: Hey, ya ada kya chalve tere paro?
15: इस बार तो डैलस ने बहुत मुझे आई एम सो इम्प्रेस्ड बिकॉज सो मेनी कॉल्स आई गॉट एंड सच इंटरेस्टिंग आंसर्स. तो जलवे की अगर बात करें तो मैं कहूंगी डैलस का जलवा बड़ा निराला है. हमारे नेशनल पार्क्स बहुत ग्रेट हैं एंड एज आई सेड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे. इट इज अ डे व्हेन पीपल थिंक अबाउट नेशनल पार्क्स बिकॉज नेशनल पार्क फाउंडर्स डे कहा जाता है. आज का दिन 1916 में आज के दिन ही ये साइन किया गया था जिसकी वजह से हम ये सारे ब्यूटिफुल नेशनल पार्क्स या तो जा सकते हैं या जाते जा चुके हैं. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स ब्रेक में. पूरा जब ब्रेक चल रहा था मेरी घंटी बज रही थी स्टूडियो के. नाउ टॉकिंग टू यू ऑल, सो लॉट ऑफ कॉल्स आई गॉट एंड दोज हु आर सीइंग, मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे हाथ में कितनी सारी, क्योंकि ये हमारा ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है तो लॉट ऑफ पीपल कैन सी दैट. मेरे हाथ में बहुत सारी चिट्स हैं जिसमें आपके नाम और आपके नेशनल पार्क मैंने जल्दी जल्दी नोट करे हुए हैं. एंड लेट्स सी, एक पहले ये चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क कहा. आई थिंक विनर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क. आज का विनर फन पिज्जा किचन का जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि येलोस्टोन इज अ फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फॉर डिफरेंट रीजन. गाइजर या फिर बाइसन्स जो वहां पे हैं, एनिमल्स हैं. मैं लास्ट ईयर येलोस्टोन गई हूं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मेरे ख्याल से मेरा भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट ही होगा क्लोज टू दैट. ऑल्दो मुझे ग्रेट स्मोकी अभी रिसेंटली मैं गई थी कुछ महीने पहले, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा है. बट आई कैन सी वाई येलोस्टोन इज यू नो सो वेरी फेमस. पर आप जानते हैं सबसे ज्यादा फेमस या सबसे ज्यादा विजिटेड नेशनल पार्क कौन सा है? दैट इज ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क. यस, इट इज एक्चुअली द मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क इन द US. 11.5 मिलियन विजिटर्स एनुअली जाते हैं. तो चलिए अभी मेरे हाथ में एक स्लिप है, देखते हैं किनका नाम है. द लकी पर्सन इज एक्चुअली सोनम. सोनम आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10. उन्होंने भी येलो स्टोन कहा था और उन्होंने कहा था फर्स्ट नेशनल पार्क है. शी रियली लव्स इट. सोनम जी आपके पास चंद मिनट है, 2 to 3 minutes टू कॉल मी 972-355-5555 फॉर योर डिटेल्स. अगर आपने नहीं कॉल किया सो वी विल पिक अनदर विनर. अगेन सोनम जी प्लीज कॉल करिए सो दैट आई कैन गेट योर डिटेल्स एंड आई एंड यू कैन विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन.

हेलो यस, अभी मैं बात कर रही थी. सो यस, सादी शाह के डिटेल्स मुझे मिल गए हैं. कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन टू आदि शाह. और जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा रॉकी माउंटेन. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास. वक्त कम है, नहीं तो मैं सब कॉल्स कि मैंने जल्दी जल्दी एटलीस्ट वन पर्टिकुलर थिंग दैट पीपल लाइक आई नोटेड एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों ने बताई. जैसे मैंने कहा येलो स्टोन, तो मेरे ख्याल से 70% लोगों ने तो येलो स्टोन कहा और गाइजर. और एक ने कहा कि वो येलोस्टोन गई नहीं है लेकिन वो जाना चाहती हैं एंड दैट इज इन हर विश लिस्ट. और मेरी दुआ है कि आपकी विश जल्दी पूरी हो. मेरी भी हुई थी लास्ट ईयर, मैं पहली बार येलोस्टोन गई. तो आप भी जल्दी जाएं. बट विद दैट आई डू वांट टू टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है कोई बात नहीं, और इज पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क पे है तब भी कोई टेंशन नहीं, बिकॉज यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 a month. Your membership includes primary care visits, follow-up and preventive care, chronic disease and medication management, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. Aap call kar sakte hain, text kar sakte hain, number hai 214-666-6259, or you can visit passionhealthphysicians.com. Passion Health is your, inka mission ye hai that it is our passion, your health, our community. And yes, it is our community. Thank you so much for listening to Fun Asia. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं. और एक चीज और बता देती हूँ पैशन हेल्थ के बारे में, दैट यू नो दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, बट डेफिनेटली कॉल देम फॉर मोर डिटेल्स. बताना चाहती हूँ अगर पारो के साथ, यानी कि योर्स ट्रूली के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पारो कौशिक फन एशिया के पेज पर तो आप जा ही सकते हैं. और फेसबुक के पेज पर अगर आप जाएंगे तो पारो कौशिक, और अगर इंस्टाग्राम पर Princess Paro 27, you can connect with me.

जोर से नाचना, मस्ती से नाचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन घुंघरू को संभाल के रखिए. इस गाने का आई थिंक अगर कहना कि व्हाट इज द पॉइंट या व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द सॉन्ग, वो ये कि नाचिए बड़ी जोर से लेकिन घुंघरू संभाल के रखिए. लेकिन अगर कोई चीज टूट जाती है, नहीं मिलती है, या कोई चीज चाहिए, स्पेशली अगर ग्रोसरी खरीदनी है, तो कहां जा सकते हैं? हिमालयन बाजार. डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स. एंजॉय हॉट समोसा, पानीपुरी, मसाला चाय एंड कॉफी वाल यू शॉप. कॉम्पिटेटिव प्राइजेस हैं इनके, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स अबव 50.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
0: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
0: Samasya ka pakka samadhan.
6: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.